0: Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
0: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
3: भाइयों और बहनों, दोस्तों और सखियों और साथियों, how are you all doing today? Well, it is Monday and I am here, your bestie, your favorite Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. And this is my show. You know what time it is? Say it together with me. An evening in Dallas. Exactly. वैसे मुझे नहीं पता आप लोग बोल रहे हो कि नहीं an evening in Dallas, but I'm hoping कि आप जरूर बोल रहे होंगे, नहीं तो फिर मेरा पूरा वही मकसद ही फेल हो जाएगा. ठीक है, तो उसको आगे उसको आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आप लोग मेरे साथ गा रहे हैं, बिकॉज बिन नहीं गाएंगे तो मज़ा कैसे आएगा यार, दैट्स द होल पॉइंट. तब तक के लिए आप ये गाना इन्जॉय करिए और साथ में गाते रहिए अपनी गाड़ियों में, घरों में, डिनर करते हुए, कहीं भी हैं, आपका दिल ज़रूर डांस करेगा.

वाह वाह भाई, आपका दिल डांस कर रहा है कि नहीं? इट इज मंडे, आई नो वी आर ऑल टायर्ड, एंड ऑनेस्टली आई थिंक यू माइट हैव मोर एनर्जी देन यू थिंक. एटलीस्ट इट्स नॉट थर्सडे. ओके, थर्सडे यू वुड बी वेरी टायर्ड बिकॉज पूरा हफ्ता निकल गया. लेकिन अभी तो वीकेंड से फ्रेश फ्रेश आए हैं. आई नो वीकेंड से फ्रेश फ्रेश आने के बाद मंडे को काम करके लगता है हाय फिर से मंडे आ गया. कोई बात नहीं गाइस, मंडे आया है, ट्यूसडे भी आएगा, वेंसडे भी आएगा, फिर थर्सडे एंड फ्राइडे एंड फिर दोबारा वीकेंड. जस्ट 5 दिन, एंड समर में तो टाइम एनी वेज फ्लाइज लाइक एनी थिंग, राइट? तो बाय द वे गाइज, आज मैं ना यू नो सो आई एम ऑन थ्रेड्स एंड आई वॉज रीडिंग अ फ्यू थिंग्स, एंड उसमें से मुझे यू नो आई केम अक्रॉस दिस थ्रेड वेर इट सेड मिलेनियल्स इन देयर 40s. दैट्स राइट, अगर आप अपने 40s की उम्र में हैं एंड यू बिन कॉन्ट्रीब्यूटिंग जस्ट द बेयर मिनिमम इन टू योर 401k, यू नो दे प्रॉबली हैव मे बी लाइक 120k इन देयर 401k, एंड दे आर थिंकिंग बाई द एज ऑफ 65 दे कैन रिटायर एंड थिंक कि अरे बाई 65 मेरे पास $1.5 million होंगे, विच यू विल प्रॉबली नीड लाइक अराउंड 20 years फ्रॉम नाउ टू रिटायर कंफर्टेबली. बाय द वे गाइज, अगर आपके पास सिर्फ 120K है अपने 401K में, इट्स नॉट गोइंग टू कंपाउंड टू 1.5 million dollars लाइक, एंड देन यू वॉन्ट हैव इनफ मनी फॉर रिटायरमेंट. एंड ट्रस्ट मी, देन अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होना, आई मीन येस ऑफकोर्स वी आर इंडियन किड्स एंड वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ आर पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर भी इट ऑलवेज फील्स नाइस टू बी इंडिपेंडेंट, डजंट इट? हु लाइक्स टू डिपेंड ऑन देयर किड्स? आई मीन इट्स ऑलवेज फील्स बेटर इफ यू डोंट नीड देम. ऑफकोर्स दे विल हेल्प यू आउट, बट वॉट इफ दे यू नो वॉट इफ दे हैव देयर ओन फैमिलीज? इन दैट केस गाइज, कॉन्टैक्ट माई टाइम इक्विटी. माई टाइम इक्विटी लेड बाय सुधीर पाए, दे हेल्प इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज, whether it's portfolio management, real estate opportunities and alternative investments. You might retire with more than just your 401k. You never know, right? You need to grow your wealth. Whether you're planning for long-term wealth, retirement, growing your investments, MyTime Equity offers personalized solutions designed around your goals. Visit mytimeequity.com or call 469-702-1272 today. Samjhe aap? अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स और रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करी है और आप अपने 40s में आ चुके हैं या फिर आप 30s में भी हैं, गाइस इफ यू स्टार्ट स्मॉल, इवन एज एज लॉन्ग एज यू हैव टाइम ऑन योर हैंड्स, यू विल बी इन अ रियली रियली गुड प्लेस. बट यू हैव टू स्टार्ट अर्ली. द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज. दिस नेक्स्ट सॉन्ग इज बाय आदित्य रिखारी कॉल्ड पारो.

0: एंड फ्रेंड्स, वी आर अबाउट टू गो इनटू अ ब्रेक इन अबाउट 30 सेकंड्स. लेकिन जाने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू आई विल बी राइट हियर एट 7:30. लेकिन भाई आज मैं मैकेनी ड्राइव करते करते पता है मैंने क्या देखा? आई वांटेड टू पिक अप सम कोक जीरो फ्रॉम अ 7-Eleven एंड ऑल द स्टोर्स इन दैट रोड मैकडर्मट ड्राइव, सारे दुकानें बंद है क्योंकि पावर आउटेज हो गई. क्या हो रहा है भाई, इतनी पावर की आउटेज हो रही है? तो उससे रिलेटेड कमर्शियल एनर्जी की एड मैं आके बोलूंगी क्योंकि अभी हमारे पास टाइम खत्म होने वाला है. लेकिन वी विल टॉक अबाउट तारा कमर्शियल एनर्जी. डोंट फेस दीज पावर आउटेजेस, हायर समवन बेटर.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं.
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं.
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं.
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. For your tax planning, bookkeeping and CFO services, visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
7: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
10: Excuse me. It's called being loyal.
9: It's called being predictable.
10: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
9: And what's so special at Neon Cactus?
10: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
9: Not bad.
10: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
9: Okay, this I didn't expect from you.
10: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
11: जिंदगी एक रंगमंच है,
12: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सस टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
4: कॉल 972-897-1530. फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सस टाइटल .com.
13: Coughing or sneezing at home, your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
2: And we are back. तो गाइस जाने से पहले जैसे मैं बोल रही थी भाई मैंने मैकडर्मट ड्राइव पर टर्न मारी. मैंने सोचा कि चलो आई एम गोना पिक अप अ ग्लास ऑफ डाइट कोक यू नो फ्रॉम अ 7-Eleven बिकॉज आई हैव दिस लाइक 7-Eleven का मेंबरशिप एंड आई गेट लाइक वेरी सस्ते में आई गेट अ बिग लार्ज ड्रिंक फॉर लाइक 60 सेंट्स और समथिंग लाइक दैट. बाय द वे यू शुड डू दैट इफ यू डोंट हैव इट. इट्स सुपर स्मार्ट. यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी. ओके सो मैंने सोचा आई विल स्टॉप. फिर मैंने कहा चलो ठीक है रुकती हूँ जिस जगह पे मैं नॉर्मल जिस गैस स्टेशन पे. द गैस स्टेशन वॉज क्लोज्ड बिकॉज द होल पावर वॉज आउट सो द स्टोर ओनली क्लोज. फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर आगे चलते हैं मे बी देयर इज अ फास्ट फूड स्टोर वहाँ से आई विल पिक अप अ डाइट कोक एंड आई रियली वॉन्टेड सम डाइट कोक बिकॉज आई नीड दैट कैफीन का एनर्जी सो आई कैन स्टे विथ यू गाइज टिल 10. फिर मैं आगे वहाँ पे भी पावर की वजह से दुकान बंद मतलब फास्ट फूड रेस्टोरेंट इट वॉज ब्रॉम्स एंड इवन दैट वॉज क्लोज. और पूरे ब्लॉक में जितने भी दुकानें थी दे वर ऑल क्लोज. ऑल द फूड शॉप्स वर क्लोज बिकॉज देर वॉज नो पावर. तो गाइज आई मीन आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर इन मैकेनी बट समथिंग इज डेफिनेटली अप. हाउएवर दैट बीइंग सेड डोंट बी लाइक देम. Go to Tara Commercial Energy. Attention Texas business owners, just like these fast food joints. Are you looking for a smarter commercial energy solution? Trust Tara Commercial Energy. They are proudly serving Texas businesses since 2002 with competitive rates, reliable service and customized energy plans. Call 844-428-2808 or visit taraenergy.com today. Okay, maybe if they had Tara Energy, maybe I could have gotten my Diet Coke or Coke Zero today. Hai na? So guys, the next song that I'm going to play for you is from this upcoming movie called Alpha. So here's the description of what Alpha is, okay? It is the newest chapter of Yash Raj Films' spy universe that presents an edgy origin story of a girl raised and built to kill. Kind of sounds like Black Widow. Alpha is a female-led action film that will take you on a fun, edge-of-the-seat, thrilling ride that is designed as an out-and-out entertainer. I mean, it kind of sounds like Black Widow. And what was that movie? Yeah, Black Widow, where she also has a sister, because there are like two of these girls, Alia Bhatt and Sharvari. I mean, I'm watching one of these songs called Hania, where they are in their bikinis and they decided to go on a motorcycle ride off-roading and suddenly then they're like chalo hum bikini mein karke nadi mein kood ke swimming karte hain and suddenly from spies they are becoming fashion models like always otherwise how will the movie sell you know but anyways aage badhte hue aap ye gana suniye this is called Hania from the movie Alpha.

All right, guys. This next song is from the movie छछोरे. I actually have never heard of this song. मैंने पहले कभी नहीं सुना. मैंने मूवी भी नहीं देखी छछोरे, लेकिन मुझे लगता है देखनी पड़ेगी. दिस वॉज वन ऑफ द मूवीज इन विच सुशांत सिंह राजपूत हैड एक्टेड, एंड दिस रिलीज लाइक 6 years अगो. आई मीन, ही वॉज सच अ ब्रिलियंट एक्टर, एंड ही मेड वट एवर नेम ही मेड ऑल बाय हिमसेल्फ, सो बिग क्रेडिट्स फॉर दैट. दिस सॉन्ग इज कॉल्ड वो दिन, एंड इट्स गोना पुट यू इन लाइक सच अ नॉस्टैल्जिक मूड. तो आप ये गाना सुनिए.

0: पढ़ लें।
1: हाय, वो जो सीनियर्स है ना, उन लोगों ने बोला कि आपके साथ कॉफी पीनी पड़ेगी वरना बहुत धोएंगे।
2: मैं कॉफी नहीं पीती।
1: हाँ तो ठीक है ना, चाय पी लेते हैं, कोई बात नहीं। दो चाय स्पेशल।

तो गाइस दैट वाज फ्रॉम द मूवी छछोरे, जो मैंने कभी नहीं देखी. मे बी आई शुड गो वॉच इट एंड फिगर आउट ये हो कहाँ पे रही है स्ट्रीम, बिकॉज इट टोटली पुट मी इन लाइक दिस रियली नॉस्टैल्जिक मूड. जब कॉलेज और स्कूल टाइम में हम लोग ऐसे ही छेड़खानियाँ नहीं करते थे, उसमें एक सीन आया. अभी म्यूजिक वीडियो गाने में बैकग्राउंड में चल रहा था, उसमें एक सीन आया जो किसी ने ना, वन ऑफ दीज बॉयज, उन्होंने अपने दोस्त के हॉस्टल रूम के दरवाजे के बाहर पटाखे जला दिए. वो लड़ियाँ नहीं होती, वो क्या बोलते हैं उसको, सुर्रा बम या सिर्रा बम या जो भी बोलते हैं, जो लाल रंग के जो छोटे छोटे वाले होते हैं पटाखे, ही टुक दैट और उसने दरवाजे पे लगा दिया. विच रिमाइंड्स मी, जब मैं स्कूल में थी ना, दिवाली के टाइम पे जितने भी लड़के लड़कियाँ होते थे, दे ऑल वॉन्टेड टू ब्रिंग पटाखास टू स्कूल एंड डू सम काइंड ऑफ अ प्रैंक. तो एक बार एक बंदे ने क्या किया, उसने ना बॉयज़ टॉयलेट के अंदर जाके खिड़की के पास पूरे 100 पटाखों वाली लड़ी लगा दी और जोर से क्लास स्कूल के बीच में ढक ढक ढक ढक ढक ढक करके फटने लगा, पूरा शीशा वीशा सब टूट गया. उसके बाद से मेरे स्कूल वालों ने, माय टीचर्स, उन लोगों ने हेड बॉय हेड गर्ल को पकड़ा, उन्हें बोला यू गाइज विल फॉर्म द बॉम्ब स्क्वाड. इमेजिन स्कूल किड्स, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल किड्स इन दिल्ली, एज दे आर वॉकिंग इन द स्कूल, उनके बैग्स चेक हो रहे कि ये बॉम्ब तो नहीं ला रहे दिवाली पे. एनीवेज, आगे बढ़ते हुए गाइज, आप डू नो दैट कि प्रभुदेवा इज कमिंग ऑन द 1st of August, राइट? मथंगी एंटरटेनमेंट ग्रुप प्राउडली ब्रिंग्स इंडियाज माइकल जैक्सन प्रभुदेवा लाइव टू DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadauria, Alexander Noel, Harini Neelakanthan, Natasha Sherpa, and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. It is going to be held on Saturday, August 1st at Texas Trust CU Theatre in Grand Prairie. So please go ahead and book your tickets now. Call 248-233-3828. Okay, please, if you want to book tickets, you can also, agar aapko number nahi yaad rehta, then what you can do is you can go to Funasia's, any of our social media pages like our Instagram and Facebook, and you can book tickets directly from either the pinned posts on our grid or the links in the bio from there. And moving on, this is प्रभु देवा की बात करते करते उन्हीं पे फीचर्ड ये गाना.

दैट्स राइट गाइस, भाई हो गया, बाकी तो नहीं पता लेकिन 7 से 8 जरूर हो गया है, क्योंकि 8 बजे आपको पता क्या होता है, हमारा गिव अवे होता है. दैट इज राइट, स्टे ट्यून्ड बिकॉज 8 बजे के बाद हम खेलेंगे हमारा कॉपी कैट सॉन्ग. दिस वन सुपर इजी, सो मेक श्योर यू ट्यून्ड इन एट 8:05 ish, तब हम खेलेंगे. बिना क्वेश्चन पूछे कॉल मत करना, नहीं तो मैं तुमको एयर में डालूंगी और मैं बोलूंगी अच्छा व्हाट इज माय सॉन्ग, ठीक है? तो पहले सुन लेना फिर डायल करना. तब तक के लिए आप ये गाना सुनो, क्योंकि 8 बजे में अभी भी 5 मिनट हैं.

0: एंड वी आर गाइस अबाउट टू गो इनटू अ ब्रेक इन अबाउट 30 सेकंड्स, लेकिन आप बने रहिए लाइन पे क्योंकि हम गेम खेलेंगे। तो गाइस, जैसे मैंने बोला था प्रभुदेवा की टिकट लाइव जाने वाली है, आई एम श्योर आप लोगों ने खरीद ली होगी। नहीं खरीदी है तो ज़रूर खरीद लेना, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो टू द शो बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग। एंड आई ऑल्सो लव द फैक्ट दैट वी आर गोइंग टू ब्रेक।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
11: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
12: वेट, इतना सब और प्राइस?
11: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं हीरो।
14: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
15: लिया।
14: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
15: नहीं आया।
14: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
16: Visit www.sanadainc.com today.
17: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
18: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
17: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
18: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
19: Ajji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
17: India mein? To yahan jo friends aur relatives hain, wo kaise attend karenge?
19: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
19: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
0: And guys, we are back. This is time, like I always said, it is time to play our giveaway. Lekin pehle main ye to bata do ki giveaway hai kya? Aaj ka giveaway hai from San Idli Restaurant. Here is your chance to visit any dosa along with a filter coffee, that is dinner plus drinks, you guys, or breakfast plus drinks, whatever you want to call it, at San Idli Vegetarian Restaurant and Indian Food. They are 100% pure vegetarian and they are made with fresh, authentic flavors. Crispy dosas of lovely idlis, comforting South Indian favorites, aur saath mein shahar ki best filter coffee. Abhi to waise thodi garam hai coffee ke liye, lekin abhi beech mein shayad barish bhi ho jaye, tab to bada hi maza aa jayega yaar filter coffee ke liye. Family dinners to catering services with Jain friendly option. Visit San Idli Veg Restaurant at Highway 121 or Custer Junction, okay? Just like over there. तो इसके लिए हम एक नहीं दो दो विनर्स को चूज करेंगे. सो हूएवर आर माय फर्स्ट टू कॉलर्स विल गेट द प्राइज. तो दोनों साथ ही में आती है तो फटाफट हम करेंगे, ठीक है? अगर आप हैं लाइन, अगर आप, मैंने आपको कॉल किया है एंड यू वन द फर्स्ट गिव अवे. एक्चुअली यू नो व्हाट, लेट्स डू वन विनर एंड देन फॉर द सेकेंड विनर आई एम गोइंग टू प्ले अ डिफरेंट क्वेश्चन इन अबाउट 20 मिनट्स, ठीक है? तो 8:20 को एक और गिव अवे खेलेंगे, तब मैं दूसरा वाला गिव अवे का क्वेश्चन आपको बताऊंगी. तब तक के लिए आपका गेम बहुत सिंपल है, आपको पता ही है क्या करना. आई एम गोना प्ले यू अ बॉलीवुड सॉन्ग, ओह आई एम गोना प्ले यू अ हॉलीवुड सॉन्ग एंड और लाइक एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड यू हैव टू टेल मी द बॉलीवुड कॉपी ऑफ दैट सॉन्ग. सुपर सिंपल. ये वाला गाना तो एक्चुअली मैंने पहले बजाया भी हुआ है. मैंने, अगर आप मेरा शो सुन रहे हैं इन द लास्ट 2 months जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, then you will know that I have already played the song one time, so you should know it. That means aap regular listener hai, okay? So without further ado, here we go.

भाई दिल तो सबका टूटता है, सबके रिलेशनशिप्स होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, एंड वी मूव ऑन. हम सब बोलते हैं कि अरे मैं इसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन बेसिकली आप रह पाते हो उसके बिना भी. जो भी है आपका लव इंटरेस्ट, या कॉलेज में हुआ हो तो होगा लव इंटरेस्ट. वैसी एक स्टोरी है जो मैं थोड़ी देर में बोलने वाली हूँ. ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड की स्टोरी है. आई एम नॉट गोना टेक एनी नेम्स बिकॉज आई वॉन्ट टू रिस्पेक्ट दैर प्राइवेसी. हाउ एवर, इट वॉज अ लिटल लाइक कॉम्प्लिकेटेड. आजकल का डेटिंग गेम वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है. ऑल रिलेशनशिप्स आर बेसिकली अनडिफाइंड. दे हैव कम अप विद न्यू टर्म्स कॉल्ड सिचुएशनशिप्स एंड गोस्टिंग एंड माइक्रो रिलेशनशिप्स एंड आई डोंट इवन नो व्हाट आर दी सम ऑफ दीज लाइक वियर्ड टर्म्स. एंड फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स तो हमेशा से ही था. वट एवर, दीज आर सम जस्ट रियली वियर टर्म्स. पीपल आर एक्चुअली रनिंग अवे फ्रॉम रियालिटी. पीपल आर रनिंग अवे फ्रॉम ग्रोथ इन माई ओपिनियन. एंड पीपल जस्ट वॉन्ट टू हैव द केक एंड ईट इट टू. यू नो वट आई मीन? दैट सेइंग दैट्स वेरी फेमस. हैव आई सेड इट राइट? आई थिंक सो. लेकिन वो बोलने से पहले गाइज, आई केम अक्रॉस दिस रियली रियली अमेजिंग थिंग. आई मीन आई के नॉट रियली ऑफिशियली प्रमोट इट बिकॉज दे आर नॉट पेड एडवर्टाइजर्स फॉर फन एशिया. लेकिन आई सॉ दिस रियली कूल थिंग ऑन माई ग्राम टूडे विच इज अबाउट समथिंग नोन एज द कॉफी क्रॉल. दैट्स राइट. इफ यू लव कॉफी एंड इफ यू वॉन्ट गो ट्राई आउट द डिफरेंट कैफेज इन डैलस, कॉफी क्रॉल इज बेसिकली लाइक एन इवेंट कंपनी दैट डज दिस इवेंट वेर यू कैन गो टू द डिफरेंट कैफेज एंड ट्राई आउट द कॉफीज एंड एवरीथिंग. तो आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड बिकॉज आई लव अ गुड कॉफी एंड मोर देन. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टारबक्स ओवर हियर. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक दीज लोकल कॉफी शॉप्स. वन ऑफ माई फेवरेट्स इज वेर आई वर्क एक्चुअली डैलस के आसपास. इट्स कॉल्ड व्हाइट रॉक कैफे. दे आर इन लेक हाइलैंड्स. और मुझे वहाँ की ना कॉफ़ी इतनी अच्छी लगती है. एंड दे हैव दिस लाइक मेंबरशिप रिवॉर्ड प्रोग्राम. अगर आप कुछ 1,000 पॉइंट जी जाते हो यू गेट लाइक अ फ्री बैग ऑफ कॉफ़ी बिकॉज प्रोवाइडेड यू ऑर्डर दैट मच. एंड स्टारबक्स ऑल्सो हैज दीज काइंड ऑफ ऑफर्स. बट एनी वेज, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट इफ कॉफी समथिंग दैट यू गाइज आर इंटरेस्टेड. आई डोंट नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट इट. आई एम जस्ट शेयरिंग समथिंग दैट आई वुड डू. बात कर रहे थे हम रिलेशनशिप्स की. वी विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर वी कम बैक फ्रॉम दिस सॉन्ग एंड दिस रियली सुपर शॉर्ट ब्रेक. तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए. In case you're wondering who this is Kamala Devi with Neha Kakkar and Digvi. This is a Coke Studio arrangement of this song called Son Chhadi.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
8: हाँ।
1: घर रिलोकेट करनी है?
8: हाँ।
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
8: हाँ भाई हाँ।
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
9: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
10: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव।
9: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
10: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.

तक वो गाना शुरू होता है गाइस, मैं आपको मेरे दोस्त की स्टोरी तो बता दूं। वो स्टोरी ऐसे जाती है कि दिस फ्रेंड ऑफ माइन, ही मेट दिस गर्ल ऑन अ डेटिंग ऐप, ठीक है। उसके बाद डेटिंग ऐप पे मिले थोड़ा बहुत, जो भी यू नो दे हंग आउट एंड एवरीथिंग, देन दे गॉट इन टू एन अरेंजमेंट ऑफ ए सिचुएशनशिप, क्योंकि उस बंदे ने उस बंदी को बोला, देख भाई यू आर अ नाइस गर्ल, हाउ एवर नाउ दिस गर्ल इज डिवोर्स्ड एंड शी हैज़ अ किड, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑनेस्टली, बट यू नो ही इज़ अ टिपिकल इंडियन गाय एंड आई डोंट रियली सपोर्ट हिज मेंटेलिटी, बट ही इज़ माई फ्रेंड एंड समटाइम्स यू नो आप किसी को भी कुछ भी बोल दो, वो जब तक खुद से रियलाइजेशन नहीं होती है कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो एनीवेज उसकी चॉइस है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती इसके मामले में। मैंने कहा तेरे को जो करना है तू कर। तो वो बंदा मुझे कहता है कि आई एम विद दिस गर्ल, शी इज़ डिवोर्स, शी हैज़ अ किड, वी आर इन अ सिचुएशनशिप विच मीन्स वी आर हैविंग फन बट वी हैवन मेड एनी कमिटमेंट्स, शी नोज इट एंड आई नो इट। ग्रेट, दैट्स एज लॉन्ग एज यू गाइज हैव दैट अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर गोइंग विद इट, दैट इज टोटली फाइन, आई सपोर्ट इट यू, इफ एज लॉन्ग एज यू गाइज आर फाइन विद इट। एंड मॉडर्न रिलेशनशिप्स आर एनी वेज रियली कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट इन टू द डेप्थ ऑफ इट, तो वट एवर वर्क्स फॉर यू, आई मीन इट्स नन ऑफ माई बिजनेस ऑनेस्टली। तो देन ऐसे चला उनका कुछ अब अराउंड अ ईयर एंड अ हाफ। हाउ एवर फ्रॉम टाइम टू टाइम यू नो ही वुड कम टू मी विद हिज प्रॉब्लम्स कि यार आई थिंक शी इज़ गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व। मैंने कहा अब तुम लोगों का ये सिचुएशन है वो हो ही जाता है, आई मीन यू आर विद समबडी फॉर अ ईयर एंड अ हाफ, हाउ इज़ इट नॉट पॉसिबल टू गेट इमोशनली इन्वॉल्व, आई मीन इट्स ऑब्वियसली। एंड देन उसे ये बुरा लगता था दैट समटाइम्स दिस गर्ल टॉक्स टू अदर बॉयज, एंड बंदी को भी बुरा लगता था दैट माई फ्रेंड हु इज़ दिस गाय, ही इज़ नाउ ऑल्सो गोइंग ऑन डेट्स विद अदर गर्ल्स एंड ट्राइंग टू यू नो फाइंड एन एक्चुअल अरेंज मैरिज काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो दोनों दोनों ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कर रहा है, दोनों अपनी तरफ से मतलब वॉट दे आर डूइंग दे आर कीपिंग इट ओपन बेसिकली यू नो। तो लेकिन फिर जब दूसरा वाला बंदा कोई करता है तो फिर इस वाले को बुरा लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ दिस बॉय डिसाइड्स टू गो ऑन अ डेट, देन उसकी जो बंदी है उसको बड़ा बुरा लगा कि तुम ऐसे डेट पे कैसे चले गए, तुमने मुझे बताया नहीं। तो उसने बोला देखो हमारा तो ओपन था ऐसा था, तो उसने बोला फाइन, फिर वो कुछ नहीं बोलती है। फिर उसके बाद वो बंदी भी खुंदस में आके वो भी कहती है ओके फाइन, आई एम ऑल्सो गोना गिव माई नंबर एंड टॉक टू सम पीपल इन द बार और वट एवर, शी ऑल्सो गोज आउट ऑन सम डेट्स। एंड इस बंदे को फिर गुस्सा आ जाता है, कहता है हाउ कैन यू टॉक टू अदर गाइज, यू विथ मी यू आर सिटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड टॉकिंग टू अदर गाइज इन द बार, ऐसे कैसे। तो उसने बोला तुम भी ओपन कर रहे हो, मैं भी ओपन कर रही हूँ, तुमने भी ये किया मैंने भी वो किया, अब दोनों में से कोई गलत ही नहीं है यू नो। तो आगे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ इसके इस गाने के बाद।

friends, this is Ippy the Hippie, and you all are listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, and this is my show, An Evening in Dallas. That is right. So guys, hum relationships ki baat kar rahe the, I was telling you the case of my friend. So uske baaki ki story bolne se pehle, guys, aapne sapne dekhe hain kabhi? American Dream is one of the biggest marketing campaigns that is sold to the entire world. जिसके लालच में हम सब अमेरिका के चक्कर काटने लग जाते हैं और इतनी लंबी लंबी फ्लाइट लेके आ जाते हैं. तो उसमें से अमेरिकन ड्रीम का एक बड़ा सा पार्ट है घर बनाना, दिस हाउस विद अ वाइट पिकेट फेंस एंड ऑल ऑफ द ड्रीम्स जो आप बड़े सालों से देखते आए हैं. तो वैसे ही अगर आपके भी कोई सपने हैं तो यू शुड कॉन्टैक्ट ड्रीम होम मॉर्गेज, क्योंकि वो आपका सपनों का घर सच करने वाले हैं. वो कर देंगे आपका घर यार, सपनों का घर सच कर देंगे. क्या बोल रही हूँ मैं आज, मेरे को ज़्यादा ही एनर्जी हो रही है. सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेजर्स हेल्प फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इनटू रियलिटी विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशन एंड ए स्मूथ एंड अ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. वो 50 स्टेट्स में लाइसेंस है एंड देयर एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस टेलर्ड टू योर नीड्स. Whether you're buying your home for the first time, you're upgrading or refinancing, just make sure you definitely give them a call. Start your home ownership journey with confidence today. Call 972-245-5626 or visit dreamhomemortgage.com. ठीक है, तो जैसे मैं अपने friends की story बोल रही थी, तो फिर basically they agreed to be in some kind of a open situationship. It is not a relationship, it is a situationship, because nobody has committed to either of them. Then somehow the girl, she has not really, you know, gone out with other guys. She's only talking to them, and at least that's what he knows. कि अच्छा वो सिर्फ बार्स में जाके बात करती है. बार्स में कब बात करी? जब वो साथ में जा रहे होते हैं एंड मे बी मैडम ने थोड़ी सी ज़्यादा पी लिया जो भी, एंड देन शी गेट्स यू नो एक्साइटेड एंड शी स्टार्ट्स टॉकिंग टू अदर पीपल इन द बार. तब इसको बुरा लग जाता है कि तुम मुझे इग्नोर करके कैसे दूसरे लड़कों के साथ बात कर रही हो. तो भाई तुम दोनों साथ में आए हो, तुम भी बात करो, तुम्हें किसने मना किया है? एनीवेज, तो फिर ऐसे करके उसको बुरा लगता था. फिर एक दिन क्या हुआ, इस बंदे ने समहाउ, आई मीन वैसे तो वो मुझे एटलीस्ट मुझे बताया था कि उसने कभी इसका फ़ोन नहीं चेक किया. ठीक है, पता नहीं उस दिन उसको क्या हुआ, उसने जाके इस बंदी का फ़ोन चेक कर लिया और क्या पता चला, वो बंदी किसी और से बंदे से बात करी है एंड दे आर मेकिंग प्लान्स ऑफ व्हेन दिस अदर गाय शुड कम एंड विजिट हर इन हर अपार्टमेंट after you know khana wana pakayegi and all of that, and obviously they're going to have lots of fun. We are not going to get into the details of that because you guys are not children and we are, you know, we are grown ups over here. So and then what happens is this guy gets like a big shock ki tum mere se cheat kar rahi ho, jabki tumne khud bhi, jabki mere dost ne khud bhi kiya hua hai, and she has had a problem with it. She has confronted him, he has continued to do it, but now that this girl is also doing it, now he suddenly feels betrayed and all this kind of anger and like all this anxiety. To maine usko bola, maine kaha bhai tujhe problem kya hai life mein, तुझे तो, तू तो वैसे ही बोल रहा था कि नहीं वो बंदी मेरे से ज़्यादा क्लिंगी हो रही है, आई वॉन्ट टू ब्रेक अप विथ हर बट आई फील गिल्टी सो आई कॉन्ट रियली ब्रेक अप विथ हर. तो मैंने कहा नाउ यू एक्चुअली हैव एन आउट, यू कैन, यू हैव अ रीज़न टू ब्रेक अप बिकॉज बोथ ऑफ यू आर डूइंग द सेम थिंग टू ईच अदर, एंड हाउ कैन यू कॉल हर द बैड पर्सन व्हेन यू आर ऑल्सो डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग टू हर. इज़न्ट इट फनी, लाइक डबल स्टैंडर्ड्स बोलती हूँ मैं इसको. लेकिन somehow वो कहता है नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं किसी से भी लड़की से ही मिल रहा था, आई डिड नॉट गेट इन टू अनदर सिचुएशनशिप, मैं उससे शादी के लिए मीट करा था. मैंने कहा हाउ इज़ इट फेयर टू द गर्ल जिसे तुम शादी के लिए मीट कर रहे हो, उसे पता चलेगा कि तुम्हारी पीछे एक सिचुएशनशिप चल रही है तो उसे कैसे लगेगा? हाँ, मतलब दिस इज़ अनफेयर एंड दिस इज़ चीटिंग टू नॉट जस्ट the girl you're involved with but the girl you're thinking of getting married to, and it's not fair. So I have heard so many cases of boys who do this kind of stuff. Guys, don't do it, don't have double standards. If you want to do something like that, make it clear and have an open relationship and tell the other person clearly. Lekin ye jo double standard hota hai na ki main dating karunga, aur ye maine bahut jagah se suna hua hai, especially aajkal ke ladke,
कि यू गाइज आर डेटिंग ओपनली, यू आर डेटिंग इन डैलस एंड यू आर डेटिंग इन अमेरिका, लेकिन सम हाउ द गर्ल यू विल गो एंड मैरी इज समबडी हु लिव्स इन यू नो इन इंडिया, सम सुशील सावित्री उस टाइप की घरेलू लड़की, लेकिन आप डेट करोगे जितनी भी मॉडर्न लड़कियां हों उनसे. इट्स नॉट फन, इट्स नॉट फेयर, एंड दोज आर डबल स्टैंडर्ड, सो यू गॉट टू चेक दैट.

आए जा आए जा, इतना बोला तो मैं तो आई गई. आपने बोला आए जा आए जा, एंड आई एम बैक. गाइज, वी हैव वन मोर आवर हियर विथ मी ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM. दिस इज इपी द हिपी एंड यू आर लिसनिंग टू माई शो एंड इवनिंग इन डैलस. तो गाइज, आई लव इट व्हेन ऑल माई लिसनर्स, आप मुझे कॉल करके, यू नो, यू आस्क हाउ आई एम डूइंग एंड यू आस्क मी माई स्टोरी एंड और यू जस्ट कॉल मी अप एंड जस्ट से हे वी लव द सॉन्ग्स दैट यू आर प्लेइंग एंड यू नो दैट मेक्स माई डे. बिकॉज मैं इतने चुन चुन के गाने ढूंढती हूँ आपके लिए, बिकॉज आई नो बॉलीवुड हम वैसे ही सारे दिन सुनते रहते हैं एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स टू ट्राई न्यू थिंग्स, विच मीन्स म्यूजिक इज अ रियली बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई कीप listening to a lot of new music all the time. मेरा ना Apple Music जो है शफल मोड पे चलता रहता है और जैसे ही मैं गाड़ी में कनेक्ट करती हूँ वो अपने आप नए गाने बजाते रहता है. It doesn't play me the same songs in my library. It just keeps playing different songs. And when I find something really nice, I actually share it with you guys. So there you go. Thanks to Apple Music, you guys get to listen to a lot of new fun tunes. तो जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स एंड डबल स्टैंडर्ड्स इन रिलेशनशिप्स. सो वी जस्ट हैड अ कॉलर एंड ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेज दैट कुछ सालों पहले, यू नो, सडनली एवरीबडी स्टार्टेड बिकमिंग मोर इंडिविजुअलिस्टिक एंड दे स्टार्टेड, यू नो, थिंकिंग अबाउट सेल्फ, यू नो, मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगे इंस्टेड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एवरीवन बिकेम अ लिटिल मोर सेल्फ सेंटर्ड. आई थिंक He said it was because of the Me Too movement. I honestly think it happened because of the COVID thing. Honestly, क्योंकि COVID kind of pushed us into isolation. And then for almost 2 years, we just became these people who learned how to live their life on their own. Initially, I think everybody had the blues ki, hey, no social interaction. For us, for someone like me, I mean, it would have been very hard, but thankfully I had roommates that time. So, मुझे उतना कुछ feel हुआ नहीं. Plus, my classes were all online, and you know, I was still interacting with everyone. I was in college then, but for a lot of people I know who didn't have that kind of an interaction, they went to depression, and it was pretty sad. And I think it kind of trained all of us to just prioritize our own needs, which I agree with in a way as well. तो बिफोर वी गो ऑन एंड कंटिन्यू दैट सॉन्ग, मैं एक चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गई. उस टाइम पे ना मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ था एंड आई डिड नॉट नो अबाउट दिस, बट आई कुड हैव टोटली गॉटन कॉम्पनसेशन फॉर इट बिकॉज दिस गाय रेयर एंडेड मी इन द मिडल ऑफ I-35 एंड एज आई वॉज टर्निंग और मुझे आई डिड नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन. आई वॉज जस्ट सो शॉक्ड और मैं रोने बैठ गई भै भै करके. तो डोंट बी लाइक मी. इफ यू एवर गेट इन अ सिचुएशन लाइक दैट, यू नो, यू नीड टू डू टू थिंग्स. फर्स्ट कॉल द पुलिस एंड द सेकेंड कॉल उमर ख्वाजा, क्योंकि एक्सीडेंट सेकेंड्स में होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब कब हुआ ख़त्म, कब वो हुआ. एंड देन इफ यू एवर गेट इन सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन लाइक दैट और मे बी यू स्लिप ऑन अ वेट फ्लोर और एनीथिंग, कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा. ही विल हैंडल द लीगल बैटल वाइल यू कैन जस्ट फोकस ऑन रिकवरिंग एंड मेंटल हीलिंग एंड ऑल ऑफ दैट. ही विल फाइंड द कॉम्पनसेशन दैट यू आर एंटाइटल्ड टू एंड यू पे नथिंग अनलेस योर केस इज एक्चुअली वन. कॉल 4693005046. आई विल रिपीट दैट, 4693005046 और विजिट attorneyomer.com फॉर फ्री कंसल्टेशन. दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा. एंड नो, आई डोंट हैव ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW और एक्सीडेंट्स राइट नाउ, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग रात के 9 बज चुके हैं, आप सब ऑफिस से घर पहुंच चुके हैं. और अगर नहीं गए हैं तो गाइज, व्हाट आर यू डूइंग? गो होम, गो होम.

0: You know what, guys? You know what I like about this modern indie pop? I know we all know indie pop as 90s का म्यूजिक, लकी अली, अलीशा चिनॉय, ऑल ऑफ दोज. हाँ, वो भी थे एंड आई लव दैट इरा टू, बट दिस मॉडर्न इरा ऑफ इंडी पॉप रॉक, यू नो, इंडिपेंडेंट म्यूजिक जिसको हम बोल रहे हैं. इंडी मीन्स इंडिपेंडेंट, नॉट इंडियन. इंडिपेंडेंट, इंडी मीन्स इंडिपेंडेंट, द वर्ड कम्स फ्रॉम दैट. तो द यू नो व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इज, पहले तो ये कि जिन लोगों को नेपोटिज्म की वजह से चांस नहीं मिलता था टू कम इन टू द म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री, दे कैन ऑल्सो मेक अ नेम फॉर देम सेल्व्स बाय जस्ट यू नो गेटिंग अ बंच ऑफ पीपल टुगेदर, मेकिंग देयर ओन सॉन्ग्स, रिलीजिंग इट एंड देन जस्ट लीव इट ऑन टू द यूनिवर्स टू सी हाउ इट एक्चुअली रिस्पॉन्ड्स. आई थिंक दैट इज प्रिटी कूल. नंबर वन, दैट्स वन ऑफ द रीजन्स वाई आई रियली रियली लाइक. टू, 90% ऑफ दिस इज फंडेड बाय देमसेल्व्स. दे आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी ऑफ दीज बिग लेबल्स लाइक सोनी म्यूजिक, HMV और इतने बड़े बड़े लेबल्स के साथ नहीं है. खुद ही अपने गाने बना रहे हैं, खुद ही रिलीज कर रहे हैं, खुद ही वीडियो बनाने के लिए भी पैसे डाल रहे हैं. एक्टर्स भी उनके दोस्त भाई लोग ही होते हैं कई लोग, जो एक्टिंग करते हैं विद म्यूजिक वीडियोज में. एंड अभी जो गाना मैंने आपके लिए बजाया था, दैट काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ यू नो जॉन मेयर मीट्स इंडियन लाइक हिंदी लिरिक्स. दैट्स वॉट इट रिमाइंडेड मी ऑफ. इट वॉज प्रिटी क्यूट, वेरी स्वीट लिटल सॉन्ग. आई लाइक इट. दैट वॉज कॉल्ड ये दुनिया जला दो बाय जनिष्ठ जोशी एंड इट एक्चुअली हैज़ लाइक आई सेड 1.5 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब. दैट्स वाइल्ड. एंड वाइल आई वॉज प्लेइंग दैट सॉन्ग फॉर यू, मैं उनका मैं वो गाना भी सुन रही थी साथ में एंड द वीडियो वॉज प्लेइंग इन द बैकग्राउंड. सबसे दूसरी चीज़ पता मुझे क्या अच्छी लगती है, इनके जो एक्टर्स होते हैं ना वीडियोज़ में, नो दे आर नॉट मॉडल्स, दे आर नॉट लाइक सुपर मॉडल्स एंड दे आर नॉट लाइक दीज लाइक गॉड लाइक फिगर्स, यू नो, विद द सिक्स पैक एब्स एंड द परफेक्ट बॉडी एंड द परफेक्ट हेयर एंड द परफेक्ट स्किन एंड ऑल ऑफ दैट. वो नहीं है गाइस, दैट इज़ अनरियलिस्टिक. और हम में से कितने लोग ही हैं जो वैसे लगते हैं. अभी इसके वीडियो में ना, अभी जो गाना बजा रही थी उसके वीडियो में, द एक्टर ही इज़ लाइक दिस चोमू सा सीधा साधा लड़का, दाढ़ी भी नहीं बनाई हुई, बाल भी ऐसे ही बिखरे बिखरे से पड़े हुए हैं, कपड़े भी उसके ऐसे ढीले ढाले से हैं. आई मीन ही लुक्स लाइक जस्ट एन ऑर्डिनरी किड, जस्ट लाइक एनी ऑफ अस वुड लुक लाइक. एंड द गर्ल ऑल्सो लुक्स लाइक अ गर्ल नेक्स्ट डोर, जस्ट लाइक यू एंड मी. नॉट अ मॉडल टर्न्ड इन टू अ गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज, बट समबडी हु कुड जस्ट बी योर पड़ोस की लड़की, यू नो. सो दैट्स वॉट आई लाइक. इट्स सो रियलिस्टिक, इट्स सो रिलेटेबल.
1: साथिया मधम मधम तेरे.

इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विथ एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल

दिस इज हिप्पी द हिप्पी गाइस, इट इज ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू गो। आज मेरे पास तो बहुत एनर्जी है क्योंकि आज मैं रेस्ट करके आई हूँ थोड़ा सा, तो आज मैं मर नहीं रही हूँ बाय द एंड ऑफ माय शो। आई एम वेरी मच अलाइव एंड विदाउट एनी डाइट कोक और कैफीन आई मस्ट से। हाउएवर मेरे अलाइव के या डेथ के बारे में ना बात करते हुए हम ये बात करते हैं कि गाइस आपको टैक्सेस के बारे में हेल्प चाहिए कि नहीं। This part of the show is brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax firms and accounting firms in America. Whether you are an individual startup or an established business, AG Fintechs offers innovative financial solution tailored to your needs. Chahe aap bookkeeping kar rahe ho, payroll accounting kar rahe ho, ya fir bank ya credit card reconciliation to proactive tax planning, tax compliance. ओहो मेरा मुंह थक गया, लेकिन इनकी लाइन नहीं थकी यार, इतने सारे सर्विसेज ऑफर करें। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिजनेस एडवाइजरी सर्विस, दे कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज, कंप्लायंट एंड फ्यूचर रेडी एंड ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड कमिटेड टू योर सक्सेस। कॉल एजी फिनटेक्स, दे आर योर पार्टनर इन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फ्यूचर। कॉल 4699429888 बिकॉज हैंडलिंग फाइनेंसेस इन अमेरिका इज काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। सो या I totally get it. Call somebody who can really help you out with that stuff. This is Ishq Hai from the series on, was it Netflix? Yeah, Netflix ka ek series aaya tha, Mismatched, which had a lot of original songs. I actually loved that series. There were like 3 or 4 seasons. Super cute. You should go check it out.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
4: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया।
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में? सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
8: हाय, आई एम राजकुमार राव एंड यू आर लिसनिंग टू द मोस्ट पॉपुलर एफएम स्टेशन इन द यूएस, 104.9 एफएम, फन एशिया रेडियो।
9: डालस की धड़कन 104.9 एफएम, फन एशिया रेडियो।

गुड इवनिंग डैलस, आप सुन रहे हैं दिल से डैलस विद स्निग्धा ऑन फनीशा 104.9 FM। वेलकम टू द नाइट क्लब। इट्स ऑफिशियली 10 PM, जहां दिन भर के टू डू लिस्ट खत्म होते ही और असली थॉट शुरू होते हैं। वैसे एक बात है, रात को 10 बजे के बाद हम सब एक प्रॉमिस जरूर करते हैं, आज जल्दी सो जाऊंगा, और फिर 11 बजे पे वही इंसान बोल रहा होता है, बस एक और चीज देख लेता हूँ। हमारा स्लीप स्केड्यूल और हमारी कॉन्फिडेंस, दोनों का कनेक्शन कभी समझ ही नहीं आती है। चलिए अब थोड़ा म्यूजिक हो जाए आपके लिए।

0: मंडे ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। सो डिनर का डिसीजन के बारे में बात करें तो खाना तो खा लिया, अब क्या टीवी देखेंगे या फोन पे स्क्रॉल करेंगे, या थोड़ी मीठा कुछ हो जाए डिनर के बाद, या वॉक पे चलते, या फिर बस सोफे पे बैठ के 20 मिनट सोचने के लिए लाइफ में नेक्स्ट क्या करना है। फनी बात ये है, दिन भर हम डिसीजंस लेते रहते हैं और रात को एक सिंपल डिसीजन भी डिफिकल्ट लगता है। चाय बना लो क्या यार, अगर चाय पी ली तो नींद तो आएगी या नहीं। चलिए चाय के बिना ही मूड फ्रेश करते हैं एक और गाने के साथ।
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी, मलिका तो फरिया।

एक चीज़ तो मैंने नोटिस की है, बड़े होने के बाद वीकेंड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। पहला वीकेंड मतलब अच्छा नो स्कूल, अब वीकेंड मतलब कौन सी काम निपटाना है, लॉन्ड्री, ग्रॉसरीज, क्लीनिंग। और फ्रेंड संडे की रात को लगता है वीकेंड इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया यार। शायद एडल्ट लाइफ की सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है, टाइम तभी फास्ट चलता है जब हम फ्री होते हैं। चलिए इसी फीलिंग के साथ वन मोर ब्यूटिफुल ट्रैक फॉर यू गाइज।

0: की जांच लिए। तुम ठीक हो?
1: यस अंकल।
2: हाँ ऑफ कोर्स एवरीथिंग्स ओके पापा। हस्बैंड वाइफ स्टूपिड फाइट्स। अब सो जाओ। गुड नाइट। मामा
0: चलो ज्योति

गीतांजलि, पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।

soulful songs are just classic hits. So before we hit the break, एक last thought. रात को हम सब future planning में experts बन जाते हैं. कल से healthy, कल से organized, कल से exercise. रात वाला version हमारी काफी impressive होता है. बस problem ये है, सुबह वाला version उसको ignore कर देता है. चलिए कल की planning तो कल ही करेंगे, पर अभी के लिए गाने सुनेंगे.

that was Chalaya from movie Jawan, starring Shahrukh Khan and Nayanthara. You know, when I talk about the 10 PM club, all I think is हम सुबह से इतने भाग दौड़ में रहते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, घर का काम करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट म्यूजिक एक ऐसा चीज़ है विच मेक्स यू कीप कामर. तुम्हें लाइक दिन भर यूर इन अ केओटिक थिंग, बट वेन यू लिसन टू अ नाइस फील गुड सॉन्ग इन द नाइट, दैट इज़ द मैजिक ऑफ द म्यूजिक दैट मेक्स योर माइंड फील पीसफुल. इसीलिए आज रात हमारे ऐसे गाने हम बजा रहे, सो दैट यू जस्ट फील अ लिटिल कामर इन साइड योर सेल्फ एंड जस्ट एन्जॉय द म्यूजिक एंड द मंडे नाइट वाइब. क्योंकि कल से ट्यूजडे है एंड आपको यू विल बी थिंकिंग कि ओके ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे आई एम रेडी फॉर द वीक.

वेलकम बैक टू द 10 PM क्लब ऑन दिल से डैलस विद स्निग्धा। वैसे एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, आप दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ, कुछ हमारी देसी आदतें ऐसी की वैसी रहती है। लाइक घर में कोई नया डब्बा आए, पहले उसमें बिस्किट्स नहीं मिलेंगे, पहले उसमें मिलेंगे पुराने बिल्स, रैंडम वायर्स और वो एक चार्जर जिसको कोई नहीं जानता किस चीज़ का है। और जब पूछी जाए ये क्यों रखा है, आंसर रेडी होता है कम आ सकता है, कभी कभी, कभी आएगा। Then we'll be thinking, कभी आने के लिए अभी से निपटा लो। That is just our habits. I have the next beautiful track ready for you guys. It's from the Twin Strings launch. If you are a fan of a remix, a nice feel-good version which gives you like, yaar, kya gaana hai, this one is for you. It's a must listen to all my listeners.

That was a beautiful songs of medley. तो अगर हम बात कर रहे थे हमारे देसी हैबिट्स के, अगर मैं देसी हैबिट्स के बारे में बात करूँ तो द फर्स्ट थिंग इज़ खाना. खाना एक इमोशन होता है हमारे लिए, और घर पे एक क्वेश्चन तो रोज़ होता है, खाने में क्या बनाएं. और फनी पार्ट पता है क्या होता है, जब आंसर मिलता है हमें जो मन करे, बस वही सबसे डिफ़िकल्ट ऑप्शन होता है. कुछ बना दो बोलना डिफरेंट है, कुछ मन जो भी मन करे वो कर दो बोलना डिफरेंट है. फिर 20 मिनट डिस्कशन होती है, क्या खाना है, कहाँ से लाना है, हेल्थी खाना है या टेस्टी, और एंड में वही डिसाइड होता है जो हमने पहला सोचा है. डोंट यू गाइस रिलेट टू दिस कॉन्वर्सेशन? मेरे घर में तो ये रोज़ होता है गाइस. नेक्स्ट ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर यू.

That was Tujhko from movie The Cocktail 2, starring Rashmika Mandanna, Kriti Sanon and Shahid Kapoor. ये मूवी की बात ही अलग है. इट्स अ मॉडर्न लव स्टोरी, बट क्या कपड़े पहनते हैं इसमें. आई जस्ट लव व्हाट दे वर वेयरिंग. द कास्ट वाज टू गुड एंड उनके फैशन डिजाइनर हैंड्स ऑफ. तो व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस मूवी, ऑल आई वाज थिंकिंग लाइक ये लोग घूमने जाते ना, लाइक व्हेन आई वाज थिंकिंग लाइक इफ इट इज मी एंड हमारे घर में बातें हो रही है, रोड ट्रिप या फ्लाइट. फ्लाइट का क्या फ़ायदा है, टाइम बच जाता है, लेकिन रोड ट्रिप का मज़ा ही अलग होता है. रैंडम स्टॉप्स, रैंडम पिक्चर्स, और वो एक फ्रेंड जो बोलता है बस 10 मिनट रुकते और हम हाफ एन आवर वहीं पे होते हैं, और हम ये बोलते हैं चिप्स लेते हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं. रोड ट्रिप्स में डेस्टिनेशन से ज़्यादा स्टोरीज मिलते हैं. बस एक कंडीशन, प्लेलिस्ट अच्छी होनी चाहिए. तो आप मेरे प्लेलिस्ट भी सुन लो अगर इफ़ यू वांट अ स्लो नाइस रोमांटिक वाला प्लेलिस्ट, तो ये प्लेलिस्ट. नहीं तो हम ट्यूसडे के दिन बजाएंगे दूसरे प्लेलिस्ट आपके लिए.

Welcome back to Dilse Dallas with Snigdha on Phonesia 104.9 FM पर after a break. अगर मैं पूछूँ आपसे मूवी थिएटर या घर पे स्ट्रीमिंग आप क्या चूज करोगे? नॉर्मली थिएटर का एक्सपीरियंस अलग है, बिग स्क्रीन, पॉपकॉर्न और वो फीलिंग की मूवी एक्चुअली इवेंट है. लेकिन घर पे कंफर्ट कोई छोटी चीज़ नहीं है. ब्लैंकेट, फेवरेट स्पॉट और पॉज बटन का पावर. प्रॉब्लम बस इतना है, घर पे मूवी देखते वक्त मूवी से ज़्यादा फ़ोन चलने लगता है. सो लेट मी नो इफ़ यू वुड चूज़ घर पे मूवी या बिग स्क्रीन पे. अगर आप मुझसे पूछे तो घर पे मूवी अंटिल इट्स माई फेवरेट स्टार्स रिलीज इन द बिग स्क्रीन. नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू गाइज़.

एक मिडनाइट थॉट बताऊं मैं आपको, हम सबके पास एक फेवरेट कंफर्ट जोन एक चीज होती है, किसी के लिए एक गाना, किसी के लिए एक चाय, किसी के लिए वीकेंड का प्लान, और किसी के लिए बस घर का सोफा। लाइफ कितनी भी बिजी हो जाए, ये छोटी कंफर्ट ही बैलेंस बना के रखता है। एंड ऑनेस्टली कभी कभी अचीवमेंट ये नहीं होती कि हमने कितना काम किया है, अचीवमेंट ये भी होता है कि हमने अपने लिए थोड़ा टाइम निकाला कि नहीं। माई लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस शो वुड बी, आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए और प्लीज बी फॉर योर सेल्फ, एंड सेल्फ लव इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। वन मोर ब्यूटिफुल ट्रैक फॉर यू गाइज बिफोर वी एंड द शो इन 10 मिनट्स।

और देखिए 12 बजने वाले हैं द 10 PM क्लब। आज का सेशन यही एंड करना होगा। आज की रात बस इतनी याद रखना, दिन चाहे कितना बिजी हो थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर रखिए। मैं हूँ स्निग्धा और आप सुन रहे थे दिल से डैलस ऑन फिनिशिया 104.9। कल फिर मिलेंगे नई कॉन्वर्जेशन, नई सॉन्ग्स और एक फ्रेश नाइट वाइब के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट डैलस।

जहे नसीब, इतनी रात गए आप हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ तो बात होगी इस चैनल में। रात भर आपके साथ फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।
1: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner Fun Asia Network.
2: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: This is Uday Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: Rest a while and run a mile with Funasia Radio.
1: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
2: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
1: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
2: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट
3: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Funasia Radio.
4: Raja.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है
2: ऐसी जगह।
3: अरे झुमका भी मैं भूल गई, जाने जा तेरे लिए।
4: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
3: अरे

0: हनन लगे रहो।
1: I love you।
2: हनन तेरा फोन आया यार।
0: औरत
2: चल चल।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। टैलिस्मैन रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: कितने आदमी थे?
1: सर्कल पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: your favorite music on your favorite radio.
1: जिद शर्त दे हरबीर, जे सरकार नहीं कुछ कर सकी तां तू कर लेगा।
2: संसारपुर सरकार दा पिंड नहीं, मेरा पिंड है, मैं जिउंदी करूंगा हॉकी।

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: Pain of God. Let's go now.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: प्रवीण, व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? देखो, तुम्हारे पास दो दिन है
1: सर। वो
0: अगर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं लाए ना, देन आई एम सॉरी।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanvay Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया
3: मैं साबित कर सकती
4: हूँ।

0: बताइए कहाँ ले चले?
1: पीएससी हेडक्वार्टर्स और फिर सीधा सरकारी अस्पताल।
2: कम से कम समय तो निकाला पटना एग्जाम में, वरना इनके पास तो टाइम ही नहीं होता किसी से मिलने के लिए।
1: ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं इसलिए रुकते नहीं ना एक्चुअली।

0: कौन है? कोई बड़ी हस्ती?
1: रूटीन ऑफिस वर्क।
0: रूटीन जब बदलता है तो सबसे पहले बीवी को पता चलता है।
1: नहीं बता सकते यार,
0: मुझ पे भी भरोसा नहीं है।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.
2: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फोनीशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
2: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
3: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
5: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
6: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
7: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
5: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
8: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
9: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
10: सबसे पहले तारीफ उस ऊपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, ज़मीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया. उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज़ वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम.

0: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
1: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
0: कहाँ?
2: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
3: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, one vibe.
4: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duct time.
5: Ritesh, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
6: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
5: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
6: वेट, व्हाट?
1: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
7: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
1: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
12: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
13: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
14: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
15: जिंदगी एक रंगमंच है
16: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
17: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com।
18: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
19: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
18: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
19: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
18: सच में? सब संभालेंगे?
19: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
17: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: It is 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
8: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Call 857-891-8942 today.
10: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
11: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में. सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ. वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर.
12: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 96641.
13: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
14: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
15: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
14: नहीं.
15: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
14: नहीं.
15: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
14: वो भी नहीं.
15: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
16: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax. Your growth, our strategy.
17: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
18: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: For decades, one man has made the world dance.
0: Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa, and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.
9: On today's date, in the year 365, a powerful earthquake off the coast of Greece causes a tsunami that devastates the entire city of Alexandria in Egypt. Although there were no measuring tools at that time, scientists now estimate that the quake was actually two tremors in succession, the largest of which is thought to have had a magnitude of 8.0. Some stories from the annals of history that happened on today's date, the 21st of July. Jean Picard died on today's date in 1682 in Paris. A French astronomer who first accurately measured the length of a degree of a meridian, that's the longitude line, and from that computed the size of the Earth. You know, it takes 4 minutes to go from one line, one meridian, to another. Robert Burns. Died on today's date in 1796. The national poet of Scotland, who wrote lyrics and songs in Scots and in English. Also famous for his dramas and his rebellion against orthodox religion and morality.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hey, तुमने कभी insurance लिया?
2: लिया.
1: कभी policy समझ भी आया?
2: नहीं आया.
1: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
3: Visit www.senadainc.com today.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: अरे यार, घर मिल गया.
6: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
7: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
6: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
7: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
8: अजी, सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
1: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
8: सच में? सब संभालेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.

0: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
1: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
2: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है।
3: प्लान या होप?
2: मतलब है
3: प्लान, मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है।
2: ओके, तो मेरा वाला होप है।
3: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं।
2: क्यों?
3: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है।
1: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट wealthtactic.com।
4: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता
5: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
0: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
1: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
12: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, phir pooja ka saman, gifts bhi kharidne hain aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin acha sa dinner karke aayenge.
13: Aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to?
12: Kahan? Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, pooja essentials, live pani puri, fresh ganne ka juice, bakery items plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
1: Foodistan in Aubrey. Everything Desi. One place, one vibe.
14: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

0: थामिए इस बदमाश दिल को. मीठू इज कमिंग ऑन नेक्स्ट एंड शी इज गोना डू अ ग्रेट शो हियर फॉर यू. यू ऑल कंटिन्यू लिसनिंग टू द फन एशिया नेटवर्क. दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इज माय शो फॉर टुडे एंड आई डू होप यू एंजॉयड इट एज मच एज आई लव ब्रिंगिंग इट टू यू. एंड दैट इज एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 7 टू 10 राइट हियर ऑन द फन एशिया नेटवर्क. फॉर दोज ऑफ यू वुड लाइक टू रीच मी डायरेक्टली, माय नंबर इज 214-675-1754 and it is right now 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग. और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
5: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
7: जिंदगी एक रंगमंच है
8: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल. असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो. पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल. हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ.
5: कॉल 972-897-1530 firstunitedtexastitle.com.
9: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
10: Excuse me. It's called being loyal.
9: It's called being predictable.
10: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
9: And what's so special at Neon Cactus?
10: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
9: Not bad.
10: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
9: Okay, this I didn't expect from you.
10: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
12: बैठ जाऊँ? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
13: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
12: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
14: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
15: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
0: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाय, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
5: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal. For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

विद द एम्फेसिस ऑन द टाइटल तेरे नैना, टेल मी वो आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? अगर नहीं तो आपका भी समझ में आ जाएगा. एक और गाना विच हैज़ द सेम टाइटल कमिंग अप फॉर यू. पहले कुछ दुआ सलाम तो कर लें भाई. हेलो, नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू फनीचर रेडियो 104.9 FM. ये है गपशप गली विथ मी टू. और आज एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, क्योंकि क्या है ना कि फीफा सेगमेंट जो हमारा आखिरी हुआ करता था वो ख़त्म हो गया है. तो वॉट नेक्स्ट, कुछ सोचा, कुछ समझा और कुछ लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए बिटवीन 12 to 12:30. सी इफ यू इन्जॉय दैट सेगमेंट. आई नीड योर फीडबैक्स ऑन दैट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट वंस एंड योर कॉन्ट्रीब्यूशन एज वेल. सो ज़रूर ट्यून्ड इन रहें, क्योंकि 11 से 12 के बीच हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो आपके लिए भी और मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, रिलेटेबल हैं, फन है, इंटरेस्टिंग है. ऑल ऑफ दोज टॉपिक्स जो हमारी रोज़मर्रा की बातें होती हैं, ठीक है, उनमें से कुछ बातें होंगी. And of course, between 10:45 to 11, we will have the segment जहाँ पे आज के दिन जो films release हुई उनके कुछ अच्छे अच्छे गाने लगाने का एक बहाना ही तो है. That segment which I call This Day in Cinema History. So, ladies and gentlemen, let's begin with again the same title for this next track once again in the music of Shankar Ehsaan Loy.

0: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
1: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
4: हाँ.
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ.
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ.
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
5: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
6: Same taste se bore ho gaye. Try something different. Mexican fusion, global flavors, happy hours. Neon Cactus Fairview. Mexican, but different. Exactly.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
12: सच में सब संभाल लेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
11: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

कल ना आपको गर्मी लगी तो आज थोड़ा सा और गर्म होने वाला है. लेट मी टेल यू ऑल दैट. ट्यूसडे यानी कि आज और कल दो बहुत ही गर्म दिन रहने वाले हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने नहीं वाली. इट इज़ गोइंग टू बी इवन मोर इन द नेक्स्ट वीक दैट वी आर गोइंग टू फेस. टेम्परेचर्स आज जो हैं कुछ 105 के आसपास होने वाले हैं, एंड देन द हीट इंडेक्स कम्स इन टू एक्शन एंड दैट इज गोइंग टू मेक अस फील as hot as 112 degrees. Heat advisory and excessive heat warning both in effect for us today, tomorrow and in the coming days. So yes, take all sorts of precaution that you can. Agar bahar ka kaam zaruri nahi ho to na kare. Agar aapke plants aur pets ka aap khyal rakhna agar jante hain to very good. Agar nahi to Google pe aapko bahut sari aisi tips and advices mil jayengi jo aapke liye bahut helpful ho sakti hai. Itna to main keh sakti hu ki bhai apne dogs ko thoda sa you know धूप ढलने के बाद, सूरज ढलने के बाद आप उनको वॉक पे ले जाएं, दैट विल बी लिटिल बेटर. एंड टेक अ स्प्रे अलोंग विथ यू एंड इफ पॉसिबल वाटर फॉर देम टू ड्रिंक एज वेल एंड फॉर यू एज वेल. डू रिमेंबर दैट कि धूप ढलने के बाद भी हमारे पेवमेंट्स ये सारी जो सीमेंट के होते हैं, दे ऑल्सो एब्जॉर्ब लॉट ऑफ हीट एंड दे डोंट यू नो बिकम कोल्ड और कूलर ड्यूरिंग द नाइट आवर्स ऑल्सो. थोड़ा सा टेम्परेचर इधर उधर मतलब जो कम होता है उसके कारण भी यू नो कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता है. इसीलिए यू नीड टू रिमेंबर कि ये हमारा टेम्परेचर जो है ये पूरे हफ्ते ऐसे ही चलने वाला है. नाउ देर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यू डिग्रीज ऑफ कूलर वेदर going into Thursday, Friday and Saturday and maybe Sunday also. And when I say cooler, 2-3 degree ka fark hoga, yani ki 105 se 102 tak aa jayenge, lekin phir bhi it is hot for us to not shed our guards, alright? So ye baat aap yaad rakhein. Phir uske alawa next week actually we are going to have even hotter temperatures, जिसके बारे में वक्त आने पे बताऊंगी. आज का temperature मैंने आपको बता ही दिया, it is going to be really hot, 105 degrees and the heat index is going to be at anywhere around 110 to 112. Kal 104 hoga with the same heat index and parso it is going to be 102, but the heat index is going to make it feel like 110, 105 to 110. So yes, this is what is in store for all of you. Hamare raat ke temperatures bhi lower 80s mein rehne wale hain. So yeah, this is what we have to deal with when you live in Dallas-Fort Worth.

All right, this request that came from a listener जिन्होंने अपना नाम शेयर नहीं करना चाहा ऑन एयर, लेकिन वो जानते हैं कि ये स्पेशली उनके लिए था. एंड टू ऑल दोस जो अदनान समी के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि यार आवाज़ की क्वालिटी में अलग ही खनक है, यू नो. और ये सारे गाने ना हमारे एसोसिएटेड हो जाते हैं उस ज़माने से जिस ज़माने में हमने इस गाने को पहली बार सुना था, और उस बंदे के लिए जिसके लिए हमने पहली बार दिमाग में सोचा था कि यार उसका चेहरा वाकई में इस गाने को बिल्कुल सूट करता है, एंड दैट समबडी स्पेशल इन माई लाइफ. हर गाने के साथ तो नहीं कहूँगी एक्चुअली, लेकिन बहुत सारे कुछ खास गाने हैं ऐसे कि जो कि हमें उस मोमेंट को याद दिला देते हैं, उन लोगों को याद दिला देते हैं जिनके बारे में सोच के हमने उन गानों को एंजॉय किया, या तो जिनके साथ हमने उन गानों को एंजॉय किया. वैसे ही कुछ ना ज्वेलरी का मामला है कि कभी कभी हम जो अपने स्पेशल लोकेशंस के लिए वो जो एक खास ज्वेलरी खरीदते हैं ना, वो ज्वेलरी के साथ हमेशा के लिए वो मोमेंट एकदम जिसे कहते हैं ना वो कैप्चर हो जाता है. एंड एवरी टाइम यू सी दैट ज्वेलरी और वेयर दैट ज्वेलरी, आपको वो मोमेंट, खूबसूरत सा मोमेंट आपकी ज़िंदगी का याद आ जाता है. ऐसे ही अपने स्पेशल मोमेंट्स को और चमकीला और चमकदार बनाए विथ मालाबार. वाह, चमकीला और चमकदार, ऐसा नहीं लगा साबुन का कोई ऐड मैं कर रही हूँ. नहीं, लेकिन वाकई में चमकीला ये शब्द जावेद अख्तर ने तो दिया हमें, दिल चाहता है हमें. एंड वो चमकीले दिन की जो बातें हैं ना, जो चमकीले जो हमारे हमारे लाइफ स्टोरी के जो चमकीले दिन हैं उनको और ख़ास बनाते हैं मालाबार गोल्ड एंड डायमंड. लेडीज एंड जेंटलमैन, डू रिमेंबर टू गो टू देयर फ्रिस्को लोकेशन, योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी एंड ऑल्सो गोल्ड ज्वेलरी. कंटेम्प्रेरी हो या फिर हो बिल्कुल यू नो ट्रेडिशनल, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आपको मिल जाती हैं. वंस अगेन, इट इज़ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, मेक एवरी सेलिब्रेशन वेरी वेरी स्पेशल विथ देम.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
3: लिया.
2: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
3: नहीं आया.
2: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
4: Visit www.senadainc.com today.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं.
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं.
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं.
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
8: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
9: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: तोहफा हो या यादें, पहुंचाइए प्यार. इंटरनेशनल शिपिंग मेड सिंपल विद SFL Worldwide. SFL Worldwide, delivering connections and smiles.
12: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
13: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
12: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
13: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
14: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer?
15: उमर ख्वाजा.
16: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
17: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.
18: Tracks that put you on the right track.

इट इज द मूवी बवाल जिसका आपने ये गाना सुना, और बवाल रिलीज हुआ था आज ही के दिन, दैट इज 21st of July 2023, स्टारिंग वरुण धवन एंड जानवी कपूर. यस, दिस इज द सेगमेंट जहाँ पे मैं आज के दिन की रिलीजेस कुछ लेकर आती हूँ इन सिनेमा हिस्ट्री, द मूवीज दैट रिलीज ऑन दिस पर्टिकुलर डे. और ये नितेश तिवारी की फिल्म थी जिनका रामायण हैज़ रिसेंटली सीन द ट्रेलर लॉन्च एंड काफ़ी चर्चा चल रही है. और ये वाली फिल्म जो उतना कुछ कमाल नहीं दिखा पाई बॉक्स ऑफिस पर, बट येट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट वरुण धवन एंड जानवी कपूर केम टुगेदर. फॉर दैट रीजन इट विल बी स्पेशल फॉर देम ऑलवेज. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो तारीख है 21st of July 2023, जब बवाल रिलीज हुई थी, यही वो दिन था जब दो बहुत ही मतलब सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट्स रिलीज हुई थी हॉलीवुड के मार्केट में. एंड दैट्स बार्बी, जिसके प्रोडक्शन में स्पेसिफिक वो बार्बी लैंड के सेट्स बनाने के लिए एक पर्टिकुलर कलर की कमी हो गई थी. एंड दैट्स रॉस्को's फ्लोरोसेंट पिंक शेड, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट, राइट. एंड द second one that released on the same day in 2023, it was Oppenheimer. और ये Barbenheimer phenomenon के तौर पे जाना जाता है ये दिन July 21st 2023 का. and we know that Oppenheimer, the IMAX 70mm film reel was 11 miles long and weighed 600 pounds, ladies and gentlemen, and it required IMAX to engineer custom platter extensions. And talking about which, I must mention The Odyssey that is playing at the theaters right now. तो ये इनका भी दो 70mm IMAX reel जो है, it stretches 11 miles and it weighs 530 pounds, ladies and gentlemen. At 172 minutes, The Odyssey by Christopher Nolan, ये इनकी movie जो है केवल 8 minutes short है of IMAX's physical limit. जी हाँ, बहुत सारे चीज़ें हैं जो इसके लिए बहुत special है. Maybe during the week I'll keep covering a little bit of all of that, because it is really interesting how they make IMAX films. And you need to know that an IMAX camera could record for only 3 minutes before the film had to be reloaded. Lot of things that has to be done for this particular shoot for IMAX, on IMAX, है ना. तो ये सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे आपको. लेकिन टॉकिंग अबाउट क्रिस्टोफर नोलन, लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म दैट रिलीज्ड ऑन दिस डे इन 2017, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड इट इज डनकर्क दैट रिलीज्ड. और क्रिस्टोफर नोलन ने कम्प्लीटली, यू नो, ही डिडंट वांट टू डू द सीजीआई शिप्स और एनीथिंग. इंस्टेड ही ट्रैक डाउन एंड यूज एक्चुअल हिस्टोरिकल नेवल डिस्ट्रॉयर्स एंड रियल वर्ल्ड वॉर टू Spitfires. That's what he exactly did. Can you imagine his commitment? And that's the commitment that you see in the Odyssey as well. वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किया. As I said, I'll keep sharing with you. But right now, let's slip into another song which released on this day, the same year as Dunkirk. That is 2017. Film का नाम है Lipstick Under My Burqa. जी हाँ, hit or yeah, average मान सकते हैं, somewhere in between probably. And this one was banned by the censor board for being too lady oriented. And the makers won an appeal and turned the controversy into a marketing win. Lipstick Under My Burqa.

डिश तो हमारा खाने के साथ भी चलता है, और जब वो सर्व किया जाए पूरे प्यार के साथ और पूरा टेस्ट जो बड है हमारा, टेस्ट बड अगर बिल्कुल मजल उठे तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट सक्सेस ऑफ ए डिश। तो ऐसा ही कुछ डिशेस कहना चाहिए मुझे, बहुत सारे ऐसे डिशेस मिलेंगे विच विल एक्साइट योर टेस्ट बड्स। नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स दैट यू विल फाइंड विद दैट होम स्टाइल पंच एट तंदूरी फ्लेमलेस रेस्टोरेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट यू शुड चेक आउट इन गार्लैंड। यू आर लिसनिंग टू फनेशा रेडियो 104.9 FM, लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, दिस फिल्म दैट स्टार्ड रत्ना पाठक, कुंकना सेन शर्मा एंड अदर्स, वॉज क्रिटिकली अक्लेम फिल्म ऑफ 2017, जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी, इसीलिए तो गाना सुनवा रहे हैं हम आपको। एक और फिल्म का गाना सुनवाने वाली हूँ जो उसी दिन यानी कि 21 जुलाई 2017 को ही रिलीज हुई थी, और कुछ मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स। टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म थी जिसमें थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑल्सो, एंड यू मस्ट नो दैट दिस फिल्म वॉज इंस्पायर्ड, हिज कैरेक्टर वॉज एंड ए कैरेक्टर दैट ही वॉज पोर्ट्रेइंग वॉज ए फैन ऑफ माइकल जैक्सन। फिल्म का नाम है मुन्ना माइकल, और मुन्ना माइकल में माइकल जैक्सन के फैन हैं, तो ऑब्वियसली डांस स्टेप्स भी टाइगर श्रॉफ से करवाना ही था, एंड दैट्स व्हाट ही डिड इन दिस नेक्स्ट ट्रैक दैट आई एम गोना प्ले, जो कि उनके लाइफ का सबसे फिजिकली डिमांडिंग डांस रूटीन रहा है, डिफिकल्ट डांस रूटीन रहा है, ऐसा उनका कहना है यानी कि टाइगर श्रॉफ का। चलिए, टाइगर श्रॉफ तो डांस भी करते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो डांस नहीं करते, उन्होंने भी डांस डेब्यू किया इसी फिल्म में, एंड दैट्स वंस अगेन मुन्ना माइकल।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
0: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
7: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
8: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
9: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
6: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
8: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
10: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

You tune into Gupshup Gali with me too, ladies and gentlemen. This part of my show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax and accounting firms in the US. And aap logon ka ye janna zaruri hai ki chahe aap individual ho ya startup kuch ho aapka ya established business ho, aap sabhi ke liye kuch tailor made solution unke paas hai jo aapke unique needs ko satisfy karta hai, chahe wo bookkeeping ko lekar ho ya payroll accounting ya bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting and business advisory services. In sab mamle mein na aapke liye ek bilkul finances jo hai ek organized compliant tarike se ye aapke liye ye service lekar aate hain future ready karne ke liye aap logon ko. And you can absolutely trust them, you can check out their Google reviews, all of that. And you know, the best thing would be to give them a call, talk to them, find out how you like that and how you like their suggestions. ये बहुत ज़रूरी बात होती है कि जब हम नंबर शेयर करते हैं तो इस पर ज़रूर कॉल करें. ये मैं कितनी बार बोलती हूँ उसका आपको शायद अच्छे से पता होगा कि देयर शी गोज़ अगैन, कॉल एंड टॉक टू देम टू गेट द वाइब एंड ऑल दैट शी सेज़. बट ट्रस्ट मी, दैट इज़ द थिंग टू डू. कई बार वेबसाइट में आपको वो डिटेल्स मिल जाती हैं, लेकिन सही कनेक्शन जिनकी आप सर्विसेज लेना चाहते हो ना, उनसे बात करके समझ में आता है. एंड इफ़ यू टॉक टू देम यू विल नो दैट that you know they are the right people for you. Anil Grandhi and his incredible team are always ready to help you. They are just a phone call away. 469-942-9888, that's the number in the studio, ladies and gentlemen. कुछ हमारे जो दोस्तों के बीच कभी कभी ऐसे डिस्कशंस होते हैं ना टॉपिक्स पे, बस ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हम निकाल के लाते हैं इस सेगमेंट में. एंड वी कंटिन्यू दैट इन द नेक्स्ट सेगमेंट एज वेल. आफ्टर ऑल दिस इज गपशप गली विद मी टू.

दिस सॉन्ग विच इज कंपोज्ड बाय नदीम श्रवण फॉर दिस फिल्म कॉल्ड दिल है तुम्हारा, जो कि अर्ली 2000s में रिलीज हुई थी, लेकिन पिछले डेकेड इस गाने को फिर से अपलोड किया गया एंड दिस सॉन्ग इज स्टिल गार्नरिंग सो मच ऑफ लव. ये बताता है कि कुछ कुछ गाने ना एवरग्रीन कैसे बनते हैं, बस इसी तरह से बनते हैं कि मेलोडी इनमें इतनी स्ट्रांग होती है कि हमारी रिकॉल वैल्यू फॉर दीज सॉन्ग्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी amazing. I hope you enjoyed that song which was from the film, as I said, Dil Hai Tumhara. वैसे दिल की बात ये तो है कि हम सोशल मीडिया पे जाते हैं और इतना सारा कंटेंट हम जो देखते हैं उस पर लाइक और डिसलाइक का ये जो कल्चर है ये कितना स्ट्रांग हो गया है. तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सोशल मीडिया के जरिए हमारा ये जो हमारे पास जो ये सुपर पावर है ना कि लाइक और डिसलाइक यूं कर देते हैं चुटकी में. चुटकी की आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, तो चुटकी में कर देते हैं. इफ़ वी सी ए पिक्चर ए वीडियो और यू नो यूट्यूब पे जब कमेंट करना होता है हमें तो हम यूं बटन दबा देते हैं जीरो हेजिटेशन के साथ. और अगर कोई ओपिनियन या चीज़ हमारी थोड़ी सी भी नापसंद आए, हमें कुछ भी अगर नापसंद आता है उस पर, तो उस पर भी हम इमीडिएटली डिसलाइक भी उतनी ही चुटकी में दे देते हैं. नहीं, दिस सिंपल क्लिक ऑफ बटन हैज सबकॉन्शियसली मेड अस मोर जजमेंटल देन एवर बिफोर इन द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री. डोंट यू थिंक सो? ये जो ये चुटकी में डिसीशंस लेना, लाइक या डिसलाइक कल्चर जो है, ये मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के कारण और ज़्यादा हो गया है. डोंट यू थिंक सो? हम जिंदगी की हर चीज़ और हर इंसान को अब इस लाइक और डिसलाइक वाले डिजिटल फिल्टर के साथ देखते हैं. डू यू अग्री विथ मी हियर? लेट मी नो. हा, 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो.

अच्छा, आई हैव अ ट्रिविया फॉर ऑल ऑफ यू एंड दिस इज वॉट यू हैव टू डिसाइफर. ठीक है, मैं ये जो अगला गाना प्ले करने वाली हूँ, इट इज फ्रॉम ए फिल्म जिसमें काजोल का डबल रोल था. सो येस, द वन थिंग दैट यू विल हैव टू टेल मी इज द नेम ऑफ द डायरेक्टर. जी हाँ, मैं इसे सिंगर का नाम नहीं पूछने वाली हूँ, क्योंकि लता जी की आवाज़ है तो ये तो हर कोई पहचानेगा. इसीलिए आपको मुझे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आंसर देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू विन. और क्या जीत सकते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ राइट नाउ, राइट हियर. इट इज रेड हॉट चिली पेपर से ड्राई चिली चिकन या चिली बेबी कॉर्न. अगर आप मुझे बता सकें कि ये जो गाना मैं प्ले कर रही हूँ, ये जो फिल्म है, अगर फिल्म का नाम बता दिया तो आप यूं गूगल कर गए, राइट? तो मैं वो नाम नहीं बताना चाहती हूँ फिल्म का, बट आई विल टेल यू कि काजोल का डबल रोल है इसमें और ये 90s की फिल्म है. इस फिल्म को डायरेक्ट किन्होंने किया था? इफ यू कुड टेल मी, यू कैन सर्टनली विन फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर. लेडीज एंड जेंटलमैन, 9722355555. कुछ 90s के गानों के बाहर चल रही है अभी, अर्ली 2000s में भी गए हैं हम. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

खो गए थे हम इस फिल्म में. इट वॉज काजोल्स डबल रोल फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ये बहुत ही क्या कहना चाहिए, बिल्कुल हार्ट रेंचिंग फिल्म थी. एंड द टू सिस्टर्स एंड व्हाट हैपेंड टू द सेकंड सिस्टर, इफ यू वॉच्ड इट यू नो इट. दिस इज दुश्मन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कि संजय दत्त के साथ, जैसे कि मैंने कहा, डबल रोल था काजोल का. और मैंने आपसे पूछा था डायरेक्टर का नाम, और सही जवाब मुझे मिला अमरीना से. कंग्रेचुलेशंस, यू वन फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर, या तो ड्राई चिली चिकन या फिर चिली बेबी कॉर्न, आपके लिए बिल्कुल लिख दिया गया है. सो डू रिमेंबर टू चेक इट आउट लेडीज एंड जेंटलमैन इफ यू हैवंट ऑलरेडी. ये मुझे, मेरा कहना ही गलत है कि आपने रेड हॉट चिली का खाना खाया है कि नहीं, क्योंकि रेड हॉट चिली पेपर इज ए प्लेस जहां पे मैंने जब जो ट्राई किया है, मैं हमेशा सैटिस्फाइड नहीं कहूंगी, मैं लाइक ओवरवेल्म रही हूँ विथ ऑल द डिशेज दैट आई हैव ट्राइड देयर, राइट फ्रॉम इंडो चाइनीज टू द नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स दैट वी हैव. सारा कुछ यार, बटर चिकन यार, डालस का बेस्ट चिकन मक्खन वाला आपको यहीं पे मिलेगा. जरूर ट्राई कीजिएगा उनके वेरियस फूड. आई कैन नॉट गेट ओवर द इंडो चाइनीज, मुझे उनका इतना पसंद है. लेकिन वेन एवर एनीबडी एल्स ऑर्डर्स एनीथिंग नॉर्थ इंडियन, आई हैव ऑलवेज इंजॉयड ईटिंग दैट एज वेल. सो रेड हॉट चिली पेपर, लेडीज एंड जेंटलमैन, फोर लोकेशंस फॉर ऑल ऑफ यू यार, रिचर्डसन, मैकनी, एलन और फ्रिस्को में. और हमारा सही जवाब है तनुजा चंद्रा. तनुजा चंद्रा इज द डायरेक्टर. तनुजा चंद्रा जो कि जाने माने फिल्म मेकर विधु विनोद के जो है वो सिस्टर इन लॉ हैं, और अनुपमा चोपड़ा सिस्टर दैट शी इज. अनुपमा चोपड़ा, शी इज अ वेरी वेल नोन क्रिटिक, जर्नलिस्ट, ऑथर एंड एडिटर ऑफ द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया. सो येस, आई थॉट आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू यू. तनुजा चंद्रा ये वो हैं जिन्होंने को राइट किया द स्क्रीन प्ले ऑफ यश चोपड़ास दिल तो पागल है. तो बनता है ये गाना भी यार. You are tuned into Gupshup Gali with me too, ladies and

0: वो भी दीवाने।
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
2: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
1: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
2: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
3: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.
4: Tracks that put you on the right track.

यू आर ट्यून्ड इनटू गपशप गली वे से मी टू. आप लोगों के साथ ना एक इवेंट की जानकारी शेयर करनी है कि अगर आपको ब्रेक चाहिए अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से, जो एवरीडे का एक जो ग्राइंड है उससे अगर आपको कुछ रिलीफ चाहिए, दिस कुड बी एग्जैक्टली व्हाट यू बीन लुकिंग फॉर. ज्वाइन द ओशो मेडिटेशन रिट्रीट जो कि July 31st से August 2nd तक होने वाला है, एंड दिस इज हैपनिंग एट ओशो केवल्य धाम इन डेनिसन, एंड दिस इज इन टेक्सास. यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस प्लेस एंड यू कैन एक्सपीरियंस पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स, म्यूजिक सेलिब्रेशन, डीप साइलेंस एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ स्वामी प्रेम मैत्रेय. अगर आप बिगनर लेवल पे हो या एक्सपीरियंस मेडिटेटर हो, आप सभी वेलकम हो टू दिस इवेंट. लिमिटेड सीट्स हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें. यू कैन कॉल और व्हाट्सएप एट 214-395-6757. दैट्स 214-395-6757. योर जर्नी टू इनर पीस बिगिंस हियर July 31st through August 2nd at ओशो केवल्य धाम इन डेनिसन.

Your journey to inner peace begins here, July 31st through August 2nd at Osho Kevalya Dham in Denison. Once again, thank you very much for tuning in हमारी इस भागती दौड़ती जिंदगी में. हमारे इस सोशल मीडिया के कारण ना, हमारी इस डिजिटल पावर के कारण बहुत चीज़ें हम बहुत इंस्टेंटली करते हैं और उसमें लाइक एंड डिसलाइक एज वेल. बिकॉज वी आर सो यूज टू दिस डिजिटल पावर, वी ऑफन स्टार्ट अप्लाइंग दिस एग्जैक्ट सेम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक कल्चर टू आर रियल लाइफ रिलेशनशिप्स एज वेल. वुडंट यू अग्री? अगर कोई इंसान हमें पसंद है तो हम उसके साथ चिपक लेते हैं, बिल्कुल जुड़ जाते हैं. और एक अच्छी पोस्ट के तरह जो हम लाइक करते हैं ना, उसे हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, यानी कि हम अपने फ्रेंड को अपने साथ रखते हैं. बट द मोमेंट वी मीट समवन जिनकी ओपिनियन या वाइब हमें पसंद नहीं आती, हम इमीडिएटली वी डिसाइड टू डिसलाइक देम एंड कट देम ऑफ. ये एक फैक्ट है, ये मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, कि लोगों को हम पसंद नहीं जो करते हैं, जिनको हम पसंद नहीं करते, लेट्स पुट इट दैट वे, हम उनसे ज़्यादा कोई कनेक्शन या रिश्ता रखने को अवॉइड करते हैं. यू नो, वी कम्प्लीटली अवॉइड दैट, राइट? वी बेसिकली ट्राई टू अनफॉलो देम इन रियल लाइफ, करेक्ट? लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये जो जजमेंट है ना, एट द ड्रॉप ऑफ हैट लेते हैं. ये जो क्विक जजमेंट वाली बात है ना, हम यूं लेते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है. ये जो एक डिजिटल कल्चर जो हमारे में है, वो हमारे रियल लाइफ में भी घुस चुका है, वेदर यू अग्री और नॉट. असल जिंदगी सोशल मीडिया का न्यूज़ फीड नहीं है जिसे आप सिंपली स्क्रॉल करके हमेशा आगे बढ़ जाएं. क्योंकि मैं अपना अगर जस्ट ऑफ द कफ अगर कुछ याद करने की कोशिश करूं, तो कुछ ऐसे लोग, ऐसे इंसान, ऐसे फ्रेंड्स मेरी ज़िंदगी में आए हैं जिनको मैंने एट द फर्स्ट इंस्टेंट ना, मैंने ऐसे सोचा था कि यार नहीं बनने वाली इस इंसान के साथ, यू नो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग आई हैड. एंड देन आई हैपन टू मीट देम एट समबडी एल्सेस, मैंने खुद इनवाइट नहीं किया या उन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया, किसी और के यहाँ पे मैं मिली एंड मिलती गई एंड समझ में आया कि ये इंसान वो नहीं है जो मैंने समझ रही थी और जिनको मैंने यू नो एक इंस्टेंट में बिल्कुल सॉर्ट ऑफ रिजेक्ट कर दिया था अपने फ्रेंड्स की लिस्ट में से, वैसे नहीं है ये. एंड इन फैक्ट आई लव इंटरैक्टिंग देम विथ नाउ. सो यस, दिस इज अ कल्चर, दिस लाइक एंड डिसलाइक कल्चर दैट इज सीप्ड इनटू आवर डे टू डे लाइफ, जिसका हमें अंदाजा नहीं है.

हमारे आसपास भी काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं. देखिए, जो ऐसे रिलेशनशिप्स हैं आपकी लाइफ में जिनका कोई असर नहीं पड़ता, उनको तो आप अपनी जिंदगी से कट ऑफ कर देते हो. कोई माजरा ही नहीं है इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं आती है. लेकिन देन यू कांट जस्ट परमानेंटली ब्लॉक ए कोवर्कर, एक क्लोज रिलेटिव कह लें, या समवन यू हैव टू इंटरैक्ट विथ एवरी सिंगल डे. यू नो, उनको आप अपनी लाइफ से बॉयकॉट नहीं कर सकते हो, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो, राइट? ये जिंदगी के उन डीप सिचुएशन में से हैं जहां आपकी असली मेच्योरिटी और आपकी असली विजडम इट इज इन फुल डिस्प्ले. हाउ यू ट्रीट समवन हु कंप्लीटली एनॉयज यू सेज अ लॉट मोर अबाउट योर कैरेक्टर देन हाउ यू ट्रीट योर बेस्ट फ्रेंड्स. एक्चुअली आमने सामने वाले ये जो मोमेंट्स है ना, उससे पता चलता है कि अंदर की सच्चाई क्या है, यानी कि आप कितने सॉर्टेड और कितने काम इंसान हैं. इट इज़ यू नो, वो कहते हैं ना, ग्रोइंग ओल्ड वर्सेस ग्रोइंग अप, वैसा वाला सिचुएशन है कि हैंडलिंग दीज अनकंफर्टेबल ह्यूमन इंटरेक्शंस इज एन इमोशनल स्किल दैट ओनली कम्स विथ एक्चुअली जेन्युइन लाइफ एक्सपीरियंसेस. और एक बात हमेशा याद रखने वाली जो होती है वो ये है कि यू नो, समझदारी सिर्फ आपकी उम्र बढ़ने को नहीं कहा जाता है, वो समझदारी आपके अंदर से आनी चाहिए. कहते ना, सम पीपल जस्ट एज वाइल अदर्स एक्चुअली मच्योर. तो मच्योरिटी इस बात में है कि आप लाइफ के इन अनकम्फर्टेबल फेजेस और रिश्तों को कितने ग्रेसफुली हैंडल करते हो, टॉलरेट करते हो, एक्सेप्ट करते हो, और किस तरह से करते हो, ऑन योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कोर्स. जो बहुत ही बकवास हो गई है रिलेशनशिप, उसको तो आपको समझदारी के साथ बॉयकॉट करनी ही पड़ेगी. लेकिन उसके अलावा कैसे संभालते हो, दैट्स ए स्किल वन मस्ट एक्वायर विथ एक्सपीरियंस.

दिस इज गपशप गली विद मी टू और आप लोगों के साथ जो बात शेयर करनी है इट इज टू डू विद एवरीबडी क्योंकि हेल्थ इज एवरीबडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ क्योंकि हम पैसा कमाते हैं ताकि हम चंगे रहें और हम चंगे रहें इसीलिए जरूरी है कि आप अपने एनुअल विजिट्स जो हैं वो करते रहें डॉक्टर्स के साथ. 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी और इनकी जो ब्रांड न्यू नेम एंड सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन जो मैं बताने वाली हूँ इट इज ल्यूनॉक्सी मेडिकल. आई एम श्योर यू हर्ड अबाउट दिस ऑन आर स्टेशन क्योंकि हम सभी ने इसको बिल्कुल शिद्दत के साथ इसके बारे में बात की है बिकॉज इट हैज़ बीन फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य जो कि प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर इन हाउस लैब टेस्टिंग एक्सरे सीटी स्कैंस कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेट्सपा सर्विसेज ये सारा कुछ एक ही छत के नीचे लेकर आए हैं. दैट इज ल्यूनॉक्सी मेडिकल एंड देयरफॉर वी आर वेरी एक्साइटेड टू शेयर इट विथ यू. ओपन 7 डेज ए वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम नो अपॉइंटमेंट needed for this place. It's Lunoxy Medical in Frisco, ladies and gentlemen. Once again, thank you very much for, tuning into my show, jiska naam hai Gapshap Gali. Aur hamari baatein chal rahi hain about likes, dislikes, jo is digital duniya mein na itna jhat jhat hum karte hain ki kya hi kaha jaye. Lekin kya hai na ki if we put extreme or let's say highly toxic situations aside, how should we normally deal with everyday people we just don't वाइब विथ. यू नो ये वाइब ये जो चीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जेंजी ने बताया यार कि ये वाइब इज इट इज ऑल अबाउट द वाइब राइट. लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि जिसे हम ना पसंद करते हैं उसके साथ अच्छे से या डिसेंटली बात करने का एक मतलब होता है कि टोटली फेक बिहेवियर हम कर रहे हैं. बट यू नो बींग डिसेंट एंड नाइस और एक्टिंग परफेक्टली नॉर्मल अराउंड समवन यू डोंट लाइक यू डिसलाइक हैविली डजंट मीन यू आर बींग फेक एट ऑल. इसका सिंपल सा मतलब सिर्फ ये है कि आप इतने मेच्योर हो कि आप ये अपना जो डिसलाइक है फॉर द पर्सन यू कैन कीप इट इनसाइड एंड स्टिल बी ग्रेसफुल विद दैट पर्सन टॉलरेट और एक्सेप्ट दैट पर्सन एज दे आर. ये ना मेच्योरिटी की चीज़ होती है. ये नहीं सोचिए आप कि कोई अगर उनके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है जिनको वो पसंद नहीं करते हैं इसका मतलब है एक फेक बिहेवियर. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. और इट इज़ अबाउट मेंटेनिंग योर ओन इनर पीस शोइंग बेसिक ह्यूमन डिसेंसी रिगार्डलेस ऑफ द चैलेंजिंग personality, you know, it is so very important कि मैं पता मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताऊँ. जिनको मैं पसंद नहीं करती हूँ ना उनके साथ वैसे ही normal रहती हूँ जैसे कि मैं किसी third person के साथ रहूँगी वैसे ही मैं उनको every day या every conversation पे उनको उस वैल्यू पर लेती हूँ. यानी कि अगर कुछ अगर चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही तो मैं बता भी दूँ शायद और ना बताऊँ तो फिर मैं शायद कॉन्वर्सेशन से आराम से थोड़ा सा डिसेंटली कट लूँगी. लेकिन जो मेरी ओपिनियन है उनके लिए वो मैं वो बर्डन लेकर नहीं चलती हूँ. व्हेन आई ग्रीट देम और से हेलो टू देम आई जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ द कॉन्वर्सेशन दैट आई एम हैविंग विद दैट पर्सन राइट देन एंड देयर एंड डिसाइड हाउ आई वॉन्ट टू कैरी ऑन फ्रॉम देयर. यू आर लिसनिंग टू Gapshap Gali with me too.

दिस इज गपशप गली विथ मीठू, और इसीलिए गपशप तो चलनी हुई है ना. और इसीलिए जो ये जो टॉपिक मैं लेकर आई थी आज, इट इज अबाउट दैट इंस्टेंट लाइक एंड डिसलाइक दैट वी हैव एंड हाउ टू नेविगेट थ्रू द यू नो द इंटरेक्शंस जहाँ पे हमें कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, उसके साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए या क्या. ये मैं कुछ ना प्रवचन नहीं दे रही हूँ, दिस इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू गैदर फ्रॉम ऑल ऑफ यू ऑल्सो. जितना अभी तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आई मस्ट टेल यू द इनपुट्स हैव ऑल्सो कम फ्रॉम गरीब अरुणा एंड कीर्ति, नीति, नितिन एंड सुनीति जी एज वेल. सो यस, दिस इज अ सेगमेंट जहां पे मुझे आप लोगों की ना इनपुट्स चाहिए होती हैं टू बेटर अंडरस्टैंड ए टॉपिक एंड समथिंग दैट रिलेट्स टू यू, रिलेट्स टू मी, एंड होपफुली इट हेल्प्स अस इन सम वे ऑफ फॉर्म व्हेन वी डिस्कस अबाउट इट. तो कहने का मतलब ये है कि मैच्योरिटी जो है ना, ये उम्र के साथ नहीं आती है, ये एक्सपीरियंस के साथ आती है. और इस एक्सपीरियंस से हम क्या सीखते हैं, इस पे सारा कुछ डिपेंड करता है. ऑनेस्टली आई बिलीव दैट मैच्योरिटी वो नहीं होती जब बैठ कर हम दुनिया के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बल्कि ऐसे यू नो फिलोसफिकल बातों में नहीं आती है. इट इज़ एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड appreciating the little things and how to deal with them and how to tackle them and how to manage them, you know, that is what maturity is all about, ladies and gentlemen. Jab aap ya main bina judge kiye logon ko unki aam khamiyon ke sath accept ya टॉलरेट भी अगर कहना चाहते हैं तो वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, है ना. अगर वो करना शुरू कर दें और अच्छे से डील करना शुरू कर दें, तब आप सच में मैच्योर होते हैं. एंड दैट इज़ वॉट द डिडक्शन ऑफ ऑल द कॉन्वर्सेशंस दैट आई हैव हैड विद माई लिसनर्स उस पर

0: अच्छा मेरी एक और ना लिसनर का कॉल आया, मैंने सोचा कि ब्रेक पे जाने से पहले लेट्स क्विकली टेल यू ऑल दैट कि हम बचपन में ना इलॉजिकल होते हैं, फिर बड़े होते होते लॉजिकल होते हैं, और फिर एक उम्र आती है जब पैथोलॉजिकल हो जाते हैं. एंड आई थिंक इट इज़ वेल सेट बाय दिस लिसनर ऑफ माइंड. दिस इज गपशप गली विद मी टू. इट इज़ ऑलवेज सो फन टू गेट योर टू सेंस ऑन द टॉपिक्स दैट वी टॉक अबाउट. लेट्स ट्राई टू स्टेप आउट ऑफ दिस लाइक एंड डिसलाइक बटन माइंड सेट एंड जस्ट बी वंडरफुली imperfectly human again. What say? This is Gapshap Gali with Me Too, which we will continue until 12:30.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
9: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust aur ab वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मंदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को.
10: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
11: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
12: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
13: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
14: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
15: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
14: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
15: वेट, व्हाट?
16: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
17: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
16: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
18: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
19: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
18: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
19: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट.
20: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
21: Oh,
20: उमर ख्वाजा।
21: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
22: Hi, I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

दिस सॉन्ग दैट रिलीज फ्यू डेज बैक, इट इज मरहम बाय दिव्यम सोधी. इट इज अबाउट एवरीथिंग दैट इज न्यू एंड हॉट दैट आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस सेगमेंट विच इज कॉल्ड फ्रेश ऑफ द तवा. ताज़ा एंड न्यू, ये जो एक सेगमेंट मैं लेकर आ रही हूँ, ताज़ा ऑन एंड न्यू, एंड इट इज टू डू विथ एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ यू नो, चाहे वो AI टेक ड्रॉप हो या ब्रांड न्यू फिल्म हो, चाहे वो वायरल फूड क्रेज हो या फिर फ्रेश गाने का क्रेज, ये सारा कुछ हम इसी में कवर करने की कोशिश करेंगे. और इसीलिए कुछ आपका भी साथ चाहिए कि अगर आपको लगता है कि कुछ नया ताज़ा आपको पता चला है दैट द वर्ल्ड शुड नो, आर कम्युनिटी शुड नो, ज़रूर मुझे DM करें इंस्टा हैंडल पे या फेसबुक पे. इट्स RJ मीटू गांगुली, MITHU, दैट्स माई फर्स्ट नेम, दैट्स हाउ यू स्पेल माई फर्स्ट नेम. एंड ऑफकोर्स गांगुली ने, सौरभ गांगुली ने मेरे लास्ट नेम को काफ़ी मशहूर किया है कि मुझे एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा उसमें. तो येस, वंस अगैन इट्स RJ मीटू गांगुली, लेडीज एंड जेंटलमैन. और मुझे आप DM कर सकते हो फेसबुक या इंस्टा पे, एंड लेट्स डू इट टुगेदर. कि अगर कोई भी नई चीज मार्केट में आई है और अगर मेरे रेडार में आया है तो उसको हम जरूर कवर करेंगे, बिल्कुल ताज़ा सा स्लाइस सर्व करेंगे इस ही सेगमेंट में आप लोगों के लिए. इट इज ताज़ा एंड न्यू, फ्रेश ऑफ द तवा, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द नेम ऑफ द सेगमेंट. और इसी के चलते ना ये गाना एक और सुनवाऊं मैं आपको. एक फिल्म आने वाली है 24 जुलाई को रिलीज होने वाली है, काजोल अग्रवाल इन दिस फिल्म, एंड द नेम ऑफ द फिल्म इज द इंडिया स्टोरी, एंड इट इज अ ग्रिपिंग एंड इंटेंस ड्रामा दैट डेल्व्स इनटू द डार्क एंड कॉन्ट्रोवर्शियल of major scandals surrounding pesticide company. कुछ एक नई कहानी होगी उसी फिल्म का, ये गाना सुनाओ आप.

And that song from the movie The India Story that is to release on 24th of July, ladies and gentlemen. और वो आवाज़ यार, कितने दिनों के बाद ये आवाज़ सुन रही हूँ, और इस आवाज़ का नाम ही आपको गेस करना है. अगर आप मुझे सही सही बताते हो ना, तो मैं आपके लिए डी वाइब का गिव अवे लेकर आई हूँ. डी वाइब विच इज़ इनसाइड फूडिस्तान, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ. और ये है ओबरी में. जस्ट FYI, जितने भी लोग ओबरी को लेकर कहते थे ना कि आसपास तो कुछ भी नहीं है, अब देखिए बहुत कुछ आ गया. अब आपको ओबरी जाना पड़ेगा, ओबरी के लोगों को यहाँ नहीं आना पड़ेगा. जी हाँ, याद रखें कि ये फूडिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके लिए हलाल मीट, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानीपुरी स्टेशन, और साथ में गन्ने का जूस. यार ये गर्मी में गन्ने का जूस का ना मज़ा ही कुछ अलग है. और उसके साथ साथ डी वाइब रेस्टोरेंट, दिस अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस दैट यू कैन गेट इनसाइड फूडिस्तान इन ओबरी, लेडीज एंड जेंटलमैन. और आप में से किसी एक को एक फ्री डिश मिलेगा अगर वो आवाज आपने गेस कर ली जो आपने अभी अभी सुना था और जो आप अभी सुनने वाले हो. तो यस, गिव मी द नेम ऑफ द फीमेल वॉइस एंड दिस फ्री डिश फ्रॉम डी वाइब रेस्टोरेंट इज एब्सोल्यूटली योर्स. एक फ्रेश ड्रॉप जो कि आने वाला है टैको की दुनिया में, उसके बारे में ही बताने वाली हूँ आप लोगों को राइट आफ्टर दिस. 972-235-5555, the number in the studio.

All right, the name of the male singer is Sukhvinder Singh. इसमें तो कोई शक ही नहीं है और इसमें भी कोई शक नहीं है. The female voice is Richa Sharma's. Back to back Richa Sharma's voice that you heard. और हमारी winner है क्योंकि सवाल यही था कि भाई female singer कौन है. And that went to Rupa. Congratulations, Rupa. क्या मतलब फट से जवाब आया आपका, मजा आ गया. And I'm loving the fact that she has sung this song for this upcoming film, The India Story. जिसका मतलब ये है कि अभी भी she is singing for films and otherwise as well. Kyunki badi tagdi awaaz hai yaar. And tagda is this information that I'm going to share with all of you. Yes, it is to do with the Taco World. Kya hai na ki kuch mahine pehle Taco Bell hosted their first ever global Taco World, giving US fans the ultimate power to decide the menu. Theek hai, competition bahut tough tha, jahan voters ko decide karna tha between Thailand's kicking chicken taco and India's butter chicken taco. Can you believe that? Aur guess kijiye kaun jeeta? No brownie points on that. हमारा यार vibrant देसी flavor जीता hands down. Fans ने जमकर वोट किया और इस Indian creation को US menus पर ले आए हैं हम. And now the long wait is finally over for all foodies out there. ये butter chicken taco हमारे DFW Metroplex के मेरे ख्याल से participating Taco Bell locations पे, हर location पे नहीं होगा. ये जो जलवा आप देखने को मिलेगा आपको taco butter chicken, बटर चिकन टाको कहना चाहिए राइट. तो वो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से लोकेशंस पे अवेलेबल है. इफ यू आर ए रिवॉर्ड्स मेंबर ऑन द टाको बेल ऐप, यू प्रोबेबली ऑलरेडी ग्रैब्ड अर्ली एक्सेस स्टार्टिंग लास्ट वीक, जो कि जुलाई 16th को शुरू हुआ था मेरे ख्याल से. लेकिन बाकी सबके लिए गुड न्यूज ये है कि इसी थर्सडे को जुलाई 23rd को इसका फुल पब्लिक रिलीज हो रहा है. सो वेदर यू लिव इन प्लेनो, फ्रिस्को, आर्लिंगटन या आप कहीं भी रहते हो DFW मेट्रोप्लेक्स में, टाको बेल इज रेडी टू सर्व अप दिस मास्टरपीस बटर चिकन टाको. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप. यार मजा आ गया सोचकर. यही तो मैंने सोचा, इसी से यहीं से शुरुआत की जाए हमारे फ्रेश ऑफ द तवा ताजा एंड न्यू सेगमेंट दैट वी हैव फॉर यू.

जी हाँ, मेरा सेगमेंट भी बस आज डेब्यू हुआ है, सेगमेंट का जिसका नाम है ताजा एंड न्यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, द न्यू ड्रॉप दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, इट इज कॉल्ड रूस्ट। जी हाँ, एक वायरल ऐप है एंड इट इज मेकिंग कैरियर पिजन्स कूल अगेन। आजकल ना फोन पर हर सेकेंड आने वाली नोटिफिकेशन से तंग आकर इस स्लो शियल, इट्स कॉल्ड स्लो शियल बिकॉज स्लो सोशल ऐप, जो कि जेंजी जिसके बारे में क्रेजी हो रही है वही मैं बताने वाली हूँ आपको। व्हेन यू साइन अप यू गेट टू पिक 4 बर्ड्स टू बिल्ड योर ओन रुकरी एंड ईच वन ट्रैवल्स एट इट्स एक्चुअल रियल लाइफ स्पीड। दिस इज ऑल वर्चुअल बर्ड्स। हाँ, तो बेसिकली अगर आप फाल्कन चूज करते हो तो आपका मैसेज जल्दी से पहुंचेगा, पर अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं, फैल के चाहते हैं कि पहुंचे वो मैसेज, तो आप लिटरली एक वर्चुअल स्नेल या वर्चुअल टर्टल भेज सकते हैं एंड दैट कैन कैरी योर मैसेज स्लो एंड स्टेडी। दिस ऐप एक्चुअली ब्लू अप व्हेन ए मदर पोस्टेड ऑन थ्रेड्स अबाउट हाउ हर डॉटर वॉज यूजिंग इट टू टेक्स्ट हर फ्रेंड्स एंटायरली इन एलिजाबेथन इंग्लिश, क्योंकि ये इतना स्लो एक्चुअली मतलब जैसे पिजन कैरी कर रहा है उसी चीज को माइंड में रख के ये जो टीनेजर्स हैं उन्होंने ना एलिजाबेथन इंग्लिश में उन्होंने कन्वर्स करना शुरू किया, लेटर फॉर्म में इलैबोरेट, यू नो ऑल ऑफ दैट। तो उस मदर ने लिखा कि ये इतना हिलेरियस था कि बच्चे पूरे पुराने जमाने की वो जो भाषा है वो सब यूज करके पुराने जमाने के स्टाइल में एक्चुअल बर्ड्स नहीं बल्कि वर्चुअल बर्ड्स के जरिए इनके मैसेजेस ट्रैवल करने वाले हैं एंड इट इज ए हिलेरियस थिंग। और विद इन 7 डेज वो पोस्ट वायरल हुआ, द ऐप exploded from 10,000 to 100,000 users and hit a massive 300,000 users just a few weeks later. और ऐप के क्रिएटर जो हैं लोगन, इनका कहना है कि ये ऐप लोगों को इंस्टेंट रिप्लाइज के एंडलेस प्रेशर से एक रिलैक्स्ड होलसम ब्रेक देती है। इवन दो ही फेस सम रीसेंट बैकलैश फॉर यूजिंग एआई टू ड्रॉ द बर्ड्स, ही इज फिक्सिंग इट बाय लॉन्चिंग अ कॉन्टेस्ट फॉर रियल आर्टिस्ट टू रीडिजाइन देम। Talk about good plan, you know. So yes, that's the app called Roost, ladies and gentlemen, which is going absolutely viral. और वायरल है यार प्रभु देवा के हर एक डांस परफॉर्मेंस। तो दिस इज योर चांस लेडीज एंड जेंटलमैन टू जॉइन द फन द धमाका दैट प्रभु देवा एंड इज एंटायर टीम इज ब्रिंगिंग फॉर ऑल ऑफ यू। मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप ये लेकर आ रहे हैं आपके लिए प्रभु देवा लाइव एंड इट इज हैपनिंग ऑन ऑगस्ट 1st को। उनके साथ होने वाले हैं लॉरेन गॉटली एंड सोनल अलेक्जेंडर, हरिनी, नताशा एंड सानवे फॉर द अल्टीमेट पैन इंडिया डांस कॉन्सर्ट दैट यू विल बी विटनेसिंग राइट हियर एट द टेक्सस ट्रस्ट क्रेडिट यूनियन थिएटर इन ग्रैंड प्रेरी। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको टिकट्स कैसे मिल सकती हैं, जिसके लिए आप हमारे फाइनेंशियल नेटवर्क सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं टू बुक टिकट्स ईजिली ऑन द पिंड पोस्ट, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मीडिया पार्टनर फाइनेंशियल नेटवर्क ऑफ कोर्स। एंड एक और नंबर दे देती हूँ जस्ट इन केस यू वॉन्ट टू बाई योर टिकट्स बाई कॉलिंग 248-233-3828। इसी बात पे प्रभु देवा का ये गाना हो जाए।

0: ओह ला ला, प्रभु देवा इन टाउन, लेडीज एंड जेंटलमैन, August 1st जरूर याद रखें कि हमारे सोशल मीडिया पेज पे जाके, फनीशिया नेटवर्क पे जाके, पिन पॉइंट्स पे चाहे तो आप टिकट्स खरीद सकते हैं फॉर दिस August 1st इवेंट. यू आर लिसनिंग टू फनीशिया रेडियो. और जाने से पहले ना, मेरा मन है कि मैं आप लोगों को एक सीधा रास्ता दिखाऊँ, योर पाथ टू US परमानेंट रेसिडेंसी. बिकॉज इफ़ यू आर ऑन H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, और तो आपके लिए लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता पूरा एक इजी रास्ता ढूंढ के निकाल सकते हैं इफ़ देर इज़ ए पॉसिबिलिटी. अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइजेज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीजाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजाज, पर्म लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप. अगर आपको EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम के बारे में लेट्स से इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनको info@seemamehtalawfirm.com पे ड्रॉप एन ईमेल एंड यू विल गेट द आंसर राइट अवे. वंस अगेन, इट्स द लॉ ऑफिसेज ऑफ सीमा मेहता एंड दैट्स ऑल द टाइम आई हैव विद यू ऑल. अप नेक्स्ट इज सिमी, दिस इज मी टू साइनिंग ऑफ.
1: तारा हर तारा. अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
7: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी.
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
9: Wait, इतना सब और price?
1: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
10: Main hi doin hu.
11: Beta, 95% aaye?
12: Haan mummy.
11: Good. Ab chaliye papa, aap apna report card dikhaiye.
13: Mera?
11: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
12: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
13: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
14: Excuse me. It's called being loyal.
13: It's called being predictable.
14: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
13: And what's so special at Neon Cactus?
14: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabia halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
13: Not bad.
14: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
13: Okay, this I didn't expect from you.
14: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
15: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी, लेके आ गई हूँ आपका फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। आपका और मेरा साथ जो है अगले दो घंटे तक रहने वाला है, तो लेट्स रॉक दी शो। आज का टॉपिक है उन एक्सपीरियंसेस के बारे में जिसके बाद हमने दिल से कहा कि बस अब मैं जिंदगी में दोबारा ये नहीं करूंगा या करूंगी। आप इमेजिन कीजिए या याद कीजिए कि किसी के साथ कभी लेट नाइट रोड ट्रिप पे गए हो और डिसाइड किया हो कि नेवर अगेन, दिस वाज सो स्कैरी, या फिर कभी किचन में कुछ बनाने की कोशिश की हो और फूड के बजाय साइंस एक्सपेरिमेंट क्रिएट हो गया एंड अगेन आपने यही सोचा कि बस अब दोबारा नहीं, या फिर कभी सेल देखकर इतनी शॉपिंग कर ली क्रेडिट कार्ड को भूल ही गए और जब बाद में बिल देखा रियलाइज किया कि ओ माई गॉड एंड आपने अगेन वही सोचा कि अब कभी नहीं। तो ऐसे मोमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए जब आपने सोचा कि आई एम not

आज हम बात कर रहे हैं उन चीजों के बारे में, उन एक्टिविटीज के बारे में जिन्होंने आप जिसको आपने कर लिया हो एक्सपीरियंस, लेकिन आप दोबारा वो चीजें नहीं करना चाहते. आप यही सोचते रहते हैं, कहते रहते हैं खुद को कि मैं ये दोबारा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा. और अभी अभी हमें कॉल आया था मरियम का, और उन्होंने याद किया अपना रोड ट्रिप जो कि था फ्रॉम न्यूयॉर्क टू वर्जीनिया, और ये बस का ट्रिप था और बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था उनके लिए क्योंकि आसपास इतना बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, रास्ते साफ नहीं दिख रहे थे और लोग तो बिल्कुल थे ही नहीं. 6-7 घंटे की ड्राइव थी और उसमें ना वो सो पाए ठीक से ना कुछ, तो वो दोबारा ये बिल्कुल नहीं करना चाहेंगी. और ना अब बात करते हैं, ये तो हो गई रोड ट्रिप की बात, अब बात करते हैं फूड डिजास्टर्स के बारे में. कई बार ऐसा होता है कि हम किचन में एकदम फुल कॉन्फिडेंस और के साथ घुसते हैं कि बस अभी मैं एक मस्त सा रेसिपी देख लिया है, ये बना दूंगा या ये बना दूंगी, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स को पहले से पता होता है और वो बैकअप तैयार करके रखते हैं कि बस कुछ नहीं होगा, लास्ट में कुछ जल जला ही मिलेगा. ऐसा अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए. भाई कॉलिंग मी एट 9722355555.

हम सबकी लाइफ में ऐसा कुछ जरूर हो रखा है जिसके बाद हमने सोचा कि भाई आई एम नॉट डूइंग दिस एवर अगेन, मैं दोबारा ये चीजें नहीं करने वाला या नहीं करने वाली। लेकिन ऑनेस्टली कभी कभी लाइफ की सबसे फनी मेमोरीज वही होती हैं जो उस वक्त सबसे ज्यादा डेंजरस या डिजास्टरस लगती है। जैसे कि जो वर्स्ट ट्रिप होती है आजकल वो फेवरेट स्टोरी है इन दी पूरे, जब एक साथ बैठे होते हैं दोस्त तो उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। कोई कुकिंग डिजास्टर हो रखा है तो वो फैमिली का फेवरेट जोक बन चुका है। कोई बैड हेयर कट अगर मिला है तो उसकी फोटो ही फेवरेट फोटो है, सब उसी को देख के हंसते रहते हैं। और वो फ्रेंड जिसके साथ आपने कहा था कि मैं इसके साथ तो पक्का ही ट्रैवल नहीं करूंगी दोबारा या नहीं करूंगा, उसी के साथ आपके प्लान्स बार बार बनते हैं फॉर एक्साइटमेंट, फन एंड एक्सपीरियंस। आज भी याद रखिए ये चीज़ कि लाइफ में मिस्टेक्स करना अलाउड है, बस उन्हें रिपीट करने से पहले थोड़ा सोच लेना। इसके साथ आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, लेकिन आपके जो अच्छे अच्छे गाने हैं, गिव अवेज हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो इस सॉन्ग और उसके ब्रेक के बाद आपसे साथ की जाएंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद फनेशियर रेडियो 104.9 FM।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
6: Call 857-891-8942 today.
7: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Documents ya parcel bhejni hai?
12: हाँ.
11: घर रिलोकेट करनी है?
12: हाँ.
11: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
12: हाँ भाई हाँ.
11: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
13: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
14: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
15: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
16: अरे रिलैक्स, यू नीड कूल थेरेपी.
15: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
16: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
15: ये क्या होता है?
16: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
17: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
18: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल.
19: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
17: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
20: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
17: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो।
6: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
21: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
22: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
23: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
22: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
23: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
22: सच में सब संभालेंगे?
23: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
24: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूं आरजे सिमी। अभी स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो गया है 1:10 और आज हमने बहुत सारी बातें की उन चीजों के बारे में जिसको एक्सपीरियंस करने के बाद, जिसको करने के बाद हमने डिसाइड किया कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एवर अगेन, मैं इसको दोबारा बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा या करूंगी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉल आई मुझे आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ दिस सेगमेंट, इट वॉज फ्रॉम अली जी। और उन्होंने कहा कि जब मैंने बातें की इस बारे में कि भाई गलतियां करना तो अलाउड है लेकिन बार बार सेम गलतियां ना करें, तो उन्होंने कहा कि भाई हर जन्म में फिर हम शादी क्यों करते हैं। दैट्स वेरी वेरी फनी, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विथ यू। और गाने का सिलसिला जारी रखते हुए मैं आपको इतना बता देती हूँ कि गिव अवे राउंड आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

खैर ये दिल तो मेरा भी है, लेकिन मेरे दिल को ना फन पिज्जा किचन के पिज्जा से काफी प्यार है। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ मौका यहाँ जाने का और $10 का गिफ्ट कार्ड पाने का। तो मतलब खाने का खाना हो गया और आपके पैसे बच गए, सो अलग। तैयार हो जाइए, आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। अगर आपको जवाब पता है तो आपको मुझे कॉल करना है और आप जीत सकते हैं फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। ध्यान रहे कि आपने ना ये जो है फन पिज्जा किचन का गिव अवे लास्ट 1 month में ना जीता हो, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं। आपको एक डायलॉग दूंगी मैं, उसको आधा बोलूंगी और आपको उसको पूरा करना है, ठीक है? और उसका मूवी का भी नाम बताना है। डायलॉग कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि दोस्ती का एक उसूल है मैडम, और आगे के जो 4 words हैं वो आपको मुझे बताना है बाई कॉलिंग मी एट 9722355555।

मितवा, आपको बताना था डायलॉग, आपको पूरा करना था वो डायलॉग। और मैंने आपसे पूछा था कि जो पहले के डायलॉग के हैं वर्ड्स, वो कुछ ऐसे हैं कि दोस्ती का एक उसूल है मैडम, और इसका आगे का जो जवाब था वो ये था कि नो सॉरी नो थैंक यू, एंड दिस वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार किया। आज की हमारी विनर हैं हेतल। कॉन्ग्रेचुलेशंस हेतल, आपको मिलता है फन पिज्ज़ा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। और बाकी लोग, आप लोग भी चाहिए यार, फन पिज्ज़ा किचन में अमेजिंग पिज्ज़ा मिलता है आपके लिए। वेजिटेरियन चॉइसेस भी हैं, नॉन वेजिटेरियन चॉइसेस भी हैं। अगर आप वेजी लवर हैं तो अचारी पनीर पिज्ज़ा ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो तंदूरी चिकन पिज्जा इज अ प्योर स्मोकी परफेक्शन फॉर यू। यहाँ पे ना बहुत, मतलब आप स्पाइस जिस भी लेवल का पसंद करते हो, आपको बैलेंस पसंद हो, माइल्ड पसंद हो, बहुत ज्यादा बोल्ड पसंद हो, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक स्लाइस आपका इंतजार कर रहा है कि और मुझे खा लो, मजे लो। आप जरूर यहाँ जाए। और अगर आपको इनके मेन्यू के बारे में या फिर इनके ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज फन पिज्जा किचन .com।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
4: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
4: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
4: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
6: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting.
7: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
8: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
7: क्यों?
8: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
7: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
9: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
8: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
10: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
11: लिया।
10: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
11: नहीं आया।
10: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772। That's 972-863-772.
9: Visit www.sanadainc.com today.
12: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
9: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
7: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
13: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

डार्लिंग अपने कानों को फनेशिया सुनने दो। आप सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। अभी आपका और मेरा साथ अगले एक घंटे तक है, तो टेंशन नॉट, फिगर नॉट, बहुत सारी बातें अभी करनी है आपके साथ। और पहले तो मैं आपको ये बताना देना चाहती हूँ कि जो हमारे बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो भी लिविंग टिश्यू होते हैं। वो कॉन्स्टेंटली ब्रेक डाउन होते रहते हैं, खुद को रिबिल्ड करते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी हैबिट्स अपनाइए ताकि आप थ्रू आउट स्ट्रांग रहें। और अगर आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, स्पोर्ट्स पसंद है, तो सारे प्रिकॉशंस लेके खेलिए ताकि आपका बोन भी हेल्दी रहे। ये था आज का पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर की तरफ से हेल्थ टिप ऑफ द डे। और इस गुजारिश को करने के बाद अगला गुजारिश मैं प्ले करना चाहूँगी।

ये गाना लिया गया है द मूवी गजनी से, और ये इस मूवी को याद करते बस मेरा एक ही रहता है कि काश काश जो एक्ट्रेस थी आसिन कल्पना, जो उनका नाम था कैरेक्टर का, उनको पता चल जाता कि जो सचिन है यानी कि आमिर खान ही संजय सिंघानिया थे। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं ना, मतलब कहते हैं अरे यार ये तो रह गया, काश ये हो जाता। ऐसे बहुत सारे काश होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे कि एक काश होता है कि भाई अपना प्यारा सा एक घर हो। अगर आप भी ऐसे ड्रीम होम का सपना लेके बैठे हैं तो ड्रीम होम मॉर्गेज के पास जाइए, क्योंकि ये सपना उतना भी दूर नहीं है। ड्रीम होम मॉर्गेज आपको उस सपने को रियलिटी में बदलने में हेल्प करेंगे। इनका जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रेस फ्री है, स्मूथ है, टीम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। इनके पास पूरे 50 states of US हर जगह पे इनके लाइसेंस अवेलेबल है। तो अगर आप अपना पहला घर खरीदना चाह रहे हैं, अपग्रेड करना चाह रहे हैं, या फिर रीफाइनेंसिंग की मदद लेना चाह रहे हैं, आपको एक राइट लोन ऑप्शन चाहिए जो कि आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, ज़रूरतों के अकॉर्डिंग टेलर किया गया हो, बनाया गया हो, तो ड्रीम होम मॉर्गेज को ज़रूर संपर्क करें। उन्हें कॉल कीजिए एट 972-245-5626, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज़ ड्रीम होम मॉर्गेज .com।

ए नाज़नीन सुनो ना, श्री कृष्ण की ज्वेलरी ट्राई करो ना। ये यहाँ पे आपको ट्रेडिशन, एलिगेंस और टाइमलेस ब्यूटी का ऐसी झलक मिलने वाली है कि क्या बताऊँ। इनके पास है क्लासिक गोल्ड डिजाइन से लेके स्पार्कलिंग डायमंड्स तक, एंड फ्रॉम इंट्रिकेट कुंदन टू स्टनिंग पोल की कलेक्शंस भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो आप जाइए, वहाँ का कलेक्शन ट्राई कीजिए, क्योंकि वहाँ का हर एक पीस ना क्राफ्ट किया गया है आपके लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स में, और ज़्यादा स्पार्कल ऐड करने के लिए, उसको और स्पेशल बनाने के लिए। और ये एक नए लोकेशन पे भी आ गए हैं, इट्स एट फ्रंट मेन स्ट्रीट फ्रिस्को। तो आप ज़रूर जाएं श्री कृष्णा ज्वेलर्स।

मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर बता देना चाहती हूँ कि प्रभु देवा, जिनको कि इंडिया का माइकल जैक्सन कहा जाता है, वो डैलस आ रहे हैं अलोंग विद हिज टीम, जो जिनमें हैं लॉरेन गॉटलिब, सोनल भदौरिया, अलेक्जेंडर नोएल, हरिनी, नताशा एंड सानवे मेघना। ये सारी अमेजिंग डांसर्स लाइव होंगे उस कॉन्सर्ट में, तो आप जरूर जाइए। दिस इज गोइंग टू हैपन ऑन August 1st, जो कि एक सैटरडे है, टेक्सस ट्रस्ट सीयू थिएटर ग्रैंड प्रेरी। अगर आपने अभी तक टिकट्स नहीं बुक किए हैं तो कर लीजिए बाय कॉलिंग एट 248-233-3828 या फिर आप फन एशिया के सोशल साइट्स पे जाइए, वहां पे आपको पिंड पोस्ट मिल जाएंगे जहां की सारी डिटेल्स हैं कि कैसे टिकट्स बुक करी जाएं। और प्रभु देवा की बात हो रही है और के सरा सरा ना बजाए तो ये तो ना इंसाफी हो जाएगी।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury Brilliance Celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
6: उमर ख्वाजा।
7: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
8: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
8: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
9: This 15th of August, don't just celebrate Independence Day, celebrate it the Indian way. Join India Association of North Texas's Anand Bazaar 2026 at the Comerica Center in Frisco, Saturday from 2 p.m. onwards on the 15th of August. Experience a grand Independence Day parade, authentic Indian food, colorful cultural performances, live music, shopping, family fun, and an unforgettable celebration of India's independence. And the best part? It's completely indoors and free for everyone. Let's celebrate India's 80th Independence Day with the entire community.

आप सुन रहे हैं फन एजर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजे फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म इन द इंटायर यूनाइटेड स्टेट्स। आप अगर इंडिविजुअल हैं, कोई स्टार्टअप कंपनी है आपकी, या फिर एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, एजे फिनटेक्स के पास आपके लिए बहुत सारे फाइनेंशियल सोल्यूशन हैं जो आपको या आपके बिजनेस को मदद करेंगे ग्रो करने में, उनके इनकम को बूस्ट करने में। चाहे बुक कीपिंग हो, पेरोल अकाउंटिंग हो, या फिर बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशंस हो, या फिर प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग करनी हो आपको, टैक्स कंप्लायंस चेक करना हो, फिनेंशियल रिपोर्टिंग में किसी की हेल्प चाहिए, बिजनेस एडवाइजरी चाहिए किसी फिनेंस गाइडेंस के साथ, देन यू मस्ट रीच आउट टू एजे फिनटेक्स। आप उन्हें कॉल कर सकते हैं एट 4699429888, या फिर आप उनके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं विच इज ajfintechs.com। और बस एक गाने के बाद मैं गिव अवे लेके आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड और बस गाने का खत्म होने का इंतजार कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए।

अगर आपको फ्लेवर लाउंज की तरफ से फ्री दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी खाने का मौका मिले तो आपको भी ऐसी फीलिंग आएगी कि आपके बिना ऐसे बादल पे पाव है। तैयार हो जाइए हमारे गिव अवे राउंड के लिए। मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ, अगर आपको जवाब पता है तो आपको मुझे कॉल करके बताना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ये गिव अवे किसी और शो में लास्ट वन मंथ में फन एशिया में नहीं जीता हो, तभी प्लीज आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमें और भी लोगों को मौका देना चाहिए फ्लेवर लाउंज का खाना खाने के लिए। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो रेफ्रिजरेटर में भी रखो तो गर्म ही रहती है। सोचिए सोचिए और मुझे कॉल करके बताइए 9722355555।

हमें हमारे गिव अवे का विनर मिल चुका है। आज की लकी विनर है विनीता। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है फ्लेवर लाउंज की तरफ से फ्री दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी। और जो सवाल था वो ऐसा था कि वो कौन सी चीज है जिसको रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद भी वो गर्म ही रहता है। एंड द आंसर वॉज गर्म मसाला। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर कॉलिंग एंड लेटिंग अस नो। और फ्लेवर लाउंज की बात करें तो वहाँ पे ना कॉकटेल और मॉकटेल्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। प्रेस्टन रोड में लोकेटेड है ये फ्रिस्को में, तो जरूर जाएं। एंड नेक्स्ट गाना एंजॉय कीजिए मीनवाइल। और क्या

क्या आपके साथ ऐसा होता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो कि जो 5 से 10 मिनट उनके साथ मिले होते हैं वो आपको लगता है कि काफी नहीं है? वैसे ऐसा बहुत लोगों को लगता है और पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर ने इसका बखूबी ध्यान रखा है ताकि आपको अपने डॉक्टर के साथ पूरे के पूरे जो है आधे घंटे 30 मिनट्स मिले ताकि आप उनको अच्छे से अपनी प्रॉब्लम बता पाएं। और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि एनुअल फिजिकल चेकअप हुआ, एंग्जाइटी केयर चाहिए, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड अगर लिवर कंसर्न्स हैं, या फिर कोई विटामिन B12 या फिर दूसरे विटामिन्स की डेफिशिएंसी की टेस्टिंग करानी है, ये सब कुछ अवेलेबल है एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल कीजिए 214-666-6259। और आज के लिए बस इतना ही। दिस इज टाइम फॉर मी टू गो एंड आई विल कम बैक अगेन टुमारो एट सेम टाइम 12:30। टिल देन टेक केयर गाइस, दिस इज आरजे सिमी साइनिंग ऑफ विद द लास्ट सॉन्ग।

0: जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं हीरो।
8: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
9: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
8: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, व्हाट?
1: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
10: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
1: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
11: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
16: Are sun, ye astrologer बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
19: बेटा, 95% आए?
20: हाँ मम्मी।
19: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
21: मेरा?
19: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
21: वो
1: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
22: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फनीशेयर रेडियो. सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. मैं हूं किरण आपके साथ और मंडे थ्रू फ्राइडे 2:30 बजे से 5 बजे तक आपके साथ रहती हूं पांचों दिन जी. एवरी डे वी हैव समथिंग न्यू फॉर यू. आज है ट्यूजडे और टेरिफिक ट्यूजडेज को आते हैं कुछ ऐसे टेरिफिक पर्सनैलिटीज जिन पे हम डालते हैं स्पॉटलाइट. टुडे इज बॉलीवुड स्पॉटलाइट फॉर यू और आज जिस पे हमने स्पॉटलाइट डाली है शी इज अ डीवा. शी इज अ डांसिंग सेंसेशन. जब वो किसी गाने में आती हैं तो वो गाना तो मतलब चार चांद उसको लग ही जाते हैं. बट शी हैज़ डेफिनेटली वर्कड हार्ड फॉर वेयर एवर शी इज टुडे. दिस इज नन अदर देन कैटरीना कैफ. सो लेट्स शेड द स्पॉटलाइट ऑन कैटरीना कैफ टुडे और शुरुआत करते हैं उनकी इस फिल्म के गाने से जो कि नई नई शुरू शुरू की फिल्में. दिस इज कौन सी फिल्म है जी? नमस्ते लंदन. आई थिंक आई एम thinking about it कि कौन सी फिल्म थी. Anyways, यहाँ इस गाने से शुरुआत जो हम करेंगे this is taken मैं जा रहा हूँ मैं कहीं भी जाऊँगी. बिल्कुल नई नई फिल्में कैटरीना कैफ की.

अवार्ड्स अलोंगसाइड 3 फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशंस. ये जो फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशंस हैं, इसके बारे में हम करेंगे थोड़ा सा ज्यादा आगे चल के बात. एंड शी इज नोटेड फॉर हर रोल्स इन एक्शन फिल्म्स एज वेल एज हर डांसिंग एबिलिटीज, जो कि हम शुरू में बात कर रहे थे कि मतलब क्या परफॉर्मेंस देती हैं. शी इज अ डांसिंग डीवा फॉर श्योर. और जब मैंने उनको टाइगर, एक था टाइगर में और टाइगर जिंदा है में एक्शन करते देखा, तो देन आई कंप्लीटली अग्रीड के डेफिनेटली कैटरीना इज अ वेरी गुड एट एक्शन एज वेल. आई'd लाइक टू सी मोर ऑफ कैटरीनाज एक्शन मूवीज एक्चुअली. सो आज का ये जो दो घंटे हैं, ये हम डेडिकेट करने वाले हैं ऑन द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ऑफ कैटरीना कैफ. सो लेट्स हैंग मूव ऑन टू दिस वन. अभी मैंने आपके लिए प्ले किया था गाना नमस्ते लंदन से, अब प्ले करने लगी हूँ हमको दीवाना कर गए फिल्म से, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी और कैटरीना कैफ इसमें हमें नजर आई थी अक्षय कुमार के साथ. शुरू में तो बहुत ही ज्यादा उनकी जोड़ी अक्षय के साथ मशहूर थी.

एल्बम नमस्ते लंदन से लिया गया ये गाना आज हमने स्पॉटलाइट डाली है कैटरीना कैफ पे और उन्हीं के ऊपर पिक्चराइज्ड कुछ खूबसूरत गाने मैं आपके लिए प्ले करूंगी। अच्छा जी, कैटरीना कैफ जो कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं 16th जुलाई 1983 वाज द ईयर शी वाज बोर्न। शी इज अ ब्रिटिश एक्ट्रेस, ऑफकोर्स बिजनेस वुमन भी हैं। बहुत तो खैर बहुत बड़ा ब्रांड उन्होंने अपना एस्टैब्लिश कर लिया है, आई गेस मेकअप और एक्सेसरीज का। शी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस और सेवरल अवार्ड्स ले चुकी हैं, इंक्लूडिंग 4 स्क्रीन अवार्ड्स, 4 जी

हमको दीवाना कर गए अक्षय कुमार के साथ आई ये फिल्म. और ये वो टाइम था जब कैटरीना बैक टू बैक अक्षय कुमार के साथ फिल्में कर रही थी और सारी की सारी कहीं ना कहीं हिट हो रही थी. आपको बताती हूँ कुछ उनके करियर के आगाज के बारे में. बोर्न इन ब्रिटिश हांगकांग, शी लिव्ड इन सेवरल कंट्रीज बिफोर शी मूव टू लंडन. 3 साल रही लंडन में और वहां पे एक मॉडलिंग, पहली मॉडलिंग असाइनमेंट जो है कैटरीना कैफ ने वो लंडन में स्टार्ट की थी. और जब वहाँ पे मॉडल कर रही थी तो एक इंडियन फिल्म मेकर कायजाद गुस्ताद उनका नाम था, उनकी नज़र कैटरीना कैफ पे पड़ी एंड ही रियली लाइक्ड हर एंड ही थॉट दैट शी वुड रियली लुक गुड इन अ मूवी. एंड उन्होंने उनको फिर बूम मूवी ऑफर की जो कि कैटरीना कैफ के फिल्मी करियर की पहली फिल्म थी. 2003 में बूम मूवी रिलीज हुई थी. ऑल दो इट वॉज अ डिजास्टर, नो आई मीन क्रिटिकली भी और हर तरह से नो बडी लाइक द मूवी, लेकिन कैटरीना कैफ के लिए फायदा उस मूवी से ये हुआ कि लॉट्स ऑफ पीपल नोटिस्ड दिस न्यू फेस, दिस फ्रेश लुक, दिस यू नो ब्यूटीफुल मॉडलिंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो कैटरीना की थी. और वहां से वो इंडियन सर्कल में एज अ मॉडल एस्टैब्लिश हो गई और फिर मॉडलिंग की कुछ असाइनमेंट्स की उन्होंने एंड देन केम द एक्टिंग. मजीद उन्होंने फिर एक्टिंग का जो रुख किया तो पहले फिर बूम के बाद उन्होंने एक तेलुगु फिल्म में काम किया, मालीश्वरी उस फिल्म का नाम था 2004 में. एंड देन शी केम इन टू 2005 इन मूवीज लाइक मैंने प्यार क्यों किया. 2006 में उनकी मूवी आई हमको दीवाना कर गए और यहाँ से थोड़ा सा कैटरीना जो है वो पब्लिक आई में आनी शुरू हुई. 2007 में नमस्ते लंदन, अपने, पार्टनर, वेलकम, सारी ही फिल्में सुपरहिट हुई जिनमें कैटरीना ने रोल किया. ऑल्दो उनको शुरू में सुनने को मिलता था कि भैया आप थोड़ा मेल डोमिनेटेड फिल्म में काम करती हैं, बट देन थिंग्स चेंज. जब बंदा एस्टैब्लिश हो रहा होता है तो कुछ ऐसा ही होता है. सो लेट्स लिसन टू दिस नेक्स्ट सॉन्ग टेकन फ्रॉम द मूवी पार्टनर.

इससे मुझे ख्याल आया कि अगर आपका कोई बड़ा मेजर इवेंट आ रहा है, जैसे कि यू नो एंगेजमेंट, कोई एनिवर्सरी या फिर कोई और सेलिब्रेशन, और यू वांट टू जस्ट यू नो ट्रीट और पैम्पर योरसेल्फ, तो फिर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इज द प्लेस फॉर यू टू गो. थोड़ा सा स्पार्कल, थोड़ा सा ब्यूटी, थोड़ा सा जेवर ऐड कीजिए अपनी इस हैप्पी और स्पेशल मोमेंट में. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स आर लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, एंड डायमंड जूलरी एलिगेंट, टाइमलेस एंड इट इज जस्ट क्राफ्टेड टू शाइन. मतलब वो कहती है ना, कुछ चीजें होती हैं जो आपकी पूरे के पूरे अटेंशन को ग्रैब कर लेती हैं. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स पे कुछ ऐसे ही ज्वेलरी पीसेस आपको मिलेंगे, फ्रॉम ब्यूटिफुल रिंग्स एंड इयररिंग्स टू डार्जलिंग नेकलेसेस एज वेल एज कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स. और सबसे स्पेशल बात, अनमैच्ड क्राफ्ट्समैनशिप है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की, ये तो डेफिनेट सी बात है. और इसी के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ, एंड दैट इज द मोबाइल ऐप जो कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की इंट्रोड्यूस हो चुकी है. आप अभी अभी अपने ऐप स्टोर्स में जाइए और मालाबार गोल्ड एंड डायमंड की ऐप डाउनलोड कीजिए, सो दैट यू कैन स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट कलेक्शंस, द अपडेट्स एज वेल एज लॉट्स ऑफ अदर डिटेल्स जो उनकी वेबसाइट पे आपको, वो कहते हैं ना, एट द स्लिप ऑफ योर फिंगर आपको मिल जाएंगी. वी आर ट्यून्ड इनटू बॉलीवुड स्पॉटलाइट राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. स्पॉटलाइट डाली है कैटरीना कैफ पे.

104.9 FM सुन रहे हैं आप फन एशिया रेडियो पे आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में बॉलीवुड स्पॉटलाइट. आज स्पॉटलाइट डाली है हमने कैटरीना कैफ. शी इज ब्यूटिफुल, शी इज एलिगेंट एंड अ फिनोमिनल डांसर. और सबसे बड़ी बात कि शी इज वन ऑफ बॉलीवुड्स बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम नो लैंग्वेज कंट्रोल, जैसे कि मतलब हिंदी लैंग्वेज पे उनका कोई ऐसा शुरू में कंट्रोल नहीं था, टू टर्निंग इन टू एन वेरी पॉपुलर बॉलीवुड हिंदी लैंग्वेज एक्ट्रेस इज डेफिनेटली एक, वो कहते हैं ना, एक फीट अपने आप में इसे कहा जाता है. तो हम आज उन्हीं के कुछ खूबसूरत गाने मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ. और अगला गाना प्ले करने से पहले आपको ये बात भी बतानी ज़रूरी है जी कि टेक्सास प्राइमरी केयर पिछले 13 साल से प्राउडली सर्व कर रहे हैं कम्युनिटी को. आपकी हेल्थ, हम सब की हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड टेक्सास प्राइमरी केयर टेक्स दैट थिंग वेरी सीरियसली. दे आर नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम इन अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग लिनॉक्सी मेडिकल. जी हाँ, तो लिनॉक्सी मेडिकल पे आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, लिनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर टू यू. अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, साथ ही साथ एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स और इसी के साथ हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज आर आल्सो अवेलेबल एट लिनॉक्सी मेडिकल. सब कुछ अंडर वन रूफ. अब आपको इधर उधर नहीं जाना कि ये कराने के लिए कहीं और जाना है, सीटी स्कैन कहीं और से होगा, एक्सरेज कहीं और से होंगे. एवरीथिंग अंडर वन रूफ एंड द बेस्ट पार्ट, दे आर ओपन 7 days अ वीक फॉर यू, 8 AM इन द मॉर्निंग टिल 8 PM द इवनिंग. पूरे 12 घंटे आपके लिए एवरी डे खुले हैं. और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात जो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है. आपकी तबीयत हल्की सी भी नासाज है, जाइए, वॉक इन, दिस इज लिनॉक्सी मेडिकल फॉर यू. नो अपॉइंटमेंट्स नीडेड, ओपन 7 days अ वीक, 8 AM टू 8 PM. सो डू विजिट एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ.

वेलकम फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, अनिल कपूर और काफ़ी पॉपुलर हुई थी वेलकम फिल्म जब रिलीज़ हुई थी। देखिए 2007 में रिलीज़ हुई, लेकिन ये सारी फिल्में तो रिलीज़ हुई 2008 में। कैटरीना की कुछ और बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में जैसे कि रेस, सिंग इज किंग, हेलो, युवराज, ये मूवीज़ रिलीज़ हुई। और 2009 में एक ऐसी मूवी रिलीज़ हुई जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक्लेम मिला, बहुत लोगों ने कैटरीना को इस मूवी में पसंद किया और पहली बार पाई कैटरीना कैफ ने बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन फॉर दिस मूवी इन फिल्म फेयर अवार्ड। सो दिस वॉज हर फर्स्ट नॉमिनेशन। और यही मेरा आज का सवाल है आपसे कि वो कौन सी मूवी थी जो कि 2009 में रिलीज़ हुई और 2010 के फिल्म फेयर में कैटरीना को मिली पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन। और अगर आप इसका जवाब देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? सबसे पहले तो जी मिराज लाउंज की तरफ से ये गिव अवे आया है। अगर आप ढूंढ रहे हैं अपना नेक्स्ट फेवरेट हैंग आउट स्पॉट तो इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस मिराज लाउंज। प्रीमियम हुक्काज ऑफर करते हैं, डिलिशियस बाइट्स, हैंडक्राफ्टेड कॉकटेल्स, लाइव म्यूजिक और डीजे नाइट्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन डीजे नाइट्स आपके लिए लेकर आते हैं, सब कुछ अंडर वन रूफ। दिस इज मिराज लाउंज फॉर यू। और बेस्ट पार्ट ये है कि हैप्पी आवर रन्स मंडे थ्रू थर्सडे 11 AM टिल 6 PM। हुकर्स जिसमें हुकर्स स्टार्ट करते हैं $24.99, जबकि शॉट्स आर फॉर $4.99 ओनली। प्लस लेडीज नाइट लेकर आते हैं, कॉलेज नाइट्स। इफ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट गाइज, दिस इज अ प्लेस फॉर यू टू गो, दे हैव कॉलेज नाइट्स फॉर यू एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे एज कॉलेज फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। दे आर विजिट मिराज लाउंज इज लोकेटेड ऑन मिकनी रैंच पार्कवे। और अब ये $20 का गिफ्ट कार्ड आपके लिए है ऑन द योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ 50। तो आप जाइएगा, $50 इफ यू स्पेंड यू विल गेट $20 ऑफ। आई एम गोइंग टू पिक टू विनर्स, टू कॉलर्स लकी विनर्स होने वाले हैं आज हमारे। और आपको मुझे एक बार सवाल रिपीट कर देती हूँ, वो कौन सी फिल्म थी जो कि 2009 में रिलीज हुई जिसके लिए पहली बार कैटरीना कैफ ने जीता फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन। 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो।

दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग मोहित चौहान की आवाज में, और फिल्म थी जी जो सवाल आपसे पूछा था उसी का गाना भी मैंने लगा दिया था आपके लिए, एक साइलेंट सी हिंट देने के लिए आपको. द फिल्म वॉज न्यूयॉर्क, और ये वो फिल्म थी जो कि पहली बार जिसमें कैटरीना को मिली बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन फ्रॉम फिल्म फेयर अवार्ड्स. ऑल्दो शी कुडंट विन दिस फ्रॉम फिल्म फेयर, बट शी गॉट नॉमिनेटेड. एंड नॉमिनेशन जब आपको मिलती है तो ऑफकोर्स आपके काम को सराहा जाता है, तभी आपको नॉमिनेशन मिलता है. न्यूयॉर्क 2009 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, कबीर खान ने इसे डायरेक्ट किया था, आदित्य चोपड़ा ने स्टोरी लिखी थी, प्रोड्यूस किया था, जॉन अब्राहम, कैटरीना कैफ, नील नितिन मुकेश और इरफान खान हमें इस मूवी में मेन रोल में नजर आई थी. एंड फॉर एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मूवी दिस वॉज. सबसे पहले तो आप सब लोगों की फोन कॉल्स का और पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया. देयर वाज अ गिव अवे फ्रॉम मिराज लाउंज लोकेटेड एट मिकनी रैंच पार्कवे. $20 का ये गिफ्ट कार्ड है आपके लिए, और यू कैन से $20 ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50. तो $50 स्पेंड करेंगे तो $20 ऑफ, दैट्स अबाउट 40%, ग्रेट डील फॉर यू. तो हमारे जो आज के लकी विनर्स हैं उनका नाम मैं अनाउंस कर देती हूँ जी. दो विनर्स सेलेक्ट किए हमने, और बल्कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैथ के फॉर्मूले ने आपकी किस्मत के हिसाब से फैसला किया है. और हमारे जो पहले लकी विनर हैं दैट इज विश्वकांत मूला. विश्वकांत कंग्रेचुलेशंस. एंड द नेक्स्ट लकी विनर इज जैना उस्मान. जैना कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू. हमें अब आपका नाम और नंबर मिराज लाउंज पे पहुंचाने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए. एंड देन यू विल हैव अबाउट 6 to 7 days टू गो टू मिराज लाउंज लोकेटेड एट मिकनी रैंच पार्कवे एंड अवेल दिस $20 ऑफ विद अ मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50. तो enjoy your food, enjoy your time with your family and friends, and enjoy this giveaway at Miraj Lounge. और आप तमाम लोग जिन्होंने participate किया बहुत बहुत शुक्रिया. फनी जी इस तरह के बहुत सारे giveaways आपके लिए लेकर आता है. All you have to do is stay tuned and stay connected.

0: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
1: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
2: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
3: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, one vibe.
4: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
5: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कम्पिटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
2: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
5: मेंशन फनएशिया एंड गेट 50% ऑफ ऑन ट्रायआउट सेशन।
6: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
8: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
11: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
10: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
12: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
13: फॉर डेकेड्स वन मैन हैज मेड द वर्ल्ड डांस। Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner FunAsia Network.
14: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to FunAsia Radio.
15: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

जी हाँ, जहाँ कैटरीना कैफ द डांसिंग डीवा की बात हो रही है, वहाँ एक और बहुत बड़े डांसिंग डीवा हैं जिन्हें इंडिया का माइकल जैक्सन कहा जाता है. यू गेस दैट राइट. प्रभु देवा आ रहे हैं लाइव इन कॉन्सर्ट राइट हियर इन DFW. मथांगी एंटरटेनमेंट ग्रुप इज प्राउडली ब्रिंगिंग हिम टू DFW एंड जॉइनिंग हिम आर लॉरेन गॉटलिप, साथ ही साथ सोनल भादौरिया, उसी के साथ अलेक्जेंडर नोएल, हारिनी नताशा एज वेल एज सनवी मेघना. ये है जी अल्टीमेट पैन इंडियन डांस कॉन्सर्ट. जब इतने बड़े बड़े स्टार्स डांसिंग डीवाज स्टेज पे मौजूद होंगे अलोंग विद द इंडियाज माइकल जैक्सन, तो क्या होगा ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये इवेंट हैपनिंग ऑन सैटरडे अगस्त 1st एट द टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर ग्रैंड प्रेरी में लोकेटेड है जी ये. तो अपने टिकट्स खरीदने के लिए अभी इस नंबर पे कॉल कीजिए 248-233-3828. नंबर एक बार फिर नोट कीजिए 248-233-3828. प्राउड मीडिया पार्टनर इज फाइनेंशियल नेटवर्क. और आपकी आसानी के लिए ये भी बता दूं कि आप हमारे फाइनेंशियल नेटवर्क के सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो तो करते ही होंगे, नहीं करते तो अभी फॉरन करना शुरू कर दीजिए. हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आपके लिए पिंड है पोस्ट टू हाउ टू बुक योर टिकट्स easily. So follow or go to our social media pages, Funasia Network social media pages, and check out the pinned post for booking your tickets easily. This is Prabhu Deva live in concert on Saturday, August 1st at Texas Trust CU Theatres in Grand Prairie.

एक था टाइगर से लिया गया ये खूबसूरत गाना टेकन फ्रॉम एक्चुअली मोहित चौहान ने इस गाने को गाया था. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस वाज एंड व्हाट एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मूवी दिस वाज. अच्छा जी आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपके लिए एक गिव अवे लेके आई हूँ नियॉन कैक्टस की तरफ से. अगर आपका फूड सीन इन DFW थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो गया और आपको कुछ डिफरेंट खाना है तो इट इज टाइम टू स्विच टू नियॉन कैक्टस वेयर मैक्सिकन फ्यूजन मीट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस फ्रेश इन्ग्रीडियंट्स ज़बीहा हलाल ऑप्शंस. अगर आप वेजिटेरियन हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल लॉट्स ऑफ वेजिटेरियन चॉइसेस एज वेल और जायका फ्लेवर हर चीज का नायाब और खूबसूरत एंड द वाइब्स आर जस्ट आउटस्टैंडिंग यंग कलरफुल मॉडर्न फुल ऑफ एनर्जी. सो इफ देर आर एनी टीनेजर्स लिसनिंग टू मी एनी कॉलेज स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू मी तो आपके लिए गाइज दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू टू गो टू एंजॉय द कलरफुल मॉडर्न वाइब्स एंड द energy, you know, energetic area that they have given you. It is perfect for hangouts, it's for date nights as well as for your next chilling plan. So on top of that, you can, do the curated cocktails, refreshing mocktails, happy hour hota hai Monday through Friday or special deals hoti hain every single day. और अभी आपके पास ये मौका है टू विन अ $20 डाइन इन गिफ्ट कार्ड यानी कि आपको जाके $20 अवेल करने होंगे. सो दिस इज फॉर डाइन इन ओनली. इफ यू हैव वन दिस गिफ्ट कार्ड इन द प्रीवियस वन मंथ एक्चुअली किसी भी और फनेजिया के शो पे तो इंतजार कर लीजिए बिकॉज यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ. तो नियॉन कैक्टस की तरफ से ये जो $20 का गिफ्ट कार्ड है ये जीतने के लिए आपको मुझे बताना है. आज हमने बॉलीवुड स्पॉटलाइट में स्पॉटलाइट डाली है कैटरीना कैफ पे और मैं उनके कुछ खूबसूरत गाने आपके लिए प्ले कर रही हूँ. एक टाइम था जब कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर की जोड़ी जो है वो बड़ी मशहूर थी, बड़ी टॉक ऑफ द टाउन थी वो जोड़ी एंड एवरीबडी यूज टू टॉक अबाउट इट. उन्होंने मूवीज में भी कुछ में काम किया. आपको मुझे कॉल करके बताना है कोई ऐसी 3 मूवीज का नाम जिसमें रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ एक साथ नजर आए. 3 मूवीज इन विच रणबीर कपूर एंड कैटरीना कैफ acted together as hero and heroine. 972-235-5555 hai studio ka number. Jaldi se call kijiye aur jeet lijiye ye giveaway.

All right, जी, गाने पे जाते हुए नियॉन कैक्टस का $20 का गिफ्ट कार्ड आपके लिए लेके आई थी फॉर डाइन इन ओनली. और सवाल पूछा था आपसे कि रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की जोड़ी बहुत पॉपुलर थी, तीन मूवीज का नाम बताइए जिसमें वो दोनों साथ नजर आए. तो सही नाम आपको पहले बता देते हैं, अजब प्रेम की गजब कहानी, जग्गा जासूस और साथ ही साथ राजनीति. और आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया. इंद्रप्रीत, पवन, विश्वकांत, प्रतीक, हामिद, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स. अभी भी फोन लाइन्स बस कर रही हैं, बट टाइम खत्म हो चुका है कॉन्टेस्ट का. और हमारे जो आज के लकी विनर हैं, जो मैथ के फॉर्मूले ने आपका नंबर निकाला है जी, वो हैं इंद्रप्रीत सिंह. इंद्रप्रीत, कांग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने नियॉन कैक्टस का ये $20 का गिफ्ट कार्ड डाइन इन ओनली. हमें दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 to 7 डेज टू अवेल दिस गिव अवे. और एक बात ये कि जो है कोई आपको कॉल नहीं करेगा जी, आपको 2-3 दिन बाद खुद ही जाना है. एंजॉय कीजिए. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर पार्टिसिपेशन. फनी जो इस तरह के बहुत सारे गिव अवे आपके लिए लेकर आता है. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. सो थैंक यू सो मच.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
7: अरे सारे तो सेम है।
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
7: ओ हाँ, ये तो अलग है।
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं, फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर। विजिट श्रीकृष्णा.com।
9: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
10: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
11: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
12: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
12: ये क्या होता?
13: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
15: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
16: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
17: I've been researching retirement planning.
18: Oh, really? Where?
17: Google, YouTube, a guy on TikTok.
18: Or you could just talk to Wealth Tactic.
17: What's the difference?
18: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
19: Wealth Tactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
20: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
21: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
20: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
21: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
20: सच में? सब संभाल लेंगे?
21: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
19: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
22: कितने आदमी थे?
23: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

बॉलीवुड स्पॉटलाइट जो हमने आज डाली है कैटरीना कैफ में, और आप सुन रहे हैं आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. एवरी ट्यूसडे लेकर आती हूं आपके लिए बॉलीवुड स्पॉटलाइट, जिसमें हम डालते हैं स्पॉटलाइट कुछ ऐसे सितारों पे, ऐसे खूबसूरत खूबसूरत गाने जिन्होंने हमें दिए हैं. कैटरीना कैफ की क्या बात करें जी, शी इज रेसिपियंट ऑफ ओवर 20 अवार्ड्स इंक्लूडिंग स्टारडस्ट, जी सिने अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, आईफा अवार्ड, 3 फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी उन्हें मिल चुकी हैं, एंड शी हैज टॉप्ड वेरियस लिस्टिंग्स ऑफ India's most attractive people, also being named world's sexiest woman by FHM 5 times, Eastern Eyes की sexiest Asian woman, और 4 बार मिल चुका है उन्हें, जबकि Times of India की the most desirable woman उन्हें मिला है in 2010, और People's की most beautiful woman in India उनको मिल चुका है 2011 में. She has a lot of awards and things associated with her. 3 baar Filmfare ke liye nominate hui, although she could not win all the 3 times, but 2010 for New York, 2012 for Mere Brother Ki Dulhan, and then in 2019 for the movie Zero, she was nominated for Best Supporting Actress. Agle Katrina Kaif ke is khubsurat gaane ki taraf aapko leke ja rahe hain. Before that, aapko bataen, if you are looking to celebrate India's Independence Day, then IAT's Anand Bazaar 2026 is the place for you to go. Saturday, August 15th, ko ye celebration ho raha hai ji, from 2 p.m. onwards at the Comerica Center, Frisco. And the best part, it is completely free and it is indoors. So, garmi ki koi tension nahi hone wali. Enjoy kijiye authentic Indian food, grand parade, cultural performances, live music hoga, shopping bhi hogi for shopaholics, as well as an incredible drone show and fireworks finale. So, bring your family, bring your friends, and be part of North Texas's biggest Indian Independence Day celebration. This is IANT Anand Bazaar 2026.

जी हाँ, शमशीर निगाहें, नाजुक सी अदाएं, चाबुक सी अदाएं, तो सुन रहे थे आप ये गाना फ्रॉम द मूवी फैंटम, और कैटरीना कैफ पे पिक्चराइज्ड कुछ उन्हीं के गाने आपके लिए प्ले कर रहे थे आज बॉलीवुड स्पॉटलाइट में। आगे बढ़ते हुए आपको बहुत ज़रूरी एक इन्फॉर्मेशन देनी है जी, कि हम सभी जानते हैं कि एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम, और एक सेकंड लगता है कोई परेशानी आने में, लेकिन इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिकवर। एंड इफ़ यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन अ कार क्रैश, अ ट्रक एक्सीडेंट, या फिर कोई स्लिप और फॉल इंसिडेंट है जिसकी वजह से आपकी यू नो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ आपको डील करना पड़ रहा है, पेपर वर्क, निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल, साथ ही साथ आपको अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल फिजिकल वेलबींग का भी ख्याल रखना है, तो दिस कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। एंड यू ऑल यू हैव टू डू इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड लेट अटर्नी ओमर ख्वाजा डू द रेस्ट। आप अटर्नी ओमर ख्वाजा और उनकी टीम विल हेल्प यू फाइट योर केस, गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको कुछ पे नहीं करना अंटिल यू विन द केस। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। एक मुश्किल वक्त में या स्ट्रेसफुल टाइम में राहत का पैगाम है ये आपके लिए। अटर्नी ओमर ख्वाजा को कॉल कीजिए। यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न फॉर फ्री कंसल्टेशन, दैट नंबर इज 4693005046 is the number to attorney Omar Khwaja's office, ya phir aap unki website visit kar sakte hain, which is attorneyomar.com। aur isse mujhe khayal aaya ki main aapko बताती चलूँ, अगर आप रोड पे हैं इस वक्त, क्योंकि हम ट्रैफिक की ही बात कर रहे हैं, तो दिस वेदर दिस ट्रैफिक अपडेट दैट इज़ ब्रॉट टू यू बाय द लॉ ऑफिसर्स ऑफ ओमर ख्वाजा। एक कोलिजन हमें नजर आ रहा है जी IH-20 पे एट ग्रेट साउथ वेस्ट पार्कवे वेस्ट बाउंड, जिसकी वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड इंक्लूडिंग एन एग्जिट लेन। बट दैट इज प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर ट्रैफिक इज कंसर्न्ड, एंड जहां भी आप जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, प्लीज बी केयरफुल एंड बी विजिलेंट।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
1: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
1: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
1: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: तारा वो तारा हर तारा।
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
6: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। 1 हफ्ता 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
7: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन अर्विंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
6: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
8: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.

0: 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो पे मैं एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और यहाँ वक्त हो चला है जी आपको कनेक्ट करने का हमारे उरा डेट रिलीफ सेगमेंट के साथ. हमारे साथ मौजूद हैं अमन जी जो हमें बताएंगे कि उरा डेट रिलीफ आपको कैसे राहत प्रोवाइड कर सकती है एंड हेल्प यू मेक द राइट चॉइसेस. लेट्स वेलकम हिम ऑन द एयरवेव्स ऑफ फाइनेंशियल. गुड आफ्टरनून अमन जी, हाउ आर यू डूइंग?
1: गुड आफ्टरनून फाइनेंशिया सुनने वाले सभी लिसनर्स को अमन और उरा की तरफ से नमस्कार. उरा करता क्या है? उरा आपके क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट करता है. क्रेडिट कार्ड जो हम लोग महीने दर महीने सिर्फ मिनिमम पेमेंट देते हैं और उस मिनिमम पेमेंट से वो क्रेडिट कार्ड हिलते भी नहीं है, पे ऑफ नहीं होते हैं. तो अगर आप परेशान हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड उतर नहीं रहे हैं, पे ऑफ नहीं हो रहे हैं, आप हर महीने पे मिनिमम पेमेंट देते हैं लेकिन वो मिनिमम पेमेंट किस दर से देते हैं कि आपका क्रेडिट ना खराब हो जाए, इसी दर से हम लोग हर महीने दर महीने मिनिमम पेमेंट देते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आप चाहे वो मिनिमम पेमेंट दे रहे हैं उसका नुकसान ये हो रहा है कि आपका क्रेडिट भी खराब हो रहा है. क्योंकि जब आपका क्रेडिट कार्ड पूरी तरह फुल है, पे ऑफ नहीं हुआ है और आप उस क्रेडिट कार्ड की 30% से ऊपर की लिमिट क्रॉस करके उसको पूरी तरह से फुल यूज कर चुके हैं तो क्रेडिट खराब होना शुरू हो जाता है. तो उसका मिनिमम पे का कोई फायदा नहीं. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतरे और उसमें से भी आधा कर्जा हम माफ करवा देते हैं, यानी कि अगर आपने $100 खर्चे हैं तो 50 तो आपके माफी हो जाएंगे, बाकी जो 50 बनेंगे उसकी आपकी इंटरेस्ट फ्री किश्तें बना देंगे. तो है ना ये फायदे का सौदा, पैसा जो खर्चा है उसका आधा माफ हो जाएगा, आधे की इंटरेस्ट फ्री पेमेंट बन जाएगी. राइट नाउ आप 40% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. क्रेडिट कार्ड का कर्जा हो, बिजनेस के क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल क्रेडिट कार्ड हो, स्टोर के क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, अगर आपका कोई पर्सनल लोन भी है या गाड़ी जो रीपोजेस हो गई, गाड़ी जो टोटल होगी उसका लोन भी है, उसको भी आधे से ज्यादा नेगोशिएट करके माफ करवाया जा सकता है. सिंपल, मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल कीजिए. ये महीना तो खत्म हो गया लेकिन अगर कोई पेमेंट ड्यू है तो, या अगले महीने की जो पेमेंट्स आने से पहले अगर आप कॉल कर लें तो आपके काफी पैसे बच सकते हैं. जस्ट गिव अस अ कॉल 1-888-888-9914 1-888-888-9914. और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं कॉल मी 916-763-555 916-776-3555 अगेन 916-776-3555. हमारी वेबसाइट है www.ura.org. तो मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल जरूर कीजिए.
0: थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस अमन जी. वी विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम.
1: थैंक यू.

This part of our show is proudly brought to you by AG FinTechs, one of the fastest growing tax and accounting firms in the US. आपको बताते चलें जी कि चाहे आप इंडिविजुअल हो या आपका स्टार्टअप हो या फिर आप एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस के मालिक हो, AG FinTechs ऑफर करता है इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस दैट आर टेलर्ड अराउंड योर नीड्स, फ्रॉम बुककीपिंग, payroll accounting and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning as well as tax compliance, financial reporting aur usi ke sath sath business advisory services bhi AG FinTechs aur unki team aapko provide karti hai. They help keep your finances organized, compliant and future ready. So trusted hain, efficient hain and AG FinTechs is committed to your success. So AG FinTechs ko apna partner banaiye in building a strong financial future by giving them a call, discussing your thoughts, your concerns with them. That number is 469-942-9888. The number again is 469-942-9888. या फिर उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, which is agfintax.com. But that is agfintax.com. और इसी के साथ मैं आपको देने लगी हूँ वेदर की अपडेट जी. इट इज दैट टाइम ऑफ द डे व्हेन आई गिव यू वेदर. करेंसी, गोल्ड प्राइस, ट्यूसडे जुलाई द 21st, 4:56 PM इन द स्टूडियो और सिटी ऑफ मेकिनी में इस वक्त है 100 डिग्रीज. हाउएवर इट फील्स लाइक 110. जी हाँ, वी आर ऑन हीट एडवाइजरी, एक्सट्रीम हीट एडवाइजरी. कल शाम 8 बजे तक ये हीट एडवाइजरी वैलिड रहने वाली है. उसके बाद मुझे पता नहीं खत्म होगी कि एक्सटेंड हो जाएगी. आपको बताते चलें जी, दिन रहा हॉट एंड सनी विद हाइज अराउंड 103, जबकि शाम रहेगी क्लियर विद लोज इन दी लोअर 80s. Pollen count is 5, which is medium. UV index is extremely high, which is 11. So, ye maximum number hota hai UV index ka. Aap apni sunscreens handy rakhi. If you're planning to go on a walk or have any outside activity, keep yourself hydrated, which is very important. Sunrise aaj ka hua 6:31 PM pe, jabki aaj ka sunset hoga 8:33 PM.

And it is time now to give you the gold price update before I say my buys to you for today. Or जी according to goldprice.org इस वक्त यानी के जुलाई 21st 4:45 PM gold price per ounce है $4,077.68 जबकि एक ग्राम सोने की कीमत इस वक्त इस $13,131.01 तो कल की नस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $2.10 का इजाफा हुआ जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $65.37 का इजाफा देखने को मिला बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर वेदर इज कंसर्न्ड राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण और ट्रैफिक में हमें दो कोलिजन्स नजर आ रहे हैं जिनके साथ हम रैप अप करते हैं द फर्स्ट One is located at IH20 at Great Southwest Parkway westbound, जिसकी वजह से two lanes are blocked, including an exit lane. The severity of this incident is reported high. There is another collision that is reported at 35 East towards FM551. Actually, that incident just disappeared. So, मेरे ख्याल है कि that has been taken care of. So, nothing much or major that I can see. On the roads of Dallas. अच्छा एक अभी अभी is while I'm talking to you चीज़ें अपडेट हो रही हैं 75 US 75 पे at Walnut Hill Lane northbound there is a vehicle on fire जिसकी वजह से three lanes are blocked including an exit lane as well. तो यहाँ ज़रा आप ध्यान से जाइएगा देख लीजिए कि what's going on kuch backup yahan pe ho raha hai abhi incident report hua hai to you will see a lot of backup at this spot as well so be very careful and be very wary of your surroundings that is all that I have for you today I will see you tomorrow that is Wednesday on your afternoon drive time we will start with romantic melodies then we will go into pop frequency Pakistani pop music as well as the top 10 trending dramas according to the TRP charts that is your favorite half an hour of the day 4:30 say 3:30 PM लेके आती हूं आपके लिए टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास एंड देन वी विल फॉलो दैट अप विद द ट्रॉफी ट्रैक्स सो मच दैट इज ऑलवेज लाइंड अप फॉर यू राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर डे

एक कहीं ना व्हाट्सएप ग्रुप पे ना चैट चल रही थी, और उस चैट में ना लोग कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, किसके पता नहीं क्या हो गया जी, के कौन महान है कौन नहीं, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे महान कौन है। खैर उसमें से ना बाकी बातें तो मुझे समझ नहीं आई। एक लेडी ने मैसेज लिखा, उसमें लिखा था कि जो माँ बाप है ना, सबसे बड़ी चीज़ माँ बाप होते हैं। ये लिखा था, क्या लिखा था कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। मैंने भी टेक्स्ट वापस लिख दिया, तो हम भी माता पिता बन जाएं। उसने ब्लॉक ही कर दिया मुझे। After this song, we'll take a short commercial break. A birthday shout out coming up.

0: किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
3: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
2: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
3: वेट, व्हाट?
1: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
4: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
1: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
5: Coughing or sneezing at home, your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
1: Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
6: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
7: Calculating route. Rerouting.
6: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
7: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
6: क्यों?
7: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
6: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
7: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
11: For decades, one man has made the world dance. Now, Mathangi Entertainment Group proudly brings India's Michael Jackson, Prabhu Deva, live to DFW. Joining him are Lauren Gottlieb, Sonal Bhadoria, Alexander Noel, Harini Nilakantan, Natasha Sherpa and Sanve Meghna for the ultimate pan-Indian dance concert. Saturday, August 1st at the Texas Trust CU Theatre, Grand Prairie. Book your tickets now. Call 248-233-3828. Media partner, Fun Asia Network.

देखो यार, लड़ाइयाँ किस हस्बैंड वाइफ में नहीं होती, सब में होती हैं लड़ाइयाँ, बट लड़ाई का ना एक सोल्यूशन है। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ जाए अपने पति पे, तो आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको एक चिट्ठी लिखनी है, आपको एक चिट्ठी लिखनी है और फिर उसको जला देना है, ठीक है। चिट्ठी लिखनी है और उसको जला देना है। अब इसके बाद ये मत पूछना कि चिट्ठी का क्या करना है,

0: हस्बैंड पर गुस्सा आए तो चिट्ठी लिखो और जला दो, बाकी चिट्ठी का आप क्या करो वो आपकी टेंशन।
1: पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है।
0: In the year 1996, on today's date, which was 21st of July, The Daily Show, a late-night talk and satirical news program hosted by Craig Kilburn, premiered on Comedy Central in the United States. It was today's date, which was the 21st of July. The year was 1996 when The Daily Show, featuring Mr. Kilburn, was born on Comedy Central. It is 5:26 in the studio clock, 5:26. I'm going to be with you till 7 o'clock this evening. Ek gana aur maine line up kiya hua hai, wo sunwana hai, par uske saath saath ek shout out hai. And this is going out to Pranshu. Pranshu is turning 21 years of age today. 21 saal ke ho gaye hain Pranshu. And unke mother aur father, yani ki Priyanka and Vikas, are wanting to wish him a very happy birthday. Priyanshu, from the team here at Fanasia and from Banda Bindas, it is a very happy birthday to you, my brother, from your parents as well. Do good, be good, that's all your parents ask for. और हाँ, जैसे जैसे वो बूढ़े होंगे तब तक आपको वैसे वैसे आपको अपनी सपोर्ट उनकी तरफ बढ़ानी है. जस्ट लाइक दे टेक केयर ऑफ यू इन द यंगर ईयर्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम इन द ओल्डर ईयर्स एज दे ग्रो. फॉर नाउ इट इज़ अ ट्रैक जो कि पसंद है जी हमारे प्रांशु को. एंड प्रांशु दलेर मेहंदी मांग रहे थे उनके पेरेंट्स. हियर वी गो विद अ लवली ट्रैक फ्रॉम दलेर पा जी.

0: हर तरफ तेरा जलवा, हर तरफ तेरा जलवा, दलेर मेहंदी पाजी की आवाज़। एंड इस गाने को ना वैसे मुझे पसंद इसलिए आ गई थी क्योंकि इसमें लीजा रे फीचर थी भैया। एंड लीजा रे अपने टाइम पे आई वॉज अ डाई हार्ट फैन ऑफ लीजा रे। लीजा जी यहाँ अमेरिका और बाहर की कंट्रियों में पैदा हुई, मैं इंडिया रह गया। ट्रंप काश पहले आया होता तो मैं इसको रिक्वेस्ट करके अपने आप को पहले यहाँ वीज़ा लगवा के आ गया होता। बट हर चीज़ लाइफ में थोड़ी मिल जाती है। अब देखो आपने मूविंग कराई थी अपने घर की, है ना, आपने एक कंपनी को कॉल किया, उन्होंने बोला यस यस वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद पता लगा भाभी का फेवरेट टेबल टूट गया। अब वो तो टूटा ही टूटा, उसके साथ जो आपके साथ हुआ वो आपको भी पता है ना। इंसान को, शादीशुदा आदमी को दो ही वर्ड से डर लगता है, एक सुनो जी और दूसरा एक बात पूछो। तो मैं आपसे बात पूछता हूँ कि आपने अगर अभी तक SFL वर्ल्ड वाइड की सर्विसेज यूज़ नहीं की हैं तो किस बात की वेट कर रहे हैं। दे आर द वंस दैट एक्चुअली मेक श्योर कि आपका हर प्रोडक्ट, हर चीज़ जो घर की है वो बिल्कुल वैसे ही जाए जैसे आपने खरीदी थी, जैसे आपके घर में उन्होंने पैक की है। एंड दे हैव ग्रेट ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू मूविंग योर एंटायर होम, गाड़ियाँ, बाकी बहुत कुछ। लेट्स टॉक टू माय फ्रेंड राहुल हियर हू इज गोइंग टू टेल अस मोर। राहुल, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू।
1: Very good evening, Marvin. How are you doing?
0: Good, good. God is good. Life is good, brother. Bataiye ke, you know, we always talk about SFL Worldwide and their excellence, but I want to know from you ke, these are very sentimental cheeze hoti hain ghar ki, hai na? Ghar jab banata hai koi bhi, to especially the ladies in the house, they ek ek cheeze ko pick karti hain, hai na? And those memories and those joys should remain intact. To जैसे शीशे के टेबल हैं, अलमारियां हैं, ग्रैंडफादर क्लॉक्स हैं, डू यू पैक देम बिफोर यू टेक देम एनीवेयर व्हेन शिपिंग इज डन?
1: एब्सोल्युटली, SFL वर्ल्डवाइड डज डोर टू डोर मूविंग फॉर यू। हम आपके घर से आपका पूरा सामान पैक करेंगे और उसको प्रॉपरली आपका सामान को मूव करके आपके नए लोकेशन पे अनपैक करके एवरीथिंग प्रॉपरली अरेंज भी करेंगे।
0: तो बबल रैपिंग, शबल रैपिंग और उसमें गत्ते वत्ते लगाना एंड मेक श्योर करना कि जो शीशे की आइटम्स हैं दे आर सिक्योर्ड, दैट इज व्हाट यू डू। नाउ घर के सामान तो हो गया। अभी मेरे परसों एक फ्रेंड कैलिफोर्निया से मूव हुए एंड दे वर आस्किंग यार मुझे कैलिफोर्निया जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी गाड़ी वहां रह गई है। सो जिन लोगों की गाड़ी कहीं रह जाती है उसका कोई सोल्यूशन है राहुल?
1: जी बिल्कुल, SFL वर्ल्डवाइड जो है वो आपका शिपिंग में काफ़ी हेल्प कर सकती है। SFL वर्ल्डवाइड डज शिपिंग इंटरनेशनली एंड ग्लोबली, इंटरनेशनली एंड लोकली फॉर यू। सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मार्विन, कि ये जो SFL वर्ल्डवाइड जो है जो शिपिंग करती है, तो वो चीज़ एनीथिंग यू शिप फ्रॉम मे बी डालस टू इंडिया, मे बी यूरोप टू इंडिया, तो ये चीज़ में जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो चीज़ में 70% लेस SFL वर्ल्डवाइड आपको देती है फॉर शिपिंग। एंड एक और चीज़ कि अगर आप आपकी गाड़ी शिप करना चाहते हैं, लाइक सपोज लाइक यू नो दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स यू वांट टू मूव एंड यू आल्सो हैव टू कार्स विद यू, तो वो भी चीज़ में SFL वर्ल्ड आपकी काफ़ी सेवा कर सकता है।
0: वेरी नाइस। एंड आपने कहा कि ब्रिंगिंग स्टफ फ्रॉम यूरोप, सेंडिंग स्टफ टू यूरोप, तो डू यू प्रोवाइड दिस सॉल्यूशंस टू बिजनेसेस आल्सो? जैसे कि बहुत सारे डालस में एंटरप्रेन्योर्स हैं हु आर प्रोक्योरिंग देयर स्टफ फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज और फिर उसको इंडिया बाय ओशन फ्रेट और बाय एयर फ्रेट यहाँ लाया जाता है एंड देन लोकल ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज़ अ लॉट ऑफ हेडेक, राइट? किसी के लिए भी इंडिया से माल को पहले वहाँ पोर्ट्स पे पहुँचाना, वहाँ पोर्ट से सारे क्लियरेंसेस करवा के यहाँ के पोर्ट पे लैंड करवाना, यहाँ से सारे क्लियरेंसेस करवा के उसको लोकल ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन देना, दिस इज़ अ लॉट ऑफ चेन्स, लॉट ऑफ कॉम्पोनेंट्स टू दिस। तो क्या आप ये कॉम्पोनेंट सेगमेंट भी स्ट्रीमलाइन करते हैं जहाँ मैं एज अ बिजनेस ओनर आपके पास आऊँ और बोलूँ दिस इज माई कंटेनर लोड, इट इज कमिंग फ्रॉम कैलकटा, इट इज कमिंग फ्रॉम बॉम्बे एंड आई नीड इट हियर इन डैलस, डू यू डू दैट एज वेल?
1: एब्सोल्युटली, SFL वर्ल्डवाइड स्ट्रीमलाइंस एवरीथिंग फॉर यू। सारे पेपर वर्क एंड एवरीथिंग जो भी आपने कहे, SFL वर्ल्डवाइड आपकी सारी चीजों में आपका हेल्प कर सकता है, लाइक LCL और FCL, ये सारे चीजों में SFL वर्ल्डवाइड आपका हेल्प कर सकता है।
0: एंड व्हाट अबाउट द टैक्सेस एंड इंपोर्ट ड्यूटीज, डू यू हैंडल दैट एज वेल?
1: जी बिल्कुल।
0: Wonderful. So end-to-end shipping solution, end-to-end transport solution, be that from overseas, be that from any other state in the United States. And now if I talk about the United States itself, yahan pe jo business owners aapas mein trade kar rahe hain, somebody is sending goods to California, somebody is bringing from California, do you do that ground transportation as well?
1: Ji, bilkul.
0: वंडरफुल, व्हाई डोंट यू शेयर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ये नंबर बड़ा काम का होने वाला है DFW. गेट दिस नंबर, वैसे तो नाम याद रखिए, sflworldwide.com इज द वेबसाइट एंड SFL स्टैंड्स फॉर शिप फॉर लेस एंड आई हैव पर्सनली यूज दैम. आई कैन टेल यू कि आपने जो भी आज तक, चाहे एक पैकेट भेजा है चाहे एक डब्बा भेजा है, वट एवर यू पेड फॉर, आप रिप ऑफ हुए हैं, बिकॉज 30-40% तो गारंटीड सेविंग आपको SFL से मिलेगी, चाहे आपने एक चिट्ठी भेजनी है लोकली और इंटरनेशनली. शेयर द नंबर प्लीज.
1: It's 800-691-2335.
0: And that's it. That's all you need to know. Aur aajkal agar time nahi hai numbers likhne ka, this is a totally tech savvy world. Give them a call or simply log on to the website. Rahul, naam to suna hi hoga Dallas ne ab. I'll see you next week.

डैलस इज अ ग्रोइंग मार्केट एंड यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं जी, फ्रॉम पब्लिक इवेंट्स टू प्राइवेट इवेंट्स. पब्लिक इवेंट्स में तो चलो आपको सिर्फ टिकट लेके जाना है एंड यू हैव टू एंजॉय योरसेल्फ, बाकी एंटरटेनमेंट पे डिपेंड करता है. बट व्हेन यू डूइंग योर ओन प्राइवेट इवेंट तो बड़ी परेशानियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि भाभी कहती हैं भाई ये डेकोरेशन कौन करेगा, कुर्सियाँ कैसी लगेंगी, बाकी खाना कैसा होगा, एंटरटेनमेंट कौन हैंडल करेगा, हॉस्पिटैलिटी कौन देखेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात फोटोग्राफी कौन देखेगा, क्योंकि फोटोग्राफ्स ही तो सोशल मीडिया पर वायरल होनी है. तो अगर आप अपना इवेंट प्लान कर रहे हैं, वेडिंग हो, ग्रेजुएशन हो, हाउस वार्मिंग हो, एनी स्पेशल सेलिब्रेशन,

0: करेगा, हॉस्पिटैलिटी कौन देखेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात फोटोग्राफी कौन देखेगा, क्योंकि फोटोग्राफ्स ही तो सोशल मीडिया पर वायरल होनी है। तो अगर आप अपना इवेंट प्लान कर रहे हैं, वेडिंग हो, ग्रेजुएशन हो, हाउस वार्मिंग हो, एनी स्पेशल सेलिब्रेशन, बिफोर ये जो स्ट्रेस लेने से पहले ना, सिर्फ एक काम करना है आपने, वैनेसा इवेंट्स को कॉल करना है। वेन्यू अगर आप ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ के देंगे, डेकोर की टेंशन ले गए हुए, केटरिंग दे विल हैंडल इट, सारी लिटल डिटेल्स जो जो छोटी छोटी इंटीग्रिटी होती है सबको हैंडल करेंगे जी, एंड दैट इज वैनेसा इवेंट्स। आपको हरी को कॉल करना है जी 4694428770, दैट्स 4694428770। वैनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर, एंड याद रखिएगा कि इनकी जो डेकोरेशन है, वेन्यू सिलेक्शन है, दैट इज अमेजिंग। डेकोर करवाते हैं बाय सिग्नेचर इवेंट्स, फोटोग्राफी से लेके हॉस्पिटैलिटी, एंड ऑफ कोर्स केटरिंग फ्रॉम द रेनाउंड बसेरा ग्रैंड। मेक श्योर टू चेक दम आउट बिफोर यू मेक योर नेक्स्ट इवेंट प्लानिंग। इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूँ विद अ गिव अवे, एंड दिस वन इज गोना बी फ्रॉम इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ, एंड दिस इज अ गिफ्ट हैम्पर। जो जीतेगा कौन वो तो खैर ब्रेक के बाद ही पता चलेगा ना। ब्रेक पे जाने से पहले कबीर के दोहे सुन लो। दोहे पता ना आपको, कबीर साहब ने बहुत लिखे, मैं सुनाता हूँ दोहे। हे हे,
1: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
2: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
3: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
4: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: वेट, इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं हीरो।
0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
10: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
11: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
12: Weekend ka plan abhi tak nahi bana? Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement. Sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
13: I am Rahat Fateh Ali Khan.

It is 5:46 in the studio clock. 5:46 ho chuke hain ji. You're listening to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. Main hu Jeevan Daban Das, Marvin Das, and I am with you Monday to Thursday, 5 to 7 PM, 21 July. And 21 July ko kuch birthdays khas hote hain. And let me first tell you, this part of the show is brought to you by none other than our drive time sponsor, jinka naam hai ji attorney Omar Khwaja. And he is the one who you need to know. वैसे तो ये नाम आपको कभी यूज ना करना पड़े लाइफ में, बट अगर इसको यूज करने की नौबत आई तो कब आएगी? इफ यू एवर गेट इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट, अ स्लिप एंड फॉल, कहीं गिर गए आप या आपका कार एक्सीडेंट हो गया, जो कि मैं उम्मीद और दुआ ये करता हूँ आप कभी भी इस ट्रबल में ना हो, बट इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट ट्रबल, वन नेम दैट यू नीड टू रिमेंबर इज अटर्नी ओमर. यू कैन गूगल हिम अटर्नी ओमर, यू विल गेट हिज इन्फॉर्मेशन, और सिंपली विजिट द वेबसाइट attorneyomar.com. द बेस्ट पार्ट इज कि आप तब तक कुछ नहीं पे करते जब तक आप अपना केस जीतते नहीं, एंड they make sure that you win because that's what their history shows. Chahe aapke doctor ke bill hain, hospitals hain, aapki gaadi ka repair hai, job losses that you go through, all of that is able to be paid for, which is by fighting with the insurance company. Now, you are not a fighter. You don't know how to deal with this, but they do. So why don't we give them a call or give them your information, let them deal with all the headache. You just relax and recover. That's what you need to do. For now, it is a giveaway time. Like I said, ke mere paas hai ji, India Bazaar ki taraf se ek gift hamper. Now, pehli baat to ye ki jo gift hamper hai, this is from their latest store, which is in Fort Worth. Ab ye store jo hai ji, ये फोर्ट वर्थ वालों के लिए एक धमाका है, क्योंकि वो दे रहे हैं आपको स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर. दिस इज़ योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन, चाहे ऑथेंटिक इंडियन ग्रोसरीज हो, फ्रेश प्रोड्यूस हो, स्पाइसेस हो, स्नैक्स हो, डेली देसी नीड्स के सारे एसेंशियल्स आपको पता है इंडिया बाजार में मिलते हैं. दिस फोर्ट वर्थ लोकेशन इज नाउ ओपन ऑन 5152 Quadrant Way in Fort Worth, 5152 Quadrant Way in Fort Worth. For people living in Fort Worth, Keller, Hurst, Haslett, this is a great solution. Now, I'm going to ask you a question. If you give me the right answer, then you get yourself this giveaway, which is coming from India Bazaar. Main puchne laga hu ji sawal aapse ek birthday ke related. Today marks the birthday of this actor sahab hai ye. Inhone Hindi filmon mein kaam kiya hai, टेलीविजन और थिएटर में भी काम किया है. एक रोल इनका बहुत प्रोमिनेंट है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा. पहले ये बता दूं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए हैं इन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स में, जैसे कि सत्या फिल्म आई थी, दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक इन 1998, फिर गुलाल आई थी अगेन इन 2009, लक्ष्य में ये नजर आए, पांच में नजर आए, ब्लैक फ्राइडे में नजर आए, कालो, सुपर 30 एंड दिल से पूछ किधर जाना है. वो वॉइस प्रोड्यूसर भी हैं, वॉइस आर्टिस्ट भी हैं, टेलीविजन प्रोड्यूसर भी हैं. आज ही के दिन इनका हुआ था जन्मदिन, विच इज द 21st of July. नाउ अगर इनके करियर की बात की जाए तो 9 मलाबार हिल में नजर आए थे, ब्योमकेश बख्शी, रिश्ते, आहट, एंड देन इनका एक शो जिसमें इनका नाम दया है. दया, अब आपको मुझे बताना है ये कौन है. इफ यू गिव मी द राइट आंसर, कॉलर नंबर 3 एज ऑलवेज गेट्स देमसेल्व्स दिस गिफ्ट हैम्पर from India Bazaar, Fort Worth. So when you're calling in, make sure you're able to go to India Bazaar in Fort Worth and enjoy this gift certificate and this hamper from them. So, call shuru kar lein ji. The 1, 2, 3, number 3 caller jo sahi jawab dega, usko milega ye gift hamper from India Bazaar. I'm going to play a track real quick while you guys get your calls in. Once again, agar inki kuch filmon ki baat ki jaye to Satya, Gulal, Lakshya, Panch, Black Friday, Kalo, Super 30. Ek Hindi serial hai, bahut popular hai, aur usme daya nahi hai, ye ek inspector ka role play karte hain, aur inspector Abhijit hai inka naam. Theek hai ji, Abhijit inspector inka naam hai. Longest running television police ke bare mein show hai ye, jo ki आज तक इंडिया का सबसे लंबा चलने वाला टेलीविजन शो है. सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत आज सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे. कौन है आप बताओ.

0: All right, let's see who do we have with us who wants to answer my question. क्योंकि गाना बड़ा प्यारा है. I don't want to cut it and I'll play it again for you. Good evening, Funny Ajay. आपका नाम?
1: Hi, this is Jay.
0: Hi, Jay. Do you live in Fort Worth?
1: Yes, closer to Fort Worth.
0: All right, Jay. Tell me, do you know this this guy who's celebrating his birthday? Screen name, Senior Inspector Abhijit. बहुत सारी फिल्मों में काम, जैसे कि सत्य, गुलाल and many more. Do you know his real name?
1: I think so. Is it Aditya Srivastava?
0: Aditya Srivastava. और आपने क्या नाम बोला था अपना? Jay?
1: Jay.
0: Jay, let's see if you have the right answer or not. Who is on number two with me? They've dropped. No problem. Going to number two again. Good evening, Funny Ajay. Who's this?
2: Yeah, hi. This is Manisha.
0: Hi, Manisha. कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ. आप कैसे हैं?
0: ऊपर वाला मेहरबान है मनीषा. मनीषा जी, ये बताइए, do you know who is this senior inspector Abhijit?
2: Yeah, वो CID में मतलब काम कर रहे थे. CID जो सीरियल आता था टीवी पे.
0: उनका नाम क्या है?
2: उनका नाम,
0: उनके नाम में है काम और नाम से
2: नाम इनाम. तो नहीं पता, इतना तो पता है कि वो CID में आते थे.
0: चलो, इतनी अकल की और इतनी आपकी मेमोरी की तारीफ करता हूँ, बहुत शुक्रिया. अब ये कौन, देखो होल्ड पे रखा हुआ था, कट गए, फिर कहते हैं हमारा फोन नहीं उठाते आप. गुड इवनिंग Funny Ajay, who's this? हेलो. ऑलराइट,
3: शुक्रिया.
0: रेडियो वॉल्यूम लो नहीं करेंगे तो मैं आगे ना, बहुत डब्बे हैं हमारी ट्रेन में, मेरे को बहुत शौक है कि मैं अलग अलग डब्बे में देखूं कौन कौन बैठा है. गुड इवनिंग Funny Ajay, व्हाट्स योर नेम?
4: मोहम्मद अख्तरुज़्ज़मान.
0: कौन से? अख्तरुज़्ज़मान. अख्तरुज़्ज़मान भाई, हाउ आर यू?
4: आई एम गुड, हाउ आर यू ब्रदर?
0: आई एम गुड माई ब्रदर. माई ग्रैंड फादर्स नेम वॉज मिस्टर मिचेल मॉरिस महिंद्रा दास मंजूर लखनवी. I thought that was quite a trailer, but Akhtaruzzaman, very nice man. Akhtaruzzaman bhai, mujhe ye bataiye, do you know the name of this character?
4: So, Nasiruddin Shah.
0: Oh my God, no, Mr. Akhtaruzzaman, not Mr. Nasiruddin Shah. Let's go to caller number 3, jo bine win karna chahta hai isko. Ab mere paas winner aa gaya, mujhe lagta hai. Naam bataiye apna.
5: Himan Tarun.
0: Himan Tarun ji, kaise hain?
5: बहुत बढ़िया.
0: आप कैसे हैं? निमंत्रण को Funny Ajay की तरफ से निमंत्रण दिया गया है कि आओ हमारे इस कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए. बिना भागे भाग लीजिए. अब मुझे बताइए कि क्या आपको इस एक्टर का नाम पता है?
5: दयानंद शक्ति.
0: दयानंद शक्ति नहीं है अंकल जी, गड़बड़ हो गई यहाँ पर भी. यार इतना आसान सा सवाल और अभी तक भी किसी ने जवाब नहीं दिया. खिड़कियाँ वगैरह बंद कर लो. कहाँ, फैक्ट्री में काम कर रहे हो क्या? टिक टिक टिक. चलो जी, मुझे नहीं लगता कि आज कोई जीत पाएगा इसको, इतना टफ हो गया क्या? गुड इवनिंग Funny Ajay, आपका नाम?
6: हाय, माय नेम इज मुखिल खंडेलवाल.
0: मुखिल साहब कैसे हैं?
6: बहुत बढ़िया साहब, आप कैसे हैं?
0: बहुत है बढ़िया हम यहाँ. बताओ इस एक्टर का नाम मालूम है क्या? विनर बन सकते हैं लकी. फोर्ट वर्थ से इंडिया बाजार का मिलेगा गिफ्ट हैम्पर.
6: आदित्य श्रीवास्तव.
0: क्या बात है यार, क्या बात है बड़े भैया. क्या नाम बोले थे अपना?
6: मुखिल खंडेलवाल.
0: मुखिल भाई, मुबारक हो फोर्ट वर्थ के स्टोर की आपको गिफ्ट हैम्पर आ रही है जी. यू हैव गॉट होल्ड द लाइन फॉर मी.

व्हाट अ वॉइस ऑफ विशाल मिश्रा मैन. विशाल साहब की आवाज सीधा दिल में धाए जाके खींचती है. और क्या गाते हैं यार. आई जस्ट लव द टेक्सचर ऑफ हिज वॉइस. जीना हराम, ब्यूटीफुल ट्रैक. एंड दिस का एक और गाना आया था इनका विद रैपर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बट आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस दैट इन द नेक्स्ट आवर. और इंट्रोड्यूस किया, आपने सुना होगा, बट लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी विद दैट ट्रैक. डीनो, आई थिंक डीनो इज अ रैपर. एंड साथ में विशाल मिश्रा का एक गाना, ब्यूटीफुल ट्रैक. आई विल ट्राई टू स्विंग दैट इन द नेक्स्ट आवर. बट वी वर टॉकिंग अबाउट आदित्य श्रीवास्तवा, द इंडियन एक्टर हु इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. बहुत सारी फिल्मों में नजर आए थे, जैसे कि सत्य, गुलाल, लक्ष्य, सुपर 30, कालो. उसके साथ साथ ही हैज डन अ लॉट मोर टीवी एज वेल, जैसे कि CID, which is the longest running TV show in India. उसमें इनका रोल है जी सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, जो दया होता है ना, दया बड़े वाले होते हैं वो, दया शेट्टी आई थिंक उसका नाम है. बट नॉनदलेस वी आर विशिंग हिम अ हैप्पी बर्थडे फ्रॉम आवर टीम. एंड गोइंग टू अ ब्रेक आफ्टर द नेक्स्ट ट्रैक. आ रहा हूँ वापस विद द नेक्स्ट आवर ऑफ द बिंदास शो.

हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिंदास बोलो और अपने रेडियो की वॉल्यूम और थोड़ी खोलो 5 to 7 PM विद योर होस्ट बंदा बिंदास मारविंदास. दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो. वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. जुलाई की 21 तारीख ट्यूसडे की शाम है जी एंड वी आर गोना बी प्लेइंग सम लवली म्यूजिक एंड शेयरिंग सम गुड फन स्टफ. डैलस में क्या क्या हो रहा है जी वो भी आपको बताएंगे. पहले तो आपकी सेहत को अच्छा करने का एक राज बता देता हूँ कि भैया इफ़ यू हैव एनी पेन्स एक्स इन योर बॉडी तो आपको सबसे पहला ये काम करना है कि आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए. बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन दवाइयाँ. हर चीज़ दवाइयों से हल नहीं होती. आपको अगर फिजिकल थेरेपी राइट काइंड की मिल जाए देन यू विल डेफिनेटली रिकवर. एंड इफ यू हैव हैड एनी सॉर्ट ऑफ सर्जरी विच रिक्वायर्स यू टू हैव पोस्ट सर्जरी थेरेपी देन वन नेम यू हैव टू रिमेंबर इज टेक्सस स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर. द वेबसाइट इज texasstarrehab.com. यू कैन गो ऑन द वेबसाइट कंसल्ट विद देम टुडे. कन्वीनियंटली सर्विंग यू इन टू लोकेशंस फ्रिस्को एंड इरविंग. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अब जो फ्रिस्को का लोकेशन है इट्स अ ब्रांड न्यू लोकेशन एंड विच दे आर वेरी प्राउड टू अनाउंस स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिस्को लोकेशन फ्रॉम ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरीज टू पेल्विक फ्लोर थेरेपी मसाज थेरेपी उसके साथ रिहेबिलिटेशन स्पोर्ट्स मेडिसिन रेड लाइट थेरेपी एंड फंक्शनल न्यूट्रिशन. दे डिलीवर पर्सनलाइज्ड वन ऑन वन केयर डिजाइन टू हेल्प यू परफॉर्म एट द बेस्ट. एंड आपको एक राज की बात बताऊँ जो इनके थेरेपिस्ट हैं हिज मेन थेरेपिस्ट एंड द ओनर ऑफ द प्रैक्टिस हिज नेम इज रुशी. इफ यू आर एवर इन नीड ऑफ दीज सर्विसेज रुशी इज एन एक्सीलेंट फिजियोथेरेपिस्ट. ही इज ऑल्सो द फिजियोथेरेपिस्ट फॉर मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क एंड द अदर टीम्स दैट आर प्लेइंग in the MLC cricket. So you know that he's actually adjusted many cricketers including our very own Sachin Tendulkar and many other international sports players. So get this name in your mind, texasstarrehab.com. that's the website. अगर आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हैं वो नी की कंप्लेंट करते रहते हैं मेरे गोडों में दर्द है, ट्रस्ट मी समटाइम एक्सरसाइज डज वंडर्स विद द राइट न्यूट्रिशन. एंड इफ यू गो विद टेक्सास स्टार रिहैब दे विल मेक श्योर दैट यू आर वॉकिंग एंड फीलिंग मच मच बेटर. टेकिंग यू टू द नेक्स्ट ट्रैक लाइंड अप हियर एंड इसके बाद बताता हूं आपको अबाउट वन मोर गिव अवे दैट इज कमिंग अप.

All right, that was Raghav. Storyteller was the name of the album that came out in 2004. Inka, we're going to record at the Angel Eyes. That was quite popular as well. You are going to be with me till 7 o'clock this evening. Jaise maine kaha tha ki is gaane ke baad, I want to take you to another giveaway. And this is from Fun Pizza Kitchen, jo ki aapko unke McKinney location, rather Frisco McKinney border, Custer and 121 pe hai ye location located. And they are giving you $10 gift certificate to enjoy some yummalicious pizza. पहले तो ये बता दूं कि उनका पिज्जा वर्ल्ड क्लास है, मतलब वर्ल्ड क्लास है, पर जो हमारे टाइप के फ्लेवर्स है ना भैया, वही हमें चाहिए होते हैं. डोमिनोज शोमिनोज कोशिश करते हैं, बट दे कांट मैच द क्वालिटी ऑफ फन पिज्जा किचन, स्पेशली विद आवर इंडियन फ्लेवर्स. पनीर टिक्का पिज्जा हो या हो चिकन टिक्का पिज्जा या तंदूरी चिकन पिज्जा, विच इज माई फेवरेट, गो चेक इट आउट. थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा चीज कह दीजिएगा तो और मजा आएगा. एंड इफ यू हैवंट ट्राइड देयर हैलापिनो गार्लिक ब्रेड, मेक श्योर टू चेक इट आउट. चलो, अब आपने जीतना है ये गिव अवे और मैंने आपको देना है ये गिव अवे का आपको गिफ्ट. तो मैं एक सवाल हमेशा की तरह सिंपल सा पूछता हूँ, कोशिश ये होती है कि आप जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिए. एंड आई एम गोना, इट्स नॉट अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एक्चुअली, बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि ये जो हमारे एक लिरिसिस्ट थे और इनको लिरिसिस्ट का बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला है आज के दिन, यानी 21st of July, ही वॉज बॉर्न इन 1930, और इन्होंने 6000 से भी ज़्यादा फिल्मों के गाने जो हैं वो लिखे हैं. ही रोट मोर देन 6000 फिल्म सॉन्ग्स एंड 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में वो गाने यूज़ हुए हैं. एंड इनके अगर जन्म की बात की जाए, ये हुआ था रावलपिंडी पंजाब उस टाइम, 1930 की बात है, 21st of July. एंड इनके नाम में ना जो इनका फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है या सेकंड मिडिल नेम है, वो ऐसा लगता है कि दो लोगों के डिफरेंट नाम भी हो सकते हैं. बट नन द लेस, अगर मैं इनकी कुछ कंपोजिशंस या राइटिंग की बात करूं तो मैं तस्वीर लिख लेकर क्या करूं, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, जो कि एन दत्ता साहब ने कंपोज किया था. उसके बाद जब जब फूल खिले के लिए बहुत सारे गाने इन्होंने लिखे. एंड देन केम मोर मूवीज इन द लेटर ईयर्स, जिसके लिए ही ऑल्सो सैंग सॉन्ग्स इन फिल्म्स जैसे कि शोले, और उसमें चांद सा कोई चेहरा अलॉन्ग विद किशोर कुमार इन्होंने गाया है जी. महाचोर 1976 की फिल्म में इन्होंने गाना गाया है. एंड कविता कृष्णमूर्ति, कुमार शानू, शैलेंद्र सिंह जैसे आर्टिस्ट के साथ बहुत इस्टेब्लिश किया, और एक लिरिसिस्ट बहुत यूनिक माने गए फॉर अ सॉन्ग जो मैं लगाने लगा हूँ. तो ये रहा वो गाना, और आपने बताना है कि इस गाने के लिरिक्स किसने लिखे हैं. दिस बिकेम अ सेंसेशनल ट्रैक ऑफ इट्स टाइम. And I'm going to play that for you while you get get your calls going. Studio ka number hai 972-235-5555. Looking for the lyricist to this song. Caller number 3. Jo dega sahi jawab gets this.

0: वंडरफुल ट्रैक देयर, वंडरफुल फिल्म, और इसी का ये गाना बहुत हिट हुआ था, इसके लिए अवार्ड भी मिला था जी इनको। अब मैं पूछता हूँ जी कौन है हमारे साथ जो देना चाहते हैं सही जवाब। गुड इवनिंग टू यू फनीज रेडियो, हु इज दिस?
1: हाय, माय नेम इज शिखा।
0: हाय शिखा जी, कैसी हैं?
1: गुड, आप बताइए।
0: गॉड इज गुड, लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये बताइए, डू यू नो द नेम ऑफ दिस आर्टिस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट?
1: हाँ जी, इट्स आनंद बख्शी।
0: आनंद बख्शी कहती हैं शिखा जी। आई नोट डाउन योर नेम, योर कॉलर नंबर वन फॉर मी टुडे। लेट्स सी हु डू वी हैव ऑन नंबर टू हियर। गुड इवनिंग फनीजिया, कौन बोल रहे?
2: हेलो, दिस इज सोनाली।
0: हाय सोनाली, आपको मालूम है इस राइटर का नाम जो मैं ढूंढ रहा हूँ?
2: आनंद बख्शी
0: आनंद बख्शी कहती हैं। सोनाली बोले ना आप?
2: जी।
0: सोनाली जी नंबर दो पे आप हैं, तीन पे कौन है जो लकी विनर आज बन सकता है? इफ यू गिव मी द राइट आंसर। गुड
1: हाय मार्विन, दिस इज अनन्या।
0: हाय अनन्या, हाउ आर यू?
1: या डूइंग गुड, डूइंग गुड मार्विन।
0: ऑलराइट, डू यू लाइक पिज्जा?
1: या मैंने पता है लास्ट बार भी आई थिंक 2-3 महीने पहले आपसे ही जीती थी, तो गई भी थी, बहुत अच्छा लगा था।
0: चलो मुबारक हो, ऐसे ही जाते रहिएगा। नेम ऑफ द आर्टिस्ट आई एम लुकिंग फॉर?
1: आनंद बख्शी।
0: आनंद बख्शी कहती हैं। हाँ, आप एन एब्सोल्युटली राइट आंसर, इट इज आनंद बख्शी, जिनका आज के दिन होता है जी जन्मदिन। आई एम गोना प्ले अ ट्रैक फ्रॉम दैट मूवी जिसमें एक और गाने में दिया था इन्होंने अपनी लिरिक्स, एंड दैट वाज विद SRK।
1: थैंक यू मार्विन।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
5: Calculating route, rerouting.
4: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
5: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
4: क्यों?
5: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
4: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
5: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
2: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
7: क्या?
2: सैलरी बंद हो जाती है
7: और बिल्स बंद नहीं होते।
2: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल्थ टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं।
7: मतलब
2: ऐसी स्ट्रेटजी जहाँ इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
4: द वेल्थ टैक्टिक, smart strategy for your retirement years. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
6: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
8: जिंदगी एक रंगमंच है
9: और घर ढूंढना सिर्फ इंटरवल। असली क्लाइमेक्स तो तब है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और चाबी आपके हाथ में हो। पर्दा गिरने से पहले फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल, हम पक्का करते हैं कि घर सच में आपका हो, हर कदम आपके साथ।
4: कॉल 972-897-1530, firstunitedtexastitle.com.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
11: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
4: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर
2: और यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
2: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 वैनेसा इवेंट्स योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

बिना जिस्म को छुए जो रूह से लिपट जाए, बिना जिस्म को छुए जो रूह से लिपट जाए, उसे भूत कहते हैं दोस्तों। हर चीज इश्क नहीं होती प्यार के मरीजों।

बंदा ये बिंदास है जी, करता बातें खास है जी। 6:25 इन द स्टूडियो क्लॉक, यानी कि 6:25 हो चुके हैं बड़े भैया। और क्या आपको मालूम है, ये जो आलू आप साइड पे रखते रहते हो ना, शॉपिंग करते जाते हो, जब बीवी आपके आलू छांटती है या आप आलू छांटते हो, पर किस्मत का लेखा कुछ और होता है बड़े भैया। किस्मत का लेखा ये होता है, जो आलू आप छांटते हो ना साइड पे रखते हो, कुदरत उन्हीं को समोसों में डालकर आपको दोबारा भेंट कर देती है। You're going to be with me till 7 o'clock this evening. Congratulations to, I think, उनका नाम मैं भूल गया, but इन्होंने जीता जी बहुत कुछ हमारी तरफ से। फन पिज्जा किचन का $10 gift certificate went, and उससे पहले 6 बजे के आवर से पहले there was a winner for the India Bazaar gift hamper which is coming from the Fort Worth store. एक इंसान मुझे 3 बार कॉल कर चुके हैं, मैं रेडियो की बातों में मसरूफ था, आपका कॉल मुझसे मिस हो गया। यू कैन कॉल मी बैक, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो प्लीज डू गिव मी अ कॉल बैक। बिफोर वी वेंट टू द ब्रेक, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस रिनाउंड राइटर लिरिसिस्ट, एक लेजेंड है जी हमारे बॉलीवुड के, उनका नाम है आनंद बख्शी। टुडे वॉज द डे ही वॉज बॉर्न, 21st of July 1930। ही पास्ड अवे ऑन द 30th of March 2002। इंडियन पोएट लिरिसिस्ट, जैसे कि मैंने कहा, 6000 से भी ज्यादा फिल्मों को गाने दिए, 300 से भी ज्यादा फिल्में, एंड ही इज somebody who has done many writing, चाहे बहुत सारे मूवीज थे, जैसे कि बॉबी एक हिट मूवी, उसके गाने बहुत हिट थे, अमर प्रेम, मेरे गांव, मेरा गांव मेरा देश, आए दिन बाहर के, सीता और गीता, शोले, धर्मवीर, लम्हे, हम, मोहरा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेश, हीर रांझा, दुश्मन, एंड ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात की है और मैं ये गाना ना लगाऊं तो सर्टिफाई नहीं ना होगा। तो ये गाना आपके लिए आ रहा है जी, फ्रॉम द मूवी विच इज एवरीबॉडीज फेवरेट, जो बार बार हम देख सकते हैं, विच इज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसी का एक गाना जो कि मुझे बहुत पसंद है, एंड आई एम श्योर यूर गोना एंजॉय। याद रखिए, इसकी लिरिक्स भी मिस्टर आनंद बख्शी ने ही लिखी थी। अ वेरी हैप्पी हेवनली बर्थडे टू यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस सम वंडरफुल ट्रैक्स टू चेरिश फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। And this lovely song is brought to you by none other than Page 3. They are now in McKinney. And if you haven't been there, go check it out. Chahe unki palak patta chaat ho, Nawab's ransom biryani ho, ya unke cocktails or mocktails, no hour is a bad hour at Page 3. Check them out in McKinney.

0: जरा।
1: बड़े भैया बड़ा बवाल हो रहा है हिंदुस्तान में यार, ये जो पेपर लीक का चक्कर है भैया, आपके ओपिनियन क्या है? खैर हमारे ओपिनियन मैटर क्या करते हैं हम, वो तो वही होगा जो यू नो जो चाहेंगे पावर में पीपल। कांग्रेस के एमपी और लोकसभा के जो लीडर हैं जी, दी ऑपोजिशन राहुल गांधी साहब, ये भी डिटेन कर लिए गए बाय दिल्ली पुलिस व्हाइल प्रोटेस्टिंग विद दी ऑपोजिशन लीडर्स एंड पार्टी वर्कर्स एट लोक कल्याण मार्ग इन न्यू दिल्ली ओवर अलेज्ड इररेगुलेशंस इन द नीट एग्जामिनेशंस। अब हाल ये हो गया है, बहुत सारे डंडे बरसात तो वैसे ही चल रही थी, बट आई थिंक देर शुड बी अ पीसफुल वे टू एंड दिस, देर शुड बी अ पीसफुल वे टू वर्क अराउंड दिस। ये क्या बात हुई कि आप अपने ही देश के यूथ को जो अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जो अपने हक का मांग रहे हैं, आप उनको डंडा वायर मार रहे हो, उनको आप गैस टीयर गैस छोड़ रहे हो। वहाँ स्टैम्पीड होने वाली थी, कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा जख्मी हुए। एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी रियलाइज दैट पावर, ठीक है यार, यू हैव पुलिस, यू हैव द आर्मी, देर आर डिफरेंट वेज टू हैंडल एंड टैकल सिचुएशंस। अगर आप डंडे ही मारेंगे और इस तरह ही बिहेव करेंगे, देन रिवोल्ट यू विल सी एंड फील इट, बिकॉज जिसको चोट लगेगी भाई वो चिल्लाएगा। नॉनदलेस आज का शो हमारा इस बात के लिए नहीं है, हमारा काम है जी एंटरटेन, हम वो करते रहेंगे। बट दिस इज़ बैड कि राहुल गांधी साहब को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया भैया। अब उनको डिटेन कर लिया तो आप समझ लीजिए कि पब्लिक का क्या होगा, पब्लिक को पड़ेंगे डंडे, एंड दैट्स नॉट वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आर गवर्नमेंट। Nonetheless, if you are in Grand Prairie, if you live in Arlington, a great news aap logon ke liye bhi hai, wahan pe Himalayan grocery store aa chuka hai ji, which is the thing that will make your life easier, especially if you live in Arlington, if you live in Grand Prairie, and if you live in Mansfield, conveniently located just off of Highway 360 South, and right by their Highway 20 and 360 ke intersection ke bilkul paas aapko ye store milega, minutes away from shoppers in Grand Prairie and Mansfield area. Aur agar aap chahte hain ki aapki grocery ghar pe deliver ho jaye, to wo bhi ho jayega. पहली बात तो आपको अब वहां से अरविंग या बाकी सिटीज ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, ऑल ऑफ योर ग्रोसरीज आर अवेलेबल विद हिमालयन बाजार विच इज नाउ ओपन इन ग्रैंड प्रेरी। कंपेरेटिव प्राइसेस के साथ साथ फ्री लोकल डिलीवरीज दे रहे हैं जी, हाँ यू हर्ड मी राइट, इफ यू गिव दम अ कॉल लेट दम नो कि भैया मैं आपके 5 माइल के रेडियस में रहता हूँ, आपकी डिलीवरी एब्सोल्यूटली फ्री होगी ऑन ऑर्डर्स दैट आर $50 और मोर। लॉयल्टी पॉइंट्स ऑफर करते हैं, एवरी $1 इज अ पॉइंट, आफ्टर 100 पॉइंट्स ऑफ कोर्स यू गेट 5% ऑफ। हलाल मीट के साथ साथ बहुत सारे और ऑप्शंस फॉर फ्रेश ग्रोसरी इज अवेलेबल एज वेल, सर्विंग समोसा पानी पूरी मसाला टी एंड कॉफी विच इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड राइट ऑन साइट। एंड इवन फॉर आर नेपालीज कस्टमर्स, इफ यू लुकिंग फॉर बफ मीट, वाटर बफ मीट, यू गेट इट देयर एज वेल। हिमालयन बाजार, द एड्रेस फॉर दैट वन इज 5103 मैग्ना कार्डा बुलेवार्ड, ग्रैंड प्रेरी इन टेक्सास, दैट्स हिमालयन बाजार। मेक श्योर टू चेक दैट आउट, गूगल द नेम, you will get all the information. For now, taking you to a different track here, Akki Bhai ka gana, I'm sure you're going to enjoy.

India's Independence Day is celebrated quite, quite zor-zar se, dhoom-dham se, with quite a lot of fun that is involved in the IANT event. And if you haven't been to IANT's Anand Bazaar, then you're missing out. IANT stands for India Association of North Texas, aur unka ye 80th Independence Day hai. Ji haan, pichle 80 saalon se Independence Day celebrate kar rahe hain IANT, India Association, right here in North Texas. आनंद बाजार उस इवेंट का नाम होता है जी. एंड दिस 2026 आनंद बाजार इज ऑन सैटरडे अगस्त 15th. दिस इवेंट इज फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स एट द कमेरिका सेंटर इन फ्रिस्को. अब आप कहोगे यार मार्विन बड़ी गर्मी है यार, अच्छा है मतलब इवेंट इज ग्रेट बट हम क्या करेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. द बेस्ट पार्ट, इट्स कम्प्लीटली इनडोर एंड फ्री फॉर एवरीबॉडी. यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी टू गेट इनसाइड. एंजॉय ऑथेंटिक इंडियन फूड, जो कि बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं. मेजॉरिटी ऑफ

0: इनसाइड एंजॉय ऑथेंटिक इंडियन फूड, जो कि बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ डालस रेस्टोरेंट्स आर देयर, अ ग्रैंड परेड जो कि शाम को एक परेड वहाँ पे करी जाती है आपके लिए, यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दैट, कल्चरल परफॉर्मेंसेज विच आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर आर इवेंट्स, लाइव म्यूजिक दे ब्रिंग इन लाइव आर्टिस्ट टू परफॉर्म फॉर यू, एंड बहुत सारा और एंटरटेनमेंट, ड्रोन शो एंड फायर वर्क्स विल बी द फिनाले, मार्क योर कैलेंडर्स, IANT's आनंद बाजार 2026 August 15th 2 PM onwards at the Comerica Center in Frisco.
1: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान, myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस, और हाँ सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स, 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा, विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338 myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
2: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
3: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
2: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
3: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
4: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
5: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
6: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
7: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
9: Some journeys begin with silence and some begin with devotion. At Osho Universal, experience both. Seek inner awareness through Osho's powerful meditation techniques and bow your head at the serene Neem Karoli Baba Temple, where faith, peace and blessings come together. Stay overnight or simply visit for the weekend. Next to beautiful Lake Texoma, it's the perfect destination for spiritual rejuvenation and quality time with your family. Osho Universal, where meditation meets devotion. Visit oshouniversal.org to learn more and plan your trip.

वाइल्ड आई वॉज एट द ब्रेक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ जेंटलमैन जो कि रहते हैं जी ग्रैंड प्रेरी में, और बोले मार्विन यार थोड़ी देर पहले अगर आप हमें बता देते हिमालयन बाजार के बारे में तो मेरे को इतनी दूर गाड़ी चला के आना ना पड़ता। कहते मैं तो यार कुछ लेने गया था और क्योंकि ग्रैंड प्रेरी में स्टोर नहीं है तो मुझे बड़ी लंबी ड्राइव करनी पड़ती है, बट आप लोगों के सोल्यूशन आ चुका है जी। इफ़ यू आर इन ग्रैंड प्रेरी, इफ़ यू आर इन आर्लिंगटन, इफ़ यू आर इन मैन्सफील्ड एरिया, यू वांट टू नो दिस नेम हिमालयन, हिमालयन बाजार इज द नेम ऑफ दिस स्टोर। फ्लेवर्स ऑफ साउथ एशिया लेके आए हैं आपके लिए, इंडियन, नेपालीज, पाकिस्तानी एंड अरबिक ग्रोसरी स्टोर है ये इंडियन एंड नेपाली स्टोर, बट दे ऑल्सो हैव ऑल दोज अदर हमारे जैसे बाकी नेबरिंग स्टेट, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनका खाना भी वहाँ पर मिलेगा। चाहे आप ग्रोसरी ढूंढ रहे हो, फ्रेश वेजिटेबल्स ढूंढ रहे हो, राइस एंड मीट एज वेल, एंड फॉर नेपालीज ब्रदर्स इफ़ यू लाइक योर वाटर बफलो देन यू कैन गेट दैट ऑल्सो एट हिमालयन बाजार। नाउ दिस इज लोकेटेड राइट ऑफ हाईवे 360 south, just close by highway I-20 and highway 360, uske bilkul paas hai, and minutes away from Shoppers in Grand Prairie, Mansfield area. Competitive prices ke saath saath, if you are in the vicinity, 5 mile ke radius mein agar aap rehte hain, to congratulations, you can get your groceries delivered to you with a $50 or more order. जी हाँ, $50 से ऊपर का अगर आप ऑर्डर करेंगे तो 5 mile के रेडियस में आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। आई थिंक दैट इज फैंटास्टिक, एंड वेन यू स्पेंडिंग अ डॉलर यू गेट अ पॉइंट फॉर ईच डॉलर, 100 points गेट यू 5% ऑफ योर इंटायर परचेज। फ्रेशली प्रिपेयर्ड समोसाज, पानीपुरी, मसाला टी एंड कॉफी इज अवेलेबल एट द हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी। द एड्रेस इज 5103 मैग्ना कार्डा बुलेवार्ड, but I don't think you need that. All you need to know is Himalayan Bazaar in Grand Prairie. Type that in your Google, you will find all the information that you need. Iske baad aapko bataunga Prabhu Deva ka jo event hone wala hai uske bare mein, but for now I am going to praise Sallu Bhai here because Bollywood superstar Salman Khan has once again shown why he's loved both on and off the screen. In a heartwarming gesture, he reportedly handed over house keys to more than 50 slum families. You heard that right? 50 se bhi zyada slum families ko gharon ki chabiyan di hain Salman saab ne, giving them a chance at a safer and brighter future. The emotional moment saw smiles, tears of joy and heartfelt gratitude that families received the keys to their new homes. Fans across social media are calling Salman a true real life hero, praising his generosity and compassion. This inspiring act proves that some heroes don't just play the role, they actually live it. Aur agar baat hui hai Sallu bhai ki, I want to play a track from him, from one of his movies as well. Here we go, and kudos to you Sallu bhai, keep up the good work and keep inspiring.

देवा देवा देवा रे देवा देवा रे देवा, एक और देवा नहीं प्रभु देवा की बात कर रहा हूँ जी। प्रभु देवा आ रहा है डैलस फोर्ट वर्थ जी। प्रभु देवा इज कमिंग फॉर यू लाइव इन DFW एंड इफ यू आर अ डांसर, इफ यू लाइक डांसिंग, दिस इज वन इवेंट दैट यू कैनॉट मिस। यार कैसे मिस कर सकते हो? द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया विल बी परफॉर्मिंग लाइव फॉर यू एंड दिस इज ऑन August 1st एट द टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर, ग्रैंड प्री में ये लोकेटेड है। एंड इनके साथ बेसिकली द होल ट्राइब ऑफ डांसर्स इज कमिंग अलॉन्ग हु आर नोन टू बी वेरी वेरी वेरी गुड डांसर्स। सो प्रभु देवा लाइव टू DFW, ज्वाइनिंग हिम वुड बी लॉरेन गॉटलिब, सोनल भदूरिया, एलेक्जेंडर नोएल, हारिनी नीलाकंठन, नताशा शेरपा एंड सानवे मेघना फॉर द अल्टीमेट पैन इंडिया डांस कॉन्सर्ट। आपको सिर्फ मथांगनी एंटरटेनमेंट का धन्यवाद करना है। दिस इज द ग्रुप दैट इज ब्रिंगिंग द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया प्रभु देवा लाइव टू DFW ऑन August 1st, टेक्सस ट्रस्ट CU थिएटर, ग्रैंड प्रेरी। टिकट्स के लिए आपको जाना है ऑन फनेजिया सोशल नेटवर्क पेजेस एंड यू विल गेट ऑल द लिंक्स एंड पिन पोस्ट टू फाइंड द टिकट लिंक्स फॉर प्रभु देवा लाइव। सो सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी जाइए, लुक फॉर फनेजिया एंड सर्च फॉर प्रभु देवा शो लाइव, यू विल गेट द टिकट इन्फॉर्मेशन देयर। एक गाने का और वक्त है, उसके बाद लूंगा आपसे इजाजत। एंड जब एक वक्त है, एक गाने का वक्त है, तो क्यों ना हम लगाएं जी ये गाना, बिकॉज मुझे लगता है डैलस फोर्ट वर्थ, मैंने तो आपको अपना बना रखा है कई सालों से, क्या आपने मुझे अपना बनाया? नहीं तो बनाइए।

0: और आप भी टेक्सस प्राइमरी के टेक्सस स्टार रिहैब को रादर अपना फेवरेट रिहैब बना लीजिए. फॉर स्पोर्ट्स थेरेपी हो, फिजियोथेरेपी हो, दीज आर द पीपल दैट विल रियली रियली गेट यू गोइंग आफ्टर अ सर्जरी. एंड आई विल टेल यू कि मैं थैंक करना चाहता हूँ रुशी का, हु इज द ओनर ऑफ दिस प्रैक्टिस. ही इज द फिजियोथेरेपिस्ट हिमसेल्फ, ऑल्सो अ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर मुंबई इंडियंस एंड ऑल द अदर क्रिकेटिंग कंपनी क्रिकेटिंग टीम्स दैट आर प्लेइंग एमएलसी क्रिकेट कप हियर. इंटरनेशनल प्लेयर्स हों या लोकल हों, ही इज देयर फिजियोथेरेपिस्ट. नाउ इफ इज doing it for them, then you already know that he knows what he's doing. And I thank him because I had some issues in my hip which I didn't realize. He was the one who recommended me my x-rays, my scans, and then recommended a doctor. He got me out of that, and then the post-surgery therapy, it was so fantastic that I really really want to thank him. Now if you have family members jinhone koi apni surgery karwai hai which requires therapy, please please please kahin aur mat jaiye. My recommendation, go to TexasStarRehab.com, make an appointment and you will not be disappointed. That is my promise to you. And uske saath saath, they have now opened up a brand new practice here in Frisco, which is a state-of-the-art location that offers you orthopedic and sports injuries to pelvic floor therapy, massage therapy, rehabilitation, sports and medicine, red light therapy, and of course, functional nutrition. They make sure that you get back up on your feet strong and well. TexasStarRehab.com is that website. My time today is over. उस सुपर वाले ने दिया एक और नया दिन, तो कल शाम को फिर से आपके साथ होऊंगा जी फ्रॉम 5 to 7 ऑन योर फेवरेट स्टेशन जिसका नाम है फन एशिया रेडियो विद योर फेवरेट इवनिंग ड्राइव टाइम शो द बिंदास शो. दिस इज बंदा बिंदास मार्विन दास साइनिंग ऑफ.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM KZMP 104.9 FM HD1 Pilot Point Texas, simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2 Sanger Texas, powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja,
2: in association with Passion Health Primary Care.
3: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
5: Call 857-891-8942 today.
6: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting.
7: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
7: क्यों?
8: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
9: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
8: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
10: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉप टावर कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग. और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement. Sub ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
11: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
12: Excuse me. It's called being loyal.
11: It's called being predictable.
12: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
11: And what's so special at Neon Cactus?
12: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
11: Not bad.
12: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
11: Okay, this I didn't expect from you.
12: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
5: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए
9: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर कोई बात नहीं पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग फाइब्रो स्कैन विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन
13: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं
15: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
16: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी